शुभ प्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:58 और 23 सेकंड हो रखे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, प्रातःकाल का ये समय हमें न केवल ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी समेट लेने का ये अवसर होता है। प्रातः के शांत वातावरण में आइए हम भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं अपने आराध्य की। और सर्वप्रथम हम आपको सुनाते हैं गुलशन कुमार और साथियों के स्वर में माँ का ये भजन। माँ की कृपा की आकांक्षा के साथ जगन जननी माँ जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं और बारंबार उनके चरणों में आराधना करते हैं।

माँ की कृपा जब मिल जाती है तो जीवन में कोई दुख ही नहीं रहता। श्रोताओं लीजिए सुनिए ये अगला भजन मोहम्मद रफी के स्वर में। सुख दुख जीवन में आते और जाते ही रहते हैं, पर यदि परमपिता से हम हमेशा ही जुड़े रहें तो ये दुख कभी निकट नहीं आ सकते।

भक्ति संगीत का ये दैनिक कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रखे हैं। आइए कुछ और समय ईश्वर के ध्यान में ही बिताते हैं और सुनते हैं दिलराज कौर के स्वर में ये शब्द। सद्गुरु की कृपा क्या नहीं कर सकती, वो इस लोक और परलोक में हमें कुछ भी यदि सुगम चाहिए तो गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए आप सुनते हैं सरफराज सावरी के स्वर में ये नात। तेरी महफिल में जो आता है सवर जाता है, तेरी महफिल में जो आता है सवर जाता है, तू रहमत का पैगाम है, तू है नूर-ए-खुदा।

आइए श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर माँ के चरणों में, उनके आंचल में। हरिओम शरण के स्वर में सुनते हैं ये भजन और प्रार्थना करते हैं माँ से। हे माँ, आपकी करुणामयी मुस्कान भी अनंत सुख देने वाली है। हम आपकी कृपा और प्रेम की बयार की आकांक्षा करते हैं।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो रखे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का, और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: मैं भीतर की आवाज हूँ, तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ। मुझे सुनते हुए लोग झिझकते हैं, कुछ डरते हैं और बहुत से लोग मेरी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। जीवन की त्रासदी अंधकार से डरना नहीं है, बल्कि प्रकाश से परहेज करने से उत्पन्न होती है। मुझे सुनने और समझने के लिए आंखें बंद कीजिए, जिससे दुनिया की रंगीनी की ओर से आपका मन हट जाए। आप अपने मन को निश्चल कीजिए, जिससे आपका दिमाग चारों ओर दौड़ना बंद कर दे, उसकी ज्ञानेंद्रियों के साथ उसका संपर्क समाप्त हो जाए और उसके भीतर होने वाली उथल पुथल रुक जाए। अब आप सुनिए मैं क्या कहती हूँ। किसी भी वस्तु के निर्माण में काफी श्रम होता है और समय भी लगता है। आपके शरीर के निर्माण में अगणित वर्ष लगे हैं। प्रकृति को अनेकानेक प्रयोग करने पड़े हैं। आप प्रकृति में उपलब्ध चट्टानों, अवशेषों आदि के विकास में लिखी कहानी को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। उसकी भाषा समझने पर आपको मालूम होगा कि एक एक वस्तु के निर्माण के लिए प्रकृति को अनेकानेक प्रयोग करने पड़े हैं। डार्विन की विकास प्रक्रिया में आने वाले प्राणियों का निर्माण प्रकृति ने एक एक कोशिका को साज संवार कर किया है। आपका शरीर तो इस निर्माण की प्रायः अंतिम परिणति है। इसकी मशीनरी का एक एक अवयव निर्माण की अद्भुत प्रक्रिया का परिचायक है। जो भी हो, इस दुर्लभ शरीर को आप प्रकृति की बहुत बड़ी देन या नियामत समझिए। इसने आपको कितना अच्छा इंसान बना दिया। यदि इसके अनुरूप आचरण करोगे तो लोग स्वयं आपके प्रति आकर्षित होंगे और इस प्रकार आप मानव जाति में सद्भावना और भ्रातृत्व का वातावरण उत्पन्न करने में सहायक बनोगे। आप और आपके सहयोगी ये अनुभव करेंगे कि हमारे किसी धर्म संस्थापक ने ये नहीं कहा कि यही एकमात्र धर्म है। वे तो यही कहते आए हैं कि ये भी एक मार्ग या धर्म है। मेरी दृष्टि में सब पंथ या धर्म समान हैं। मेरे नियम में किसी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रह के लिए स्थान नहीं है। आपने भी पढ़ा सुना होगा कि सब धर्मों की नैतिक शिक्षाएं समान हैं। आप परमात्मा के वास्तविक रूप को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, मुझे तभी संतोष प्राप्त होगा। मैं समझूंगी कि मेरी बात सही ढंग से सुनी और समझी गई। तुम ही एक ऐसे प्राणी हो जिसको मनमाने ढंग से प्रयोग करने के लिए दो हाथ दिए गए हैं और साथ ही परम तत्व के अंश विवेक का वरदान प्राप्त है। विकास क्रम में अपनी इस विशिष्ट स्थिति का अनुभव करो और कम विकसित प्राणियों का मार्गदर्शन करो। तुम्हारा धर्म मानव धर्म है। इसकी उपलब्धि के लिए देश कालानुसार अनेक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पंथ, मजहब, संप्रदाय, मिल्लत आदि नाम दिए गए हैं। ये सब समान रूप से उपयोगी और माननीय हैं, परंतु अधिकांश लोग अपने मार्ग को ही धर्म कहते हैं और उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रत्येक धर्म से ज्ञान ग्रहण करने का प्रयत्न करो। प्रत्येक धर्म शरीर, मन और आत्मा के मध्य सेतु का निर्माण करता है। कोई भी धर्म दीवार नहीं बनता। तुम देखोगे कि ऐसा करके तुम अपने धर्म को अधिक श्रेष्ठ बना सकोगे। मैं दोहराना चाहती हूँ कि मेरी आवाज विवेक का निर्णय, अंतकरण का

0: निर्देश तुम तभी सुन सकोगे जब तुम्हारा मन निश्चल होगा।
1: भीतर की आवाज। इस विषय पर आपने सुना आज का ये चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी कथा।

मैंने सभ्यता सीखने का अपने सामर्थ्य से बाहर का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होते हुए भी बंबई काट के कपड़ों के उच्च अंग्रेज समाज में न फबने के ख्याल से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े पहनवाए। 19 शिलिंग की ये कीमत उस जमाने में तो बड़ी ही समझी जाती थी। इतने से संतोष न होने पर ब्रांड स्ट्रीट में जहां शौकीनों के कपड़े मिलते थे, 10 पौंड को दिया सलाई दिखलाकर शाम को पहनने का सूट बनवाया। सीधे और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दो जेबों में लटकाई जाने वाली असली सोने की चेन मंगवाई और वो आई भी। तैयार बंधी हुई टाई का लगाना शिष्टता सूचक नहीं था, अतः मैंने टाई बांधने की कला सीखी। देश में तो आईना हजामत के दिन ही देखने का काम पड़ता था, पर यहां तो बड़े शीशे के सामने खड़े होकर टाई ठीक बांधने, बालों की ठीक पट्टियां पारने और मांग काढ़ने में रोज कोई 10 मिनट तो नष्ट हो ही जाते थे। मेरे बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें ठीक घुमा रखने के लिए ब्रश के साथ नित्य लड़ाई होती। टोपी पहनते और उतारते समय हाथ तो मानो मांग सवारने को सिर पर पहुंचा ही रहता। इसके सिवा जब समाज में बैठता तो हाथों से मांग संवारते हुए बालों को ठीक ठिकाने रखने की सभ्य क्रिया चलती ही रहती थी। पर इतनी टीम टाम ही बस न थी। अकेली सभ्य पोशाक से थोड़े ही सभ्य बना जा सकता है। सभ्यता के अन्य कई बाह्य लक्षण भी जान और सीख लिए थे। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मेरी यूरोप भ्रमण करने की इच्छा थी। इसके सिवा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नाचना सीख लेने का निश्चय किया। एक क्लास में भर्ती हुआ, एक सत्र के 3 पाउंड फीस के दिए। 3 हफ्तों में कोई 6 सबक सीख लिए होंगे। ठीक ताल पर पांव न पड़ते थे। पियानो बजता था पर वो क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आता था। 1, 2, 3 चलता पर उनके बीच के अंतरे का पता तो उस बाजे से ही चलता था जो मेरे लिए अगम्य था। तब कैसे बने? फिर तो बाबा जी की बिल्ली वाली बात हो गई। चूहे को भगाने को बिल्ली, बिल्ली के लिए गायें, इस तरह बाबा जी का कुनबा बढ़ा। इसी प्रकार मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ता गया। सोचा वायलिन बजाना सीख लूं तो ताल सुर का पता चलने लगे। 3 पौंड वायलिन खरीदने में खोए और कुछ उनकी तालीम के लिए भी। भाषण कला सीखने को तीसरे उस्ताद का घर ढूंढा। उन्हें भी एक गिन्नी की भेंट तो चढ़ानी ही थी। बेल का स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट लिया, पिट का भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। मुझे इंग्लैंड

0: में जिंदगी कहाँ बितानी है। लच्छेदार भाषण करना सीख कर क्या होगा, नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। वायलिन तो अपने देश में भी सीखा जा सकता है, मैं तो विद्यार्थी हूं, मुझे तो विद्या धन जोड़ना चाहिए, मुझे अपने धंधे के लिए जरूरी तैयारी करनी चाहिए, मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जा सकूं तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ना चाहिए। इन्हीं विचारों की धुन में, इन उद्गारों से पूर्ण एक पत्र मैंने भाषण शिक्षक को लिख भेजा। उनसे मैंने दो या तीन पाठ ही लिए थे, नृत्य शिक्षक को भी वैसा ही पत्र लिख दिया। शिक्षिका के यहां वायलिन लेकर पहुंचा, उससे ये बाजा जितने में बिके बेच देने को कहा। उसके साथ कुछ मित्रता का संबंध हो गया था, इससे उसके सामने मैंने अपने मोह की बात कही। मेरे नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की बात उसने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी सनक कोई 3 महीने चली होगी, पोशाक की टीम टाम बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बन गया।
1: अब सुनिए ये भजन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज जानकारी का विषय है हाइपरटेंशन।
1: श्रोताओं नमस्कार। हमारा आज का विषय भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा आज का विषय है मेटाबॉलिक डिजीज से जुड़ा, वो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, एक समस्या जो आजकल बहुत सुनने में देखने में आ रही है और एक शब्द जिसका चलन आम हो गया है, उसका नाम है हाइपरटेंशन। क्या होता है ये हाइपरटेंशन और इस शब्द का अर्थ क्या है?
2: देखिए, खून की नलियां हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाती है
1: जी,
2: तो बिना प्रेशर के तो नहीं पहुंचा सकते जी। प्रेशर क्रिएट किया जाता है हमारे हृदय के द्वारा
1: जी,
2: तो हृदय एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि खून की नलियां शरीर के प्रत्येक भाग में खून पहुंचा सके, तो उतना रक्तचाप आवश्यक है। परंतु जब विभिन्न कारणों से वो रक्तचाप बढ़ जाता है
1: जी,
2: तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं।
1: बहुत अच्छी परिभाषा परिभाषित की डॉक्टर साहब आपने कि हाइपरटेंशन शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि सबका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ टेंशन पे होता है, हाइपरटेंशन के बारे में कोई नहीं जानता। डॉक्टर साहब आपने बताया इसका अर्थ क्या है, अब आप ये बताइए कि इससे बचाव संभव है क्या?
2: देखिए, उच्च रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है
1: जी
2: जो काफी हद तक आनुवंशिक भी है। आप ये कह सकती हैं कि दो प्रकार का उच्च रक्तचाप देखा गया है, एक वो जो आनुवंशिक कारणों से होता है और दूसरा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें कि शरीर के कुछ अवयव जैसे कि किडनी और ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड वगैरह या हृदय खराब हो जाता है, उसकी वजह से जब रक्तचाप बढ़ता है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दोनों का बचाव काफी हद तक संभव है।
1: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बचाव संभव है। एक बात और चलन में देखी जा रही है डॉक्टर साहब, एक फैशन सा हो गया है कि अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं कि हमारी जीन्स में है, हमारे तो डीएनए में ऐसा है, हमारे डीएनए में वैसा है।
2: बिल्कुल सही बात है, आनुवंशिक कारण बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार हैं, परंतु एक जीन न हो करके मल्टीपल जीन्स है, इसे पॉलीजेनिक डिजीज कहा जाता है
1: जी।
2: बहुत सी जीन जिम्मेदार हैं, परंतु यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को एक बात बताना चाहूंगा
1: जी
2: कि जीन के कारण से जो बीमारियां होती हैं उनसे भी बचाव संभव है। क्योंकि जीन इस प्रकार से समझिए कि कोई बीज है, परंतु बीज वृक्ष तभी बनेगा जब हम उसे पानी दें, हवा दें, मिट्टी दें, खाद दें, तब वो बीज बनेगा। तो बीज जो है वो जेनेटिक कारण हो सकता है, अगर ये नहीं है, इनमें हम परिवर्तन ला दें तो बीज वृक्ष नहीं बन सकता
1: जी।
2: तो जेनेटिक काज होने के बाद भी बचाव संभव है।
1: डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या होते हैं हाइपरटेंशन के?
2: देखिए, हाइपरटेंशन एक इस प्रकार की बीमारी है जिसके प्रारंभिक लक्षण कुछ भी नहीं हो, ये एक सोती हुई बीमारी कहा जा सकता है। और आम धारणा जो लोगों की है कि अधिक क्रोध आना, जल्दी चिड़चिड़ा जाना, बात बात पर चीखने चिल्लाने लगना, ये हाइपरटेंशन के लक्षण हैं। इसके लक्षण जो देर में आते हैं उनमें ये कह सकते हैं कि सिर में दर्द होना एक लक्षण हो सकता है, भारीपन होना सिर में एक लक्षण हो सकता है, नींद ना आना एक लक्षण हो सकता है, और दिल की धड़कन का बढ़ जाना एक लक्षण हो सकता है।
1: क्या तनाव उच्च रक्तचाप से संबंध रखता है?
2: बिल्कुल सही बात है, उच्च रक्तचाप से संबंधित है तनाव
1: जी।
2: तनाव अगर लगातार बना रहे तो उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल बाजार में हर प्रकार के संयंत्र बिक रहे हैं और लोग नापने के लिए जैसे बीपी का यंत्र ही घर ले आते हैं और समय समय पर देखते हैं कि कहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं हुआ है, तो ये अच्छा है कि नहीं है? क्या मानसिक तनाव पैदा कर सकता है ये?
2: देखिए, ब्लड प्रेशर को नापने के तीन प्रकार के तरीके उपलब्ध हैं। एक तरीका तो है ऑफिस मेजरमेंट, यानी कि ऑफिस में डॉक्टर के जाके लोग ब्लड प्रेशर नापवाएं
1: जी,
2: और दूसरा तरीका है होम मेजरमेंट। तो होम मेजरमेंट के तरीकों में इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं बाजार में उपलब्ध हैं, उनको लोग ले आते हैं, लाने में बुराई नहीं है, परंतु मेरी सलाह यह है कि इसको लाने के पश्चात अपने चिकित्सक के पास जाएं और बीच बीच में इसकी रीडिंग दिखा करके चिकित्सक की रीडिंग को भी ले लें और चिकित्सक से नापने की विधि को समझें।
1: डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कार्यक्रम में, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज आपने हाइपरटेंशन विषय पर जानकारी प्राप्त की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, आइए

0: सुनते हैं खेती की बातें। जानकारी का विषय है लीची और आम के बागों में थाला बनाना।
1: किसान भाइयों, राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फलदार बागों की, एक ऐसी महत्वपूर्ण कृषि क्रिया की जो कि देखने में तो छोटी लगती है पर पेड़ों की अच्छी बढ़वार, सिंचाई और खाद के बेहतर उपयोग में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आज का विषय है लीची और आम के बागों में थाला बनाना। तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि ये थाला होता क्या है। किसान भाइयों, पेड़ के चारों ओर मिट्टी को इस तरह व्यवस्थित करना कि सिंचाई का पानी जड़ के क्षेत्र में ही ठहर सके और बहकर दूर ना जाए, उसे सामान्य तौर पर थाला बनाना कहा जाता है। आम में बेसिन या थाला विधि से सिंचाई का प्रचलन बहुत अधिक है। लीची में भी पेड़ के आसपास थाला साफ रखना और उचित जल प्रबंधन करना उपयोगी माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, बात आती है कि ये थाला आखिर बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले पेड़ के चारों ओर की भूमि को साफ करना चाहिए। खरपतवार, सूखी टहनियां और अनावश्यक घास को हमें हटा देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के तने से उचित दूरी रखते हुए गोलाकार थाला बनाएं। ध्यान रखें कि थाले का किनारा ऐसा हो कि सिंचाई का पानी बाहर ना निकले और जड़ों के आसपास समान रूप से फैल सके। यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है कि पेड़ के तने से सटाकर मिट्टी का ढेर ना लगाएं। तने के आसपास थोड़ी जगह खुली रखें ताकि लगातार नमी के कारण तने में सड़न या अन्य समस्या ना हो। पेड़ की उम्र और फैलाव के अनुसार हमें थाला धीरे धीरे बड़ा कर देना चाहिए। पुराने और अधिक फैलाव वाले पेड़ों के लिए थाला जड़ के अनुरूप पर्याप्त चौड़ा रखना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल पानी रोकना नहीं बल्कि खाद और सिंचाई को पेड़ की सक्रिय जड़ क्षेत्र तक पहुंचाना भी है। अब किसान भाइयों, आप ये सोच रहे होंगे कि थाला बनाने के हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो देखिए, थाला बनाने का सबसे बड़ा फायदा है सिंचाई के पानी का बेहतर उपयोग होना। पानी पेड़ के आसपास ही ठहरता है और धीरे धीरे मिट्टी में जाता है, इससे पानी की बर्बादी और अनावश्यक बहाव कम किया जा सकता है। दूसरा फायदा है खाद और उर्वरक का बेहतर उपयोग। जब खाद को पेड़ की सक्रिय जड़ों के आसपास उचित स्थान पर दिया जाता है तो पोषक तत्वों का जो उपयोग है वो अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है। इसके अलावा तीसरा फायदा है खरपतवार नियंत्रण। थाला साफ रखने से पेड़ के आसपास अनावश्यक घास और खरपतवार की प्रतिस्पर्धा कम होती है। और किसान भाइयों, लीची के बाग में गर्मी और सूखे की स्थिति में थाला में सूखी पत्तियों या जैविक अवशेषों की मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी को बचाने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं पानी देने की, कि हमें इन थालों में किस प्रकार से पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, हर बाग में एक जैसा सिंचाई अंतराल तय नहीं किया जा सकता, ये तो आप भी जानते हैं। मिट्टी का प्रकार, मौसम, वर्षा, पेड़ की उम्र और फल लगने की अवस्था के अनुसार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। आम के पेड़ों में भी सिंचाई की आवश्यकता उम्र और फल विकास की अवस्था के अनुसार बदलती है। इसलिए केवल कैलेंडर देखकर पानी ना दें, खेत की मिट्टी में नमी की स्थिति देखकर सिंचाई करें। जहां ड्रिप सिंचाई उपलब्ध हो वहां थाला क्षेत्र और जड़ क्षेत्र के अनुरूप ड्रिप का उपयोग पानी की बचत और बेहतर जल प्रबंधन में सहायक हो सकता है। और देखिए किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि थाला बनाने के साथ साथ पेड़ की सफाई भी बहुत जरूरी है। थाले को समय समय पर साफ करते रहें। पेड़ के नीचे गिरी हुई रोग ग्रस्त पत्तियों और संक्रमित अवशेषों को बाग से हटाना बहुत जरूरी है। खाद और उर्वरक की मात्रा, हमेशा मिट्टी की जांच, पेड़ की उम्र और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार रखें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि थाले में पानी जमा कर बिल्कुल ना रखें। यदि खेत में जल निकास की समस्या है तो अतिरिक्त पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करते रहें। लगातार जल भराव जड़ों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। किसान भाइयों, यदि आप इस तरीके से अपने आम और लीची के बागों में पेड़ों के थाले बनाकर सिंचाई करेंगे तो आप अपने इन बागों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
0: खेती की बातें के अंतर्गत लीची,

और आम के बागों में थाला बनाना, इस विषय पर आपने जानकारी प्राप्त की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही दिन में प्रातः 7:31 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। जिले की हलचल ये हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, जिसमें प्रातः 9:15 पर आप सुन सकेंगे फतेहपुर और चित्रकूट जिले की हलचल।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश हम अपने दिल्ली केंद्र से शाम 7 बजे रिले करेंगे। शाम 7:50 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन सकेंगे विविध कलाकारों के स्वर में नात, और शाम 6:05 पर कृषि जगत में किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित चिट्ठी पत्र कार्यक्रम आप कृषि जगत कार्यक्रम में सुन सकेंगे। कानूनी सलाह के अंतर्गत एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा से आलोक कुमार की बातचीत आज आप सुनेंगे। भेंटवार्ता का विषय रहेगा मानव अधिकार अधिनियम, समय रहेगा शाम 6:45। बहनें सुन सकेंगे दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज क्रम रहेगा माटी मारे देश के, और दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत बीना तिवारी की गाय कुमाऊनी लोकगीत आप सुन सकेंगे।

श्रोताओं, ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी आज के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाश।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड, कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कानपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से, कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अभियान के तहत कल कानपुर देहात जिले में एक विशाल तिरंगा यात्रा की अगुवाई की।
2: कानपुर देहात के अकबरपुर इंटर कॉलेज से शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। अयोध्या में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं बस्ती जिले में वहां की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भदोही जिले में भी राजेंद्र बर्नवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज से हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: बाराबंकी में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। वहीं प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वन विभाग की तरफ से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी।
3: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया।

0: है इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कल से सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। मंदिर से जुड़े धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है।
2: नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत्र वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र होगा। खास बात यह है कि यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होगा बल्कि बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। उस दौरान ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होगा लेकिन वस्त्र का रंग पीत ही रहेगा। समिति का मानना है कि इस बदलाव से मंदिर की पूजा व्यवस्था में एकरूपता तथा अनुशासन और मजबूत होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: संसद का मानसून सत्र कल संपन्न हो गया। इससे पहले संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए।
3: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। गोरखपुर की जिला स्वास्थ्य समिति DHS ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी गोरखपुर के CMO डॉक्टर राजेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि समिति वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी प्रदेश में अव्वल रही है।
4: हम लोग के DHS को इस बार 2025-26 में भी रैंक वन मिला है और ये रैंक वन मिलना जो है वो अपने आप में बड़ी चीज मानी जाती है। इसका मतलब जो हम लोग अपना जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक करते हैं वो बैठक हम लोग सही तरीके से करते हैं।
1: प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इससे कई जिलों में कल मध्यम से लेकर तेज बारिश हुई। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंदौली जिले के SRVS महिला महाविद्यालय में कल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIB वाराणसी की इकाई द्वारा मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल ने किया। इसमें मीडिया और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने, फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान, फैक्ट चेकिंग और डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर PIB के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा यह अभियान। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड। कल से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने

0: दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:31 हो रखे हैं। प्रस्तुत है सूचना ज्ञान मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ को लेकर आ गई हूँ मैं एक बार फिर से आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जुड़ चुके हैं हमारे आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से। बस यही बात हमें कहनी अच्छी लगती है और आपसे जवाब में ये सुनना अच्छा लगता है कि आप स्वस्थ हैं और हमारे साथ हैं। साथियों, साथ एक दूसरे का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये साथ ही है जिससे हम एक दूसरे के साथ मिलते हुए आगे बढ़ते निकलते जाते हैं। चाहे सुख के दिन हो या दुख के, हम उनका डटकर मुकाबला करते हैं। श्रोताओं, इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी भी होती हैं जो हमें केवल अतीत की याद नहीं दिलाती, बल्कि इंसानियत के उस दर्द से भी रूबरू कराती है जिसे भूलना नामुमकिन हो जाता है। श्रोताओं, 14 अगस्त आज का ये दिन हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। 1947 का वो विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं थी, बल्कि लाखों परिवारों का विस्थापन, अपनी जड़ों को हमेशा के लिए छोड़ना था। वह दिन हम किसी के प्रति नाराजगी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी बेकसूर पीड़ितों के त्याग और पीड़ा को श्रद्धांजलि देने के लिए, याद करने के लिए मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शांति, सामाजिक सद्भाव और भाईचारा ही हमें एक करता है और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। श्रोताओं, वर्ष 2021 से 14 अगस्त को हम इस दिवस को मना रहे हैं। बंटवारे के दर्द का एहसास और अपने देश प्रेमियों का बलिदान याद करने के लिए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए एक साथ हम आज के इस दिन में शांति और एकता को बनाए रखने का संकल्प लें और इसी संकल्प के साथ हम एक और बात आपसे कहना चाहते हैं। कल है 15 अगस्त, आज़ादी की लड़ाई में सीक्रेट रेडियो सर्विस क्या थी इस दिन के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक बलिदानों से मिली है। पर साथियों, जब देश आज़ादी की जंग लड़ रहा था तो साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। तब देशवासियों तक क्रांति का संदेश पहुँचाने के लिए एक जादुई

आवाज हवाओं में गूंजी थी। वो आवाज थी सीक्रेट रेडियो सर्विस की। श्रोताओं, देश की आजादी के दौरान सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की शुरुआत 14 अगस्त 1942 को ही, पहला नियमित प्रसारण 27 अगस्त 1942 को बॉम्बे में हुआ, जो लगभग 3 महीने यानी 12 नवंबर 1942 तक चला। साथियों, हम जिसको सीक्रेट कांग्रेस सर्विस के नाम से जानते हैं, उषा मेहता जी और उनके जाबाज साथियों ने मिलकर अंग्रेजों की नाक के नीचे इस गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया था। जगह बदली जाती थी, ट्रांसमीटर छुपाए जाते थे, पर क्रांति की आवाज कभी नहीं दबी। 27 अगस्त 1942 को जब पहली बार ये गूंज हुई, दिस इज कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 meters, तो देश के कोने कोने में भी देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ गई। अंग्रेजों की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद इस रेडियो सर्विस ने देश को एकजुट रखने में वो भूमिका निभाई जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। प्रणाम है, सलाम है उन चाबाज स्वतंत्रता सेनानियों को। आइए आप और हम एक साथ उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, जिनके अथक प्रयासों और बलिदान से आज हम इस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम आप सब मिलकर अपने उस आजादी के पर्व को तो मनाएंगे ही, पर ये कैसे भूल सकते हैं कि इस आजादी को पाने में हमारे कितने साथियों का प्रयास और बलिदान है।

हम लाए हैं तूफान से कश्ते निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जी हाँ, यही मन के भाव रखे होंगे जब हमें आज़ादी मिली थी हमारे देश प्रेमियों के, देशभक्तों के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं। आइए एक साथ प्रणाम करते हुए बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए रोम रोम खड़ा हो जाता है, अपने देश की बात ही ऐसी है। प्रत्येक धर्म जाति से ऊपर उठकर हम सब एक हैं, एक माला के मोती हैं, और यही हमें इस तरह से माला में पिरोकर रहना होगा। श्रोताओं, समाचारों की सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं आज हमारे समाचार पत्र। हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण के साथ विभिन्न अखबारों की सुर्खियां हैं। सत्र सार्थक, संवाद बिना स्थगित, मानसून सत्र में लोकसभा में 19 जबकि राज्यसभा में 39% रही उत्पादकता, लिखता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की खबर है राम मंदिर सीईओ के 16 उम्मीदवारों में से चुने जाएंगे 3 नाम, ट्रस्ट करेगा अंतिम फैसला। एक और खबर है हिंदुस्तान से, यूएन ने माना लाल किला धमाके के पीछे अलकायदा, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में AQIS को जिम्मेदार ठहराया। NIA कर रही है दिल्ली के धमाके की जांच, 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था ये ब्लास्ट। अमर उजाला की भी सुर्खी है कि वंदे मातरम उद्घोष के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा, ये सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। और एक और खबर है, छात्राओं से बोली राज्यपाल, अगर कोई परेशान करे तो ठोक दो। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोली राज्यपाल, झांसी की रानी की तरह बहादुर बने। अर्न वाइल लर्न जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने पर भी उन्होंने जोर दिया। एक और खबर है, मानसून ने दोबारा पकड़ी रफ्तार, आज भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हुआ है, इसका असर 17 अगस्त तक देखने को मिलेगा। देश के अमीर घरानों में 7 यूपी के HCL, डाबर, JK सीमेंट समेत 7 समूहों की कुल नेटवर्थ 7.52 लाख करोड़ रुपए। आइए अब रुख करते हैं दैनिक जागरण की ओर। लिखा है निर्यात 20% बढ़ा, व्यापार घाटा 6 महीने के शेष पर, और जुलाई में अमेरिका, चीन और पश्चिम एशियाई देशों को 8% से अधिक बढ़ा। तेल आयात 17.63% बढ़ा। इसके अलावा कुछ खबरें हैं, ये महाकुंभ में योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 10,000 रुपये। महाकुंभ मेला 2025 में योगदान देने वाले पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

0: है। एक अन्य खबर में लिखा है यूपी टी20 लीग का धमाल, आज से काशी व मेरठ में होगा उद्घाटन मुकाबला। और एक अन्य खबर में राम मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू, सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे पुजारी, ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने लिया ये निर्णय, शुक्रवार से ही हो सकता है लागू। और एक अन्य खबर है BSNL 1 रुपये में सिम देगा 1 महीने की वैधता। श्रोताओं, ये तो थी कुछ खबरें। और कुछ अन्य खबरों में लिखा है कि भारत ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में 4 दिनों की प्रतियोगिता के बाद कुल 35 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय दल ने अंडर 23 और सीनियर स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीते। ये खबर लिखती है कि घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत देशभर के हवाई अड्डे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से भी जगमगा उठे, जो देशभक्ति एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। तो ये कुछ खबर थी आपके और हमारे लिए। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
4: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सखी थी भारद्वाज। आइए एक अगली सेगमेंट में चलते हैं। सेगमेंट के इस बार आइए शुरू करते हैं फिल्मी सफर को। श्रोताओं, अब हम रुक करते हैं सिनेमा के उस रंगीन और जोशीले पन्ने की तरफ जिसने भारतीय युवाओं को झूमना सिखाया। जी हाँ, याहू, ये सुनते ही आपके जहन में किसकी तस्वीर आती है? बिल्कुल सही पहचाना, हमारे याहू स्टार शम्मी कपूर जी की। 60 के दशक में जब स्क्रीन पर शम्मी कपूर की एंट्री होती थी तो सिनेमा हॉल तौलियों और सीटियों से गूंज उठता था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, बार बार देखो या तारीफ करूं क्या उसकी जिसने, देखिए उनके अनोखे डांस मूव्स, बेपरवाह अंदाज, बेमिसाल अभिनय ने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी थी। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि अपने आप में एक पूरा युग थे। श्रोताओ, 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में इनका जन्म हुआ और शमशेर राज कपूर आपका असली नाम था। पिता पृथ्वीराज कपूर और माता राम सरजी मेहरा के लाड़ प्यार में आप बड़े हुए। 14 अगस्त यानी आज की तिथि में सन 2011 में सबको अपने अनोखे अंदाज से लुभाने वाले महान कलाकार ने इस संसार को अलविदा कह दिया। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी 1968 के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी प्राप्त किया। तो फिल्मी सफर में जब हमने बात इस फिल्म की ही है ब्रह्मचारी की, तो आइए उन्हीं को याद करते हुए सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत।

श्रोताओं कहते हैं जो कला है वो अपनी पहचान बना ही लेती है, इसलिए हम कलाकारों को हमेशा ही याद करते हुए उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं। इसी तरह से प्रत्येक तिथि भी हमसे कुछ कहती है। 14 अगस्त का क्या है कुछ ऐसा खास महत्व, आइए जानते हैं। श्रोताओं आज है 14 अगस्त की तारीख, जो कि सबसे पहले हम याद करना चाहते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। 1947 को ये दिवस हमने महसूस किया। 14 अगस्त 1862 को बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और 1971 को 14 अगस्त में बहरीन के 110 वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 1908 में आज की तिथि में इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 1938 में बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टूडेंट ऑफ प्राग टेलीविजन पर प्रसारित हुई थी और आज ही की तिथि में साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इसराइल और दक्षिणी लेबनान में 5 सप्ताह से जारी संघर्ष थमा। आज की तिथि में कुछ ऐसी शख्सियत ने भी जन्म लिया जिनको हम स्मरण करना चाहते हैं। 14 अगस्त 1924 को प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कुलदीप नैयर का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1957 में हुआ जन्म हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी लीवर जी का। 1968 में भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे का भी जन्म हुआ आज ही की तिथि में। और ये तिथि कुछ हमसे छीन कर भी ले गई तो 14 अगस्त 2018 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे बलराम जी दास टंडन का निधन हुआ था सन 2018 में आज ही की तिथि में। 2017 में आज ही की तिथि में प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांत देवताले जी का निधन हुआ। 2011

याद कर रहे हैं। जॉनी लीवर यानी जॉन प्रकाश राव जनवाल का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कनिगिरी में हुआ था। बॉलीवुड के सबसे महान और लोकप्रिय हास्य अभिनेता में ये गिने जाते हैं। इन्होंने लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अपनी अनूठी कॉमेडी टाइमिंग मिमिक्री से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। इन्होंने राजा हिंदुस्तानी, दीवाना, मस्ताना, बाजीगर, करण अर्जुन, बादशाह, गोलमाल श्रृंखला जैसी सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म राजा हिंदुस्तानी 1997 के लिए और फिल्म दीवाना मस्ताना 1998 के लिए और कॉमेडी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 बार प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। श्रोताओं, फिल्म बाजीगर के बाबूराव हो या दूल्हे राजा के छोटू, उनके छोटे छोटे किरदार ने सभी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। बिना किसी फुहड़ता के केवल अपनी कला के बल से दर्शकों के दिल पर राज करना कोई जॉनी लीवर जैसे सीखे। आज इस भागदौड़ भरे जीवन में जो कलाकार हमें खुलकर हंसने की वजह दे वो किसी वरदान से कम नहीं। आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया फिल्म काला बाजार का ये गीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर
2: सूर्यघर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें।

0: स्थान आपके पास है, टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी

0: की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं, 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जाँच ब्यूरो से जाँच के आदेश दिए जाए, सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के

0: से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
1: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए

0: 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आज़ाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम और इंतशार की लानत को ख़त्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आज़ादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में खत्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वजीर आला डॉ मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनजर रैली के लिए इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकामात पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मकामात के जरिए मुनशियात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगामात की तशहीर की जाएगी। कल यौम आज़ादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:15 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आज़ादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मदू किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया है। DMRC ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उमूर दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स

0: ऑफिसर्स नीज आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावाराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज़्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
1: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गई। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
2: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गांव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदाम कर रहे हैं।
1: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरिब शिमाल मगरिब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरिब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरिक शिमाल मशरिक में मरकूज है। इसके जेरे असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरिकी और मगरिबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में ना जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरिकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी

0: इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और सीबीआई जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आज़ादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नज़र रांची जिला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकाम पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यानटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवें नंबर की ईगा श्यानटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबकीना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतिमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमेरिका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोड ट्रॉफी भी जीत ली है, जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नजर, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मोजिज फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड तफवीज किए जाने से मुतालिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सदर जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यानटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये नचिबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है शहीद।

श्रोता, महेंद्र कपूर साथियों के स्वर में फिल्म शहीद का एक गीत आपने लिखा, सुना भी, और इसे संगीत बद्ध किया था प्रेम धवन ने, और गीतकार भी प्रेम धवन ही थे। साथियों, कल 15 अगस्त को हम आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए आतुर हैं, पर आज 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है देश प्रेमी और गायक स्वर है मोहम्मद रफी का। अपने देश को संभाल कर रखना, इसकी एकता को बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है।
1: नफरत

देश प्रेमी। इस फिल्म में आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना और सही कहा गया कि भर जाता है गहरा गांव, जो बनता है गोली से पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो बोली का बहुत बड़ा स्थान है, तभी तो हम कहते हैं यदि हमें सम्मान चाहिए तो दूसरे को देना होगा, लेकिन यदि दूसरे को भी वही सम्मान और वही प्यार चाहिए तो प्रेम पूर्वक व्यवहार अति आवश्यक है। सुनते रहेगा गोल्डन हिट्स का एक कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

0: चंदन का एहसास।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। आइए आप कार्यक्रम में सुनते हैं आशा भोसले किशोर कुमार की युगल आवाज में फिल्म सीता और गीता का ये गीत। आरडी वर्मन का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शे की।

गोल्डन हिट्स फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए सुने कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वर में संगीत पद किया है रोशन ने और लिखा है साहिर लुधियानवी ने। फिल्म का नाम है बहु बेगम। साथियों, सावन का महीना चल रहा है और कल हमारी बहनों के साथ हम सभी मनाएंगे हरियाली तीज का त्यौहार। तो जब सावन के झूले पढ़ ही चुके हैं तो क्यों ना आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ इस का भी अनुभव करें।

जी हाँ, झूले तो पड़ गए हैं, सावन की ऋतु आ गई है, तो इसलिए मनाइएगा खुशियों के साथ हरियाली तीज का ये त्यौहार। और आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे गीत को, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

0: काली घटाएं छाई है, काली घटाएं छाई है, हवाओं में सरगम है, सावन की हर एक बूंद में सुकून का मकाम है। आओ समेट लें पलों को अपनी यादों में, ऐसा सुहाना समा फिर मिले न कभी। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 हो रहे हैं। जिले की हलचल अब हम अपने लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में अपने दौरे के दौरान करीब 489 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपदों में शामिल था और विकास के मामले में प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। उन्होंने कहा कि उस समय ना तो बेहतर सड़कें थी और ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। फतेहपुर जिले में भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में हर जिले का समान रूप से विकास करना है।
3: विकास की योजना की बात होती है, सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, कंपोज मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का।

0: फतेहपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अगुवाई में अपराध के रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जुलाई महीने में पुलिस द्वारा 66 गुंडा एक्ट, 3 गैंगस्टर, 9 हिस्ट्री शीटर और 4 गैंगों का पंजीकरण कराया गया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान 6 साथी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि
1: हमारी फतेहपुर पुलिस है, उसमें जो आरतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध हमने 66 ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे गुंडा की चलानी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसी के साथ साथ 3 गैंग्स पे हमने गैंगस्टर की कार्रवाई करवाई है। कुछ लोग हमने इसमें पकड़े भी हैं, निरुद्ध भी करे हैं। उसके साथ साथ उनकी जो अवैध संपत्ति है उनका भी चिन्हांकन करके जो अधिक की इसमें कार्रवाई की जाएगी।
0: इस महीने 17 अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया है, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर जिले में कुल 64 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें लगभग 12,000 गौवंशों के रहने, खाने व मेडिकल की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवव्रत गंगवार के मुताबिक जनपद में मौजूदा समय 64 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें 46 अस्थायी गौशालाएं हैं।
2: फतेहपुर में कुल हमारी इस समय वर्तमान में 64 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें हमारे 46 अस्थायी गौ आश्रय स्थल हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 3 काजी हाउस हैं, 2 कान्हा हाउस हैं एवं वृद्ध गौ आश्रय स्थल हमारे दे रहे हैं, जिनमें सभी 64 गौ आश्रय स्थलों में हमारे 12,000 गोवंश संरक्षित हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में जल भराव एवं उसकी निकासी हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी भी हमारे केवल 2 गौ आश्रय स्थलों में जहां पानी की समस्या कुछ शेड में आ गया था, उसको हमने पानी का निष्कासन दिया गया है।
0: जिलाधिकारी के निर्देश पर जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। फतेहपुर जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जलंधर रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। करीब 33.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकेंगी। पूर्ण विकास के बाद फतेहपुर रेलवे स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। पहले स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है। स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुगम आवागमन, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को सुरक्षित, सहज और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जिला अस्पताल में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नवजात शिशुओं का केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनकी माताओं को किट का वितरण भी किया एवं एक पौधा भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं बल्कि समाज में बेटी के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमारी बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल धरोहर हैं। आज की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, सेना, चिकित्सा और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना तथा महिला एवं बाल कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य प्रत्येक बेटी को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। सभी का दायित्व है कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँचे।
3: फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
4: चित्रकूट में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की करीब 84 करोड़ रुपए लागत वाली 31 परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें 15 परियोजनाएं अकेले चित्रकूट की हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं में प्रयागराज चित्रकूट, बांदा चित्रकूट और कौशाम्बी चित्रकूट मार्ग पर थीम आधारित प्रवेश द्वार, बेड़ी पुलिया से शंख चौक तक पर्यटन विकास, रामघाट पर कथा और तुलसी घाट पर आरती स्थल सहित कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। परानु बाबा आश्रम, मानिकपुर के लैना बाबा मंदिर, मारी माता मंदिर और बोड़ी पोखरी के सौंदर्यीकरण तथा हाई मास्ट लाइट लगाने के कार्य भी प्रस्तावित हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ चित्रकूट की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक की निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं करीब 8 करोड़ रुपए लागत से परंपरा वन स्टॉप सेंटर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटकों को एक ही स्थान पर पर्यटन, संस्कृति और विरासत से जुड़ी जानकारियां और सुविधाएं मिल सकेंगी। चित्रकूट में औद्योगिक विकास की नई राह खुलने जा रही है। रामसैया के पास हरसौली, रानीपुर, खाकी और संग्रामपुर गांवों में करीब 50 एकड़ भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन से मंजूर

0: भी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी। करीब 3 साल के इंतजार के बाद सामने आए इस प्रस्ताव को चित्रकूट के साथ पूरे बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों के साथ MSME इकाइयों को भी स्थापित किए जाने की योजना है। प्रशासन की कोशिश है कि हिंडाल्को NTPC और NCL जैसे बड़े औद्योगिक समूहों के निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ कारोबार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग चिन्हित भूमि का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और पहुँच मार्ग समेत जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है।
1: जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ भूमि जो जनपद मुख्यालय के 20 किलोमीटर के अंतर्गत हो उसे ढूंढा जाए जहाँ पे इस प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा सकता है और उसके लिए राम शैया भूमि जो है चिन्हित की गई है उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव शीघ्र तैयार करके उसे शासन भेजा जाएगा।
0: देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ चित्रकूट में हर घर तिरंगा अभियान 2026 जोश व उत्साह के साथ जारी है। अभियान के तहत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1,20,000 राष्ट्रीय ध्वजों का निर्माण और वितरण किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समयबद्ध तरीके से ध्वजों का निर्माण और वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण भारतीय ध्वज संहिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप करने तथा गुणवत्ता और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। 9 अगस्त से शुरू है यह आयोजन, 17 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के साथ वंदे मातरम का गायन कर सकते हैं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी डिजिटल अभियान में साझा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से राष्ट्र प्रेम, एकता और गौरव के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। बीते दिनों जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय निशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। राजकीय जिला पुस्तकालय में संचालित इस कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को निशुल्क मार्गदर्शन और अध्ययन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सत्र 2025-26 में 301 विद्यार्थियों के पंजीकरण के मुकाबले नए सत्र 2026-27 में 360 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जो योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
1: हमारे यहाँ इस समय भी पंजीकरण पूर्ण रूप से खुला हुआ है। अभी भी कोई बच्चे चाहते हैं तो वो प्रवेश यहाँ पे कर सकते हैं। सभी परीक्षाएं पूर्ण रूप से निःशुल्क है और हमने प्रयास किया है कि सबसे बेहतर टीचर्स को, हर एक टीचर को यहाँ इंटरव्यू किया गया है। आप सबके लिए ही कोचिंग आयोजित की जा रही है, अच्छी शिक्षा मिले उद्देश्य यही है।
0: कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अध्ययन और सकारात्मक सोच के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से नियमित रूप से 8 से 10 घंटे अध्ययन करने, सोशल मीडिया से अनावश्यक दूरी बनाए रखने और इंटरनेट का उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करने का आह्वान किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.1
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चित्रा सारस्वत के गाए सावन और तीज गीत।

इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चित्रा सारस्वत के गाए ये लोकगीत, सावन गीत है और कुछ तीज गीत भी। श्रोताओं अभी और सुनेंगे लोकगीत, लेकिन उससे पहले एक बार अपने श्रोताओं को पुनः याद दिला दें, जागरूक श्रोता सजीव फोन इन कार्यक्रम आज आप हमारे इस केंद्र से सुनेंगे प्रातः 10:30 पर, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम है आपके लिए और विषय रहेगा भूले बिसरे नायक। तो आप भूले बिसरे नायक के बारे में आज बोलने के लिए रहेगा तैयार, कार्यक्रम रहेगा जागरूक श्रोता। समय एक बार फिर सुन लीजिए प्रातः 10:30 पर इसी सभा में। आइए अब सुनते हैं ये लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आपने चित्रा सारस्वत के स्वर में सावन और तीज गीत सुने। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अखिलेश कुमार, ढोलक पर रामकेश, बेंचो पर परवेज। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब प्रस्तुत है। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज आपकी सखी निधि भारद्वाज और मेरे साथ है आपकी साथी।
1: नमस्कार दोस्तों, निधि जी के और आप सभी के साथ जुड़ गई हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त अलका सिंह।
0: तो अलका
1: जी,
0: गीत तुम्हारे कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के फरमाइशी गीत को सुनाते हैं और उसके लिए आप बता दीजिए झटपट उनको वो फोन नंबर जिस पर उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है।
1: बिल्कुल निधि जी, तो श्रोताओं जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा नंबर जो है 9457078288। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9457078288। तो जल्दी से भेज दीजिए इस नंबर पर अपना नाम पता और पसंद का गीत लिखकर। तब तक पढ़ लेते हैं निधि जी हम हमारे श्रोताओं के मैसेज।
0: बिल्कुल, और देखिए पहला जो मैसेज है और ये पत्र भी हमारे पास खातों में वो है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का।
1: अगला मैसेज हमारे पास आया है, यह है संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया अपा ढिंगिया का, जो एड्रेस इन्होंने लिखा है बागपत उत्तर प्रदेश से।
0: इसी गीत को जो अब हम आपको सुनवाएंगे फरमाइश भेज रहे हैं शाही मार्केट से हरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफा चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी।
1: जो गीत हम सुनवाने वाले हैं उसके लिए फरमाइश हमारे पास आई है शेरकोट बिजनौर से, लिख रहे हैं निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलम, मोहम्मद हन्नान, महक, रमश और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: ये फरमाइश हमारे पास पहुंची है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। अब मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना और ये फरमाइश है सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप की।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है जो है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से, लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जीएस नायक, शोभा नायक और इनका आप डांगला परिवार।
0: इसी बीच में ये पत्र हमारे हाथ में है, आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छाविंद्र कुमार वर्मा।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
0: मैसेज कर रहे हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पतेही खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बेटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी साहब।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, जो मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। तो निधि जी इन सब की फरमाइश पर सुनवा देते हैं हमारे श्रोताओं को ये पहला गीत
0: और गीत का जो
1: फिल्म है वो है देवदास। तो बिल्कुल बिल्कुल, देवदास फिल्म से हमने लिया है, इसे आवाज़ें दी हैं के श्रेया घोषाल और कविता ने।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है

0: पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और श्रोताओं, जो अगला गीत हम आपकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं, उसे हमने लिया है फिल्म हमराज से। आवाज दी है उदित नारायण ने, गीत लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का। और इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है निधि जी,
4: ये पत्र के माध्यम से हमारे साथी हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे।
3: और अगला मैसेज हमारे पास आया है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना का कांठ रोग लदावली से।
4: तो लदावली की फरमाइश आपने ले ली, अब हम पत्र लेते हैं। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद भी अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं। और आप हैं,
3: अगली फरमाइश हमारे पास आई है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सकलैनी और गुलशन साहिबा।
4: ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान और शैलेंद्र।
3: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है सप्तरंग श्रोता परिवार से, लिखने वाले हैं कुंभार गली श्रामपुर से, लिख रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, रीति ऋषिकेश दले और जीविका दले। पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने।
4: ये साथी हमारे पास हैं जसपुर रोड दोलापुर मुरादाबाद से, महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा अंसारी। और ये अगला मैसेज हमें मिला है,
3: ये हमें मिला है पूर्ण जंक्शन मस्तानपुरा से, लिख रहे हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।
4: ये हमारे साथी हैं जो अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, श्री रामपुर महाराज से नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिद शाहिद।
3: गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, साहिबा मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और ये अगला मैसेज हमें मिला है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और मोहम्मद जैन जन्नत का। तो इन सब की फरमाइश पर सुनवा देते हैं निधि ये गीत।
4: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगले गीत के साथ फिर जुड़ेंगे और श्रोताओं की फरमाइश में।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे में बहुत स्वागत है हमारे सभी साथियों का, श्रोताओं 9457078288 पर आप अपनी पसंद के गीत को सुन सकते हैं। और ये देखिएगा हमारे पास मैसेज पहुंच चुके हैं, आप बताइए अलका
1: दीदी जी। मैसेज हमारे पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमारे श्रोताओं को एक छोटी सी जानकारी हम दे दें जो है हमारे आज के जागरूक श्रोता कार्यक्रम के विषय में।
0: हाँ, बिल्कुल
1: श्रोताओं, आज आप हमसे साझा कर सकते हैं भूले बिसरे नायकों के विषय में आपकी बातें, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और कहीं गुम हो गए हैं, तो उनके विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। कार्यक्रम रहेगा जागरूक श्रोताओं।
0: इस फोन इन कार्यक्रम के लिए हमारा फोन नंबर रहेगा
1: 9457078288। दूसरा नंबर भी आपको बता दें 01341230105।
0: हाँ, तो बिल्कुल इस कार्यक्रम के

0: बाद कहीं नहीं जाना है आपको, जुड़ जाना है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और ये पसंद की फरमाइश का क्रम भी शुरू कर देते हैं। अगले गीत की फरमाइश कर रहे हैं माल्यान सरगना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन।
1: अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर सावरी, शन्नो सावरी, मुदस्सिर सावरी, मुजक्किर सावरी और जरीफ अंसारी की।
0: ये पत्र हमें मिला है रिंगनी से दिनेश वर्मा का, लेवई से अपनी पसंद गीत को सुनना चाहते हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से हैं सालिक पुजारी जी।
1: ऐसी गीत की जो हम आपको सुनवा ले वाले हैं, फरमाइश हमारे पास आई है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी की।
0: ये फरमाइश है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष की और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल भी अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं।
1: अपने पसंद के गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है संगीता टॉकी शाहगंज आगरा से, महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदोस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हफ्जा हिफ्जा अंसारी, जिक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी और हसन चिंटू की।
0: ये परी महल कासगंज से भी अपने पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं आबाद खान और नबील खान।
1: अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम गाधारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी, विमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधु गिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी की।
0: ये फरमाइश है साबिर अली की जिला मुरादाबाद ग्राम ज्ञानपुर से और इनके बहुत सारे साथी भी इस गीत को सुनना चाहते हैं जो हमारी अगली फरमाइश बनने वाला है श्रोताओं के।
1: अगला मैसेज हमें मिला है पाड़कर कवड़ा से, अनिल बुराडे, उषा बुराडे, अनुश्री बुराडे और धनश्री बुराडे का।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौधरी और सीथी दीवाना भी अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं। और
1: शेरवनी स्कूल गंजुंडवारस उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
0: ये पत्र हमें मिला है महादेव घाट अमलेश्वर से, जुम्मन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर का। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से पत्र भेज रहे हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा जी।
1: और ये अंतिम पत्र हमारे पास आया है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे का। तो सुनवा देते हैं सबकी फरमाइश पर ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से, आवाज दी है मोनाली ठाकुर ने।

0: फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम गीत तुम्हारे में, और जल्दी से शामिल कर लेते हैं निधि जी हमारे श्रोताओं के मैसेज।
1: हाँ, क्योंकि ये अंतिम फरमाइशी गीत है और इसमें शामिल हो रहे हैं हमारे साथी ओम गायकवाड़, आम्रपाली गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़ और प्रणीता गायकवाड़। और ये फरमाइश की है तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से आपने।
0: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है गांव न थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता की।
1: ये फरमाइश कर रहे हैं सत्यदेव कुमार राणा इस्लाम नगर से, जिला बदायूं से।
0: इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है पटियाला रोड गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, आकिल कुरैशी और बेबी आरिबा हबीबा की।
1: आप है हमारे साथी गंज डूंडवारा से तहसील रोड से के अचराही गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी।
0: इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश की।
1: आप है हमारे साथी जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम प्रसाद अर्णव और राखी दुर्गेश्वरी तृप्ति जायसवाल।
0: तो निधि जी इन सबकी फरमाइश पर सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिल तेरा आशिक से। आवाज़ ये कुमार सानू और अलका याग्निक ने, तो सुनवा देते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की अब निधि भारद्वाज और
1: अलका सिंह को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार। श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आज के इस कार्यक्रम का विषय है भूले बिसरे नायक।
1: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम जागरूक श्रोता में। श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में कई ऐसे भूले बिसरे नायक रहे हैं जिनका देश की आजादी और निर्माण में बड़ा योगदान था, लेकिन वे इतिहास की किताबों में उस तरह दर्ज नहीं हो सके।
0: और तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए कार्यक्रम जागरूक श्रोता में पहुंचे हैं हम, आपकी सखी निधि भारद्वाज और साथ में
1: मैं आपकी दोस्त अलका सिंह।
0: तो सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत,
1: जय भारत। तो निधि जी, पहले हम अपने श्रोताओं को नंबर बता देते हैं।
0: बिल्कुल, बिना देर के आइए, फोन नंबर हम अपने श्रोताओं को बताते हैं। हमारे दो नंबर हैं जिस पर अभी आप हमें कॉल करके हमारे भूले बिसरे नायक के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या चर्चा करना चाहते हैं बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और फोन नंबर है 9457078288।
1: और हमारा लैंडलाइन नंबर रहेगा 01341230105। तो निधि जी, देर बिल्कुल नहीं करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं हमारे पहले श्रोता कौन है। हेलो जागरूक श्रोता।
2: हाँ जी जागरूक श्रोता, नमस्ते जी।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं ग्राम डपो राहुल अंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह बात कर रहा हूँ।
1: नमस्कार सत्यवीर सिंह जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे हैं साहब, और आप बताइए।
1: जी हम भी अच्छे हैं। मौसम कैसा है आपकी तरफ?
2: मौसम तो आज बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी।
1: जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि बारिश भी जरूर आएगी क्योंकि नजीबाबाद में बारिश शुरू हो चुकी है।
2: ठीक है जी। और साहब, आज तो निधि जी ने सूरज के साथ साथ में भारत माता की जय वंदे मातरम करके रोंगटे खड़े कर दिए।
0: जी बिल्कुल, हमारी ख्वाहिश भी थी क्योंकि ये रोंगटे जहाँ हमारे खड़े हो रहे थे वही हम चाहते थे जो भी सुने वो प्रेम से बोले। चलिए एक बार फिर बोल दीजिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस उद्घोष के साथ आइए याद करते हैं भूले बिसरे नायक को। और आप किन के बारे में बताना चाहते हैं?
2: वैसे तो बहुत सारे नायक ऐसे हुए हैं
0: जी,
2: और जो अननोन पर्सन है, मतलब मैं आज आपको अपने जिले की दो क्रांतिकारियों के विषय में बताता हूँ।
1: अरे वाह,
0: बिल्कुल बताइए।
2: एक अपना नूरपुर थाना है, उसके सामने एक शहीद स्मारक है, उस पर शहीद मेला भी लगता है 16 अगस्त को।
0: जी जी, उसका अखबार में भी हमने जिक्र पढ़ा था। अभी बताइएगा,
2: अभी आपके यहाँ से एक नाटक तिरंगा झुकने नहीं दूंगा वो प्रसारित किया गया उन्हीं के नाम पर।
0: जी जी जी, हमारे बाकी श्रोताओं को भी बताइए।
2: जी जी जी, ये अस्करीपुर और गुनियाखेली के दो क्रांतिकारी थे, श्री परवीन सिंह जी और श्री रिक्की सिंह जी।
1: जी,
2: और जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो करके मूवमेंट शुरू किया, तब उन्होंने ये 16 अगस्त 1942 को निश्चय किया कि हम नूरपुर थाने पर तिरंगा लहराएंगे।
0: जी,
2: और एक बहुत बड़ा जत्था इधर पूरब की दिशा से जो मुरादाबाद रोड होती है उधर अस्करीपुर गांव पड़ता है
0: जी,
2: तो वहां से रिक्की सिंह जी के नेतृत्व में हजारों क्रांतिकारी नूरपुर थाने की ओर चल पड़े, और उधर ताजपुर के पास गुनियाखेड़ी गया, वहां के परवीन सिंह जी उनके साथ हजारों क्रांतिकारी थाने पर चढ़ाई कर दी। पीले की तरफ से भी, नहटोर की तरफ से भी 15 से 20 हजार क्रांतिकारी उस 16 अगस्त 1942 को यहां जमा हो गए, और पुलिस पर

0: शासन तो वहाँ कम ही था, एक ब्रिटिश अधिकारी था और कुछ अपने हिंदुस्तानी सैनिक ही थे वहाँ। तो
1: जी
0: उसके हाथ पैर फूल के देख करके कि भाई इतनी भीड़ ये कहाँ आ रही है, क्या होगा, क्या
1: जी
0: मकसद है, किस उद्देश्य से आ रही है। तो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि दोनों क्रांतिकारियों ने थाने की छत पर चढ़ करके यूनियन जैक उतार करके फेंक दिया
1: क्या बात है सर?
0: और अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया। उस अंग्रेज अफसर के हाथ पैर फूल गए, उसे कुछ और न सूझा तो उसने दोनों पर गोली चला दी।
1: क्या बात है
0: तो वहां गोली चला दी तो शहीद प्रवीण सिंह तो उसी समय शहीद हो गए थे
1: जी।
0: और रिक्की सिंह जी को बाद में जिला जेल बिजनौर रेफर किया गया और एक सप्ताह के इलाज के बाद उन्होंने भी अंतिम सांस ली। इस प्रकार वो दो क्रांतिकारी अमर हो गए और स्वतंत्रता सेनानियों में अपना नाम लिखा गया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: बिल्कुल। और मैं ये बता दूं कि मैं जब छोटा था कभी भगत सिंह बोलता था कभी चंद्रशेखर, तो एक दोहा याद आ रहा है, अगर कहे तो सुना दूं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो इस तरह शाहजी के भगत सिंह का जब अभिनय किया तो उन्होंने गुरु जी ने लिखाया था कि मौत से डरता नहीं, मौत मेरा काम है और स्वर्ग मेरे वास्ते वास्तव में जेल है। तो इस तरह से वो भगत सिंह ऐसा क्या करते थे। और साहब ऐसे गुमनाम नायक तो बहुत हुए हैं जिनको हम जानते भी
1: जी, जी, जी।
0: वास्तव में वहाँ 16 अगस्त 1942 से को शहीद हुए, आज भी वहाँ 16 अगस्त को मेला लगता है, स्मारक पर तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी
1: निशा। जी जी बिल्कुल। और सत्यवीर सिंह जी वो कहते हैं ना कि जो ये आजादी है कुछ लोगों की मेहनत से नहीं मिली है, इसमें लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान है।
0: लोगों की मेहनत बलिदान।
1: जी जी जी।
0: आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना जितने अंग्रेज क्रूर थे, अत्याचारी थे, मतलब दया तो उनके अंदर
1: नहीं थी। नहीं बिल्कुल नहीं थी।
0: हाँ, ऐसे ऐसे उदाहरण है कि वो एनसीईआरटी में आता है कि पेड़ों पर टांग करके उन्होंने कीले ठोक दी हाथ पैरों में।
1: जी, बहुत दर्दनाक यादें हैं।
0: इतने थोड़ी बहुत माँ बहनों के साथ इतने अत्याचार किए उन्होंने कि रोंगटे सुनकर के खड़े हो जाते हैं। मन करता है कि जाकर जैसे उधम सिंह ने जनरल डायर को जलियांवाले बाग का बदला लेकर के वहां शहीद किया था, उसको मार दिया था।
1: चलिए सत्यवीर सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
2: और आपके माध्यम से हमारे बाकी श्रोताओं को भी पता चला कि जिला बिजनौर में भी हमारे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और जिन पर हम गौरव करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद।
1: बहुत बहुत हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
3: जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं और मौसम भी अभी थोड़ा साफ है।
1: जी आपकी तरफ साफ हो गया है मौसम?
3: जी यार आज तो साफ है लेकिन 2 दिन पहले बारिश आई थी।
2: अच्छा, शिमला की जो ठंडक है आज इधर भी पहुंचेगी हमें पूरा पता है। बस यूपी और बिजनौर में आपकी जो ठंडी ठंडी फुहारें
1: हैं वो नीचे आ रही हैं प्लेन में।
2: और आज हमारा जो विषय है, हम आप जानते ही होंगे, भूले बिस्तरे नायक की बात हम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप आजादी के इस पावन पर्व पर हमारे किस ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को प्रणाम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं या उनकी याद को साझा करना चाहते हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र के माध्यम से अन्य श्रोताओं तक।
3: जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि आज मैंने जहाँ भी कॉल किया आज यही बात चल रही है, अभी चंडीगढ़ से भी यही बात चल रही थी
2: जी।
3: आपके माध्यम से भी ये कह रहा हूँ कि जो मैं उन मुसलमानों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने क्या बोलते इतना सब कुछ कुर्बान किया, जैसे कि मैं बात करूंगा शहीद भगत सिंह
2: जी,
3: और जो हमारे जो देश के लिए उन्होंने फांसी को चुना है और उनको फांसी देगी, तो ऐसे सेनानियों को मैं प्रणाम करता हूँ और हमें करना भी चाहिए, लेकिन ऐसे वीर जवानों को प्रणाम करना चाहिए। और जैसे कि मैंने एक बात वह भी बोलती, जैसे कि युवा जो है हमारे जो आजकल की युवा है तो देश को इस तरह से समझना चाहिए, जैसे कि एक गाना हमें संदेश देता है, हम लाए हैं तूफान से
2: किश्ती निकाल के। आज सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में हमने इसे बजाया था, इसीलिए जैसे कि लोग पहचाने भी, जानते तो सभी हैं लेकिन हमें उसमें जीना है,
3: हमने उसमें जीना है, हमें उन वीर जवान वीर शहीदों को उनको उनको श्रद्धांजलि, हम ये थोड़ी कि हम उनको प्रणाम करें, हमें वो श्रद्धांजलि ये देना कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए,
1: बिल्कुल, और
3: देश की जज्बा रखना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए।

0: जरूर है ना कि हम बॉर्डर पे जा सकते हैं, लेकिन हम भी अपने घर,
1: बिल्कुल राकेश जी, हम देश के अंदर रहकर भी बहुत ऐसे काम है अपनी देश सेवा से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं जो किसी बलिदान से कम नहीं होते।
2: बताइए आप।
0: सबसे बड़ी बात ये है कि हम जैसे हम युवा है, मैं अभी युवा समाज में आता हूँ, हमें क्या करना है, हमें अपने देश के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, और हमें अपने देश का अपमान करना नहीं चाहिए और हमें किसी को करने का अधिकार नहीं देना
1: चाहिए।
0: कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और कई बार ट्वीट आता है भारत के खिलाफ कुछ बोलते, तो हमें उस पर तुरंत जवाब देना चाहिए। जिस तरह से हम अपने फैमिली के लिए लड़ते हैं, तो हमें अपने देश के प्रति भी अगर हमें लड़ना भी पड़े तो कोई बात नहीं, भले ही सोशल मीडिया पे हम आपको ब्लॉक किया जाए, कि हमें अपने देश का अपमान कभी भी सहन करना नहीं चाहिए और देना चाहिए।
2: हाँ, हमें समझना होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है, उनके बलिदान उनकी उपलब्धियों को जानती है और इतिहास में अंकित है, हमें उसका अनुसरण करते हुए एक अच्छा और भारत बनाना होगा।
0: अच्छा भारत बनाना पड़ेगा, जैसे कि अभी सरकार मौजूदा सरकार कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनेगी, लेकिन विकसित भारत तभी बनेगा जब युवा जागरूक होगा। युवा किस तरह से जागरूक होगा? सबसे पहले अपने देश के प्रति नशे से दूर रहना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल राकेश जी, आपने इतने अच्छे से हमारे श्रोताओं के साथ अपनी बातें साझा की और हम अपने दूसरे कॉलर को भी ले लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी जी, धन्यवाद
2: धन्यवाद। हेलो जागरूक श्रोता।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो जागरूक श्रोता।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार साहब, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं ग्राम गाधरना जिला हरिद्वार से, उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ जी।
2: मदन गिरी जी, कैसे हालचाल है आपके उत्तराखंड में भी?
3: ठीक है। वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम। पता है
3: माता जी,
2: जय जय। आपको पता है कि ये केवल कहने की बात नहीं है,
3: निधि जी ने जो है ऐसा प्रोग्राम पेश किया आपने
2: जी,
3: जो वर्षों तक याद रखा जाएगा।
2: धन्यवाद आपका, आभारी हूँ।
3: बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, मैं तो भूल नहीं सकूंगा इसको।
2: धन्यवाद आपका, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इसके केवल मीडिया में कहने की बात नहीं है। हम जितनी बार भी मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है कि हमारा रोम रोम हमारे देश के काम आए। और मदन गिरी जी,
3: हाँ जी,
2: तो आपने चलिए कार्यक्रम को पसंद किया, आभार आपका। आकाशवाणी नजीबाबाद चाहती है कि हमेशा अच्छे कार्यक्रम और अच्छे संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
1: तो जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा विषय है भूले बिसरे नायक, तो किस नायक की याद आज आप दिलाना चाहेंगे मदन गिरी जी?
3: जी, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो मैं उस वीर योद्धा को, 1857 के क्रांतिकारी को, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं
2: जी, बताइए।
3: वो है कुंवर सिंह।
1: कुंवर सिंह,
3: कुंवर सिंह,
2: हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप।
3: महान स्वतंत्रता सेनानी थे,
2: हाँ,
3: और उन्होंने कभी भी उनकी अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार नहीं की
1: जी,
3: और कई बार अंग्रेजी सेना को परास्त किया। और आखिर में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनकी बाह में गोली लग गई
2: जी,
1: जी,
3: तो खून जब नहीं रुका तो उन्होंने अपनी बाह काट कर जो है
1: गंगा नदी में,
3: नदी में डाल दी, गंगा जी में
1: जी।
3: तो अंग्रेज अफसर भी जो देख रहे थे, वे भी अचंभित रह गए, कितना वीर है वो,
2: साहस।
3: और आज मैं उस वीर को नमन करता हूँ,
2: नमन, हमें रोंगटे मेरे खड़े हुए हैं समय।
3: हाँ जी,
2: स्वयं को आहत करना और फिर देश की रक्षा में वही जोश दिखाना, कुंवर सिंह जी एक मिसाल है इसकी।
3: ये हमारे जिले के स्वतंत्र सेनानी है, उनका भी जिक्र करना चाहूंगा मैं।
2: बिल्कुल।
3: एक थे विश्वनाथ भारद्वाज जी,
2: जी,
3: उन्होंने उन्हें जब पकड़ा गया, कैद करा गया, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, तो उन्हें मजिस्ट्रेट को देखते ही कहा कि बंदरों, हमारे देश को छोड़ दो, चले जाओ, भाग जाओ, बंदरों कहा उन्हें
1: जी।
2: अच्छा,
3: हाँ जी। और वो है, जब ही उन्हें मजिस्ट्रेट ने 6 महीने की कैद की सजा सुना दी उन्हें,
2: हाँ, बंदर कहने पर ना,
3: सजा काटी, कई बार जेल गए, बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद में आता है एक नाम और, जयनारायण सिन्हा जी,
2: जी जी, हाँ।
3: वो जो है क्रांतिकारी थे, बहुत ही, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्होंने कई बार जेल काटी और बाद में वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे।
1: क्या बात है सर।
3: उनकी पत्नी थी एक सविता ठाकुर
1: जी,
3: जो आज भी जिंदा है
1: जी। अच्छा।
3: और वो बहुत ही वृद्ध है, मैं कई बार देख चुका हूँ, उसमें बढ़ चढ़ भाग लेती है सार्वजनिक स्थानों में, सामाजिक कार्यों में।
2: अच्छा, वही जोश देश के प्रति रहेगा क्योंकि उनके परिवार में, खून में
1: वो है, वो निकल कर आया है कि वो देश प्रेम

0: इस समय थोड़ा सा भी ना, मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा हो गए हैं मदन गिरी जी के, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए हो गया है, वरना चीज लोग हटते जा रहे हैं। और ये
1: कुछ
0: थोड़ी
1: बच्चे ऐसे भी हैं
0: जी थोड़ी
1: जो
0: सी वो
1: बिल्कुल
0: है
1: देश
0: कि
1: के लिए सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं।
0: बहुत है, और हम चाहते हैं कि जो थोड़े कम है वो भी जुड़े अपने देश के लिए, और क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश से ऊपर कुछ
1: कुछ नहीं
0: नहीं
1: तो
0: है।
1: अलका, ये बात बात तो मेरी माननी पड़ेगी आपको, सब ऐसे हैं।
0: जी
1: भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रोम रोम से भारत का हित ना
0: ना
1: चाहता
0: चाहता
1: हो।
0: हूं
1: और इसीलिए आज हमने वंदे
0: बिल्कुल।
1: मातरम की बात कही, भारत माता की जय की बात कही, देश के वीर जवानों का स्मरण किया है। मदन गिरी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने कुंवर सिंह जी, विश्वनाथ भारद्वाज जी, जय नारायण जमुना जी के बारे में दी, और इतनी सुंदर और सही और सब आपके समय के लोगों की जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे अवसर दिया।
0: जी। हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो,
0: हेलो जागरूक श्रोता।
2: नमस्ते,
0: नमस्कार सर।
2: मैं शाही मार्केट से आ रहा था, आसिफ चौधरी बात कर रही हूँ।
0: जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आसिफ चौधरी जी आपका, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ, जैसे कि हमारा आकाशवाणी नजीबाबाद बढ़िया है, ऐसे मैं हूँ।
0: जी
2: जो
0: बिल्कुल
2: कि रात
0: बिल्कुल,
2: मैंने
0: अच्छे लोग अच्छे लोगों से जुड़े
2: गूंगा
0: रहते
2: वो
0: हैं।
2: नाटक सुना 10 बजे
0: हाँ जी,
2: जी,
0: तो
2: उसमें काफी नाम आए हमारे आसपास के जिला बिजनौर के, तो
0: जी,
2: अच्छा लगा। जैसे कि प्रवीण सिंह जी से, लोकेश
0: जी,
2: सिंह जी,
0: हाँ रिकी सिंह
2: ये
0: जी,
2: इन लोगों इन्होंने अपना बलिदान दे दिया और
0: जी
2: हमें खुली हवा में जीने
0: सांस
2: का
0: आज उनकी
2: अधिकार
0: वजह से हम
2: दिया
0: ले रहे हैं जी। तो आज आप किन के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे, हमारे ऐसे नायक जो कहीं गुमनाम हो गए हैं?
2: जी। सोनाम सी सेनानी जी तो बहुत लोग
0: जी, आप
2: कहाँ
0: थोड़ा
2: तक
0: रेडियो
2: लेंगे
0: साइड से
2: नाम,
0: थोड़ा दूर हो
2: बात
0: जाइए। आसिफ जी, जैसे
2: अच्छा
0: कि विपिन चंदपाल जी है, अशफाक उल्ला खां है, नाना साहब हैं, सुखदेव जी हैं, कुंवर सिंह की बात हुई, मंगल पांडे जी को जानते हैं लोग, वी डी सावरकर हैं, और कमला नेहरू जी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, मैडम भीका जी कामा हैं, ऐसे जी,
1: बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको लोग अब धीरे धीरे जानने लगे हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनको अभी नहीं जानते
0: नहीं
1: हैं।
0: जानते हैं।
1: तो हाँ, उषा मेहता हैं जैसे, जिनका आज हमने रेडियो के बारे में जिक्र भी
0: जी
1: करा था कि उन्होंने एक अलग से सीक्रेट रेडियो चलाया था।
0: जी
1: तो
0: कमला
1: इस
0: देवी
1: तरह के
0: चट्टोपाध्याय हैं
1: इन ऐसे
0: जी।
1: लोगों के बारे में अगर आप हमसे साझा करना चाहें तो बहुत अच्छा है। वैसे आपके स्वतंत्रता और देशभक्तों के लिए जो भी विचार है, सादर आमंत्रित हैं।
2: जी, तो जैसे भगत सिंह जी ने बहुत कुर्बानी दी हमारे लिए,
0: जी
2: और बहुत लोग थे जिन्होंने कुर्बानी दी, जान दे दी देश के लिए,
0: जी
2: उनको याद कर लेना चाहिए, और आजकल के बच्चे जरूर याद रखें
0: जी
2: कि
0: जी
2: हम
0: जी कहते हैं
2: इस टाइम
0: बच्चे
2: पे।
1: बड़ों से सीखते हैं, यानी कि हम सब बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी कहानी किस्से सुनाएं जैसे हमारे समय में दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, या बड़े लोग, या स्कूलों में भारत की महान विभूतियाँ एक पुस्तक होती थी, वो पढ़ाई जाती थी, है ना? तो
2: जी
1: ज़रूरी
2: जी
1: है, जिक्र होगा तो बच्चों को समझ में आता रहेगा। कोई और
2: बस
1: संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हो?
2: मैं यही कहूंगा कि सोभित शर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छा नाटक हम पेश किया,
1: जी
2: और अनाउंसर भी हमारे काफी नजर आए रात,
0: जी
2: उनकी आवाजें मिली तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह के नाटक होने चाहिए।
1: धन्यवाद आपका, और ये सीधी सीधी
2: नमस्कार।
1: आपकी हौसला अफजाई हमें
0: जी बिल्कुल,
1: मिली।
0: चलिए हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जागरूक श्रोता।
3: जी नमस्ते
0: नमस्कार सर, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
3: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है सिसोदिया जी आपका, कैसे हैं आप?
3: थैंक यू, बहुत अच्छा हूँ, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त की।
0: जी आपको भी 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा विषय है भूले बिसरे नायक।
3: जैसे भूले बिसरे नायक तो बहुत सारे हैं, और हमने जो किताबों में पढ़े हैं बस उन्हीं को याद है। और ऐसा
0: जी
3: तो हमें जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी
0: झांसी
3: वाली
0: वाली
3: रानी
0: रानी
3: थी।
0: थी जी
3: जी बिल्कुल है, और उनकी जितनी भी मतलब पूरा इतिहास देखा जाए ना, तो
0: जी
3: उन्होंने कितना कम उम्र में कितना

0: संघर्ष किया, और हम तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतने दुश्मनों से लड़ सकते हैं, या फिर ऐसे मतलब अपने छोटे से बच्चे को लेकर किसी
1: जी
0: जंग में
1: जी
0: जाना
1: जी
0: कितना हमारे लिए कठिन समय था वो उन लोग उन उनके लिए। लेकिन
1: जी
0: उन्होंने अपने देश के लिए अपने बलिदान दिया, अपने देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया जो हम उसे सच्चा नमन करते हैं, और उनकी इस बलिदान को हम कभी भी नहीं भुला सकते।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: नहीं भुला
0: बिल्कुल,
1: सकते
0: आपने
1: हैं।
0: सही
1: और
0: कहा प्रेम सिंह जी।
1: उनके साथ हम आप जोड़ना चाहेंगे, उनके साथ निधि जी झलकारी बाई थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल का नेतृत्व करती थी,
0: हाँ, उन्हीं
1: और
0: की शक्ल
1: उन्होंने
0: थी।
1: युद्ध के दौरान रानी का रूप धारण करके अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया था और देश के लिए बलिदान कर दिया था। तो ये भी ऐसे कुछ नाम हैं जो पीछे छुप जाते हैं, या फिर उनके बलिदान को हम याद नहीं कर पाते हैं, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं।
0: और प्रेम सिंह जी ने हमें अग्रिम शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की दी, तो उनके माध्यम से हम भी अपने सभी श्रोताओं को ये अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे और साथी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं।
1: हेलो जागरूक श्रोता, हेलो जागरूक श्रोता,
2: जागरूक श्रोता
1: नमस्कार सर,
2: अलका मैम और निधि भारद्वाज मैम को मेरा जय हिंद।
1: आपको
0: जय
1: भी
0: हिंद
1: जय हिंद।
2: मैम, आप बताइए, आप दोनों कैसी हो?
1: हम अच्छे हैं, और आपका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
2: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
1: जी सचिन जी, कैसे हैं आप?
2: मैम हम अच्छे हैं, और यहाँ पे बारिश हो रही है।
0: अरे वाह सचिन जी, ये बताइए, जैसे वहां बारिश हो रही है तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तो पूरी तरह से तैयार है ना
2: अरे मैम, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम
1: जी,
2: ना
1: बस यही बात यही
0: तो
1: प्रेम चाहिए अपने देश के लिए कि कुछ भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे।
0: देखिए, क्योंकि बात हम भूले बिसरे नायक की कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेते हुए कुछ तो करेंगे ना।
2: मैम, जो हमारे पुराने जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
0: जी
2: ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जब फांसी के फंदों से नहीं डरे थे, हम बारिश से कैसे डर
1: क्या,
2: जाएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी बात देखिए कही है
0: सही
1: कि
0: कहा आपने।
1: हम तो सिर्फ बारिश में भीग रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जान ही न्योछावर कर दी अपने देश पर।
0: आप बताइए, आज आप किस याद को हमसे साझा करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा नाम है जो अपने श्रोताओं तक आप पहुंचाना चाहते हैं भूले बिसरे नायक में?
2: मैम, लक्ष्मी, जो लक्ष्मीबाई थी, तो उन्होंने अपने ना अपनी जान की परवाह ना करते हुए और अपने बच्चे को अपनी पीठ से बांधा,
0: हाँ
2: और घोड़े की जो लगाम थी उसे अपने मुंह में दबाया और दोनों हाथों से तलवारें चलाईं।
0: हाँ खूब लड़ी मर्दानी,
1: वो
0: वो तो
1: तो
0: झांसी
1: झांसी
0: वाली
1: वाली रानी
0: रानी,
1: थी
0: तो
1: जी।
0: मराठा शासित राज्य झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति।

0: हेलो जागरूक श्रोता।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार सर, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं सचिन बात कर रहा हूँ, कानपुर से।
0: सचिन जी, एक बार फिर से सचिन से मुलाकात हो गई। कहां से?
2: ये सतीश है।
0: अच्छा,
1: सतीश बात कर रहा हूँ।
0: अलका
1: बोली
0: सचिन, मुझे लगा वापस आ गया सचिन।
2: इसलिए मैंने कंफर्म किया कि सचिन जी बोल रहे हैं कि सतीश जी।
0: सतीश जी किस जगह
2: हैं हमारे साथ? सतीश जी कानपुर से। तो सतीश जी, पहले तो आप ये बताइए कि मौसम आपके यहाँ कैसा है?
1: मौसम सही है
2: जी,
1: और बारिश भी हो रही है
2: जी।
1: और आप प्रोग्राम कर रहे थे तो 15 अगस्त की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
0: आपको भी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और बताइए, क्या तैयारी हो गई आपकी स्वतंत्रता दिवस के लिए?
1: हाँ, तैयारी हो रही है क्योंकि झंडा अंडा लाए हैं तो बच्चों के साथ जाएंगे तो फहराने हैं।
0: अच्छा, देखिए आज हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम भी भूले बिसरे नायक ये विषय है। आप इसके बारे में कुछ बताइए या फिर कोई एक आजादी का तराना भी बात से पहले सुना दीजिए, अगर आप गुनगुनाते हैं तो।
1: मुझे और जैसे आपके इधर मौसम कैसा है?
0: जी, मौसम बढ़िया है। बस अब आप देशभक्ति से प्रेरित होकर कुछ देशभक्ति की बातें कीजिए हमसे, भूले बिसरे नायक के बारे में बताइए, या कुछ और आपके मन में है
2: जो हमारे श्रोताओं को आप संदेश देना चाहते हैं?
1: जी
0: ठीक है, तो फिर आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं हमसे?
3: बात कर रहा हूँ ग्राम मीरमपुर बेगा से।
2: मोहम्मद कैफ
3: जी।
2: जी मोहम्मद कैफ जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है मैम, बारिश का मौसम हो रहा है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
2: अच्छा, तो आप
3: प्रोग्राम चल रहा है
2: जी, जी।
3: स्वतंत्रता दिवस है कल।
0: हाँ, जी। तो कितना
3: उत्साह देखने को मिल रहा है, हर घर तिरंगा चल रहा है, लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा सजाया हुआ है।
0: वाह, बिल्कुल ऐसा लगा कि आपने हमें एकदम सजीव प्रसारण
2: सुना दिया है। बिल्कुल,
0: और अच्छा लगा ये जानकर। हर घर तिरंगा जो हमने देखा कि कल जगह जगह रैलियां निकली हैं, उससे तो बिल्कुल जोश आ गया
2: सब में, जोश भर गए कि 15 अगस्त बस आने ही वाला है।
0: तो उसकी रैली निकल चुकी है और हमारे जो तिरंगा है वो हमने घर पर फहरा दिया है। ऐसे में हमें ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम इसे हटाकर रखेंगे तो बहुत ही सम्मानपूर्वक
2: रखेंगे। जी बिल्कुल, और पैरों में ना जाए, ये खास ध्यान रखें हमारे सभी श्रोता।
0: हाँ, तो भूले बिसरे नायक क्रम में आप मोहम्मद कैफ जी किनको याद करना चाहते हैं? आज हमारा हम आजादी के इस कार्यक्रम में स्वतंत्र दिवस पर जो विशेष फोन इन कार्यक्रम है, उन लोगों को याद करना चाहते हैं जिनको हम भूले चले जा रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि बेगम हजरत महल,
3: लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं तब जी हमें आजादी मिली।
0: बिल्कुल सही
3: जी, और रात कार्यक्रम चल रहा था, मैं सुन रहा था वो नूरपुर से।
0: जी
3: इसमें हमारे जिले के भी काफी लोग थे।
2: हाँ जी, प्रवीण सिंह थे,
3: लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी।
0: जी जी जी, सत्यवीर जी ने बात की थी
3: इसके बारे में, और उन्हें समझाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो और समझे किस बलिदान से आजादी मिली।
0: कैसे समझा सकते हैं आप?
2: अगर आपको हम कहें कि हमारे श्रोताओं से आप अपनी ये बात किस तरह साझा करेंगे तो बताइए।
3: बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बुरे कामों से तो बचना चाहिए, देखिएगा, और जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, और बच्चे जो पढ़ रहे उन्हें भी समझना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, जैसे विचार हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं वैसे ही हम वक्ता होते हैं और वैसे ही हमारा
2: आचरण हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने हमसे कही। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
2: हेलो जागरूक श्रोता।
0: हेलो जागरूक श्रोता, कौन साथी आज हमसे जुड़ रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम में?
4: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कही कैसे हैं आप?
4: सब कुछ खैरियत है, उम्मीद करते हैं परिवार के लोग भी सब खैरियत से होंगे।
0: बिल्कुल, आपकी उम्मीद है तो सब

0: उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए यही होगी
1: बिल्कुल
0: कि इस
1: बहुत
0: देश को फिर से किसी का गुलाम न बनने
1: ना, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमें अपना सादा जीवन उच्च विचार रखना होगा। और आपकी बातों में ही हम याद करना चाहते हैं भूले बिस्तरे क्रम में रानी गाई दिन निलियू को, विंगली वेंकैया, चेतराम जाटव जी को, बहादुर शाह जफर जी को, मनमतनाथ गुप्ता जी को,
2: और भी बहुत सारे रोशन सिंह, जोगेश चंद चटर्जी, बाघा जतिन, अगर कहीं राशिद जी अगर इन नामों को लेना शुरू करें तो शायद दिन भी कम पड़ जाए। इतने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर गए।
1: आप हमसे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम कॉल अब हम ले लेते हैं।
2: हेलो जागरूक श्रोता, हेलो जागरूक श्रोता,
3: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है भाई? बड़ी खनकती आवाज गुड मॉर्निंग की हुई है।
3: नदीम बाकी बोल रहा हूँ शेरकोट से।
2: जी नदीम बाकी जी, कैसे हैं आप?
3: अलका जी भी ठीक हैं?
2: जी बिल्कुल ठीक है।
3: आज सुबह से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है देश के हित में। और सुबह का सीरियल तो वाकई बहुत अच्छा लगा हमें।
1: धन्यवाद आपका
2: जी। तो नदीम बाकी जी, कुछ समय हमारे पास बचा है तो जल्दी से आपका की राय जानना चाहेंगे हमारे भूले बिसरे नायकों के विषय में, अगर आप किसी के बारे में साझा करना चाहें तो।
3: जी वैसे तो किसी के बारे में क्या, सभी लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं जो जिन्होंने भी हमें देश के लिए कुर्बानी दी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आगे आने वाले में भी सब लोग इस बात का ध्यान रखें, उन लोगों की कुर्बानी का ध्यान रखें और देश को आगे बढ़ाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद नदीम बाकी जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की अपनी राय। और अब
1: अग्रिम शुभकामनाएं हम स्वतंत्रता दिवस के अपने श्रोताओं को देते हैं। शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज
2: और अलका सिंह को दीजिए इजाजत। श्रोताओं
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त अलका सिंह। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने में हमारे शहीदों के तो बलिदान हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे इस स्वतंत्रता को बनाए रखे हैं, और वो हैं हमारे देश के जवान जो निरंतर देश की सीमा पर खड़े हैं, गर्मी धूप किसी की परवाह नहीं करते हुए सिर्फ अपने देश के लिए वहाँ खड़े हैं। मिलने से पहले ही बिछड़ने का गम लिखा है, मिलने से पहले ही बिछड़ने का गम लिखा है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए इंतजार ही इंतजार लिखा है। उनके जाने से आने तक का ना जाने कैसे एक एक पल जिया है, मगर हमसे भी ज्यादा उन्होंने देश से इश्क किया है। अब क्या बताएं, हमने फौजी से इश्क किया है। जी हाँ श्रोताओं, वो फौजी जो अपने परिवार को छोड़कर देश को सबसे ऊपर रखते हैं, और सच कहें तो उनकी पहली प्रेमिका पत्नी वो भारत माँ ही होती है या देश की सीमा ही होती है, कि उस अपने घर वालों से भी ज़्यादा लगाव उनको उससे हो जाता है। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। इसे आवाज़ दी है रूप कुमार राठौर ने।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर का ये गीत, जिसे आवाज दी थी रूप कुमार राठौर ने। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था अनु मलिक का। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन नायकों की जो हीरो तो नहीं है, लेकिन देश के हर वासी के दिल में वो एक सच्चे हीरो की तस्वीर रखते हैं, हमारे फौजी। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य से नीचे और 50 डिग्री से ऊपर का तापमान। शून्य से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 डिग्री से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री के में ठहाके लगाकर हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजियां हाड़ मास के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए? जी हाँ श्रोताओं, जिस गर्मी में, जिस ठंड में हम जाना भी पसंद नहीं करते, रहना भी पसंद नहीं करते, वो अपनी जिंदगी बिताते हैं। ऐसे मौसम में जहाँ हमको थोड़ी सी गर्मी में पंखा या एसी चाहिए, वो सूरज की गर्मी में तपती धूप में ड्यूटी पर लगे रहते हैं। जिस ठंड में हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कहीं और चले जाएं, इस ठंड से दूर हो जाएं, वो दृढ़ संकल्प के साथ वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसे हैं हमारे देश के वीर जवान। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हॉलीडे से। इसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हमारे उन जवानों की जो सब कुछ छोड़कर अपने देश पर न्योछावर हो जाते हैं। कि ना मस्जिदों ने ही सजदा किया कभी तुम्हें, ना खुदाओं से बढ़कर जो रुतवा होता है ज़मीन हिंद ने वो दिया तुम्हें। तुम्हें वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी, कभी तुम अपने सीने में भर के ज़मीं पर लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम एक बच्चे की तरह वहीं लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियादे सपूत पाने को, जो लब से लेने लेके शिकायत यहीं शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो बबूल हो जाती ये जमीन, खून से यूं लाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यहाँ जमाने में, लेकिन हमारे वतन के वास्ते यूं मुस्कुरा कर मरता कौन। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसे ही होते हैं हमारे जवान, जिनके लिए उनकी जान से भी कीमती होती है उनकी माँ भारती, उनका देश। और वो हंसते हंसते न्योछावर कर देते हैं अपने प्राण। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर 2 से। इसे आवाज़ दी है विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर टू का ये गीत, जिसे आवाज दी थी विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार ने। गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: यूपी 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
2: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
1: यूपी 112 की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
2: शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ।
1: यूपी 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हमारे जवानों की, उनके बलिदानों की, कि जिनके बलिदानों के कारण मान बचा था भारत का, प्राण दिया बुझने से ही सम्मान बचा था भारत का, मां के चरण पखारे थे देवी।

ये बल के आगे दुश्मन भी हारे थे, उनके देव ये बल के आगे दुश्मन भी हारे थे। जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोता, हमारे जो सुन रहे हैं वो सभी जानते हैं कि हमारे जवान हमारे देश के लिए कितने कीमती हैं और उनके लिए उनका देश बेशकीमती है। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। इसे लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का, आवाजें हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की।

श्रोताओं, हमारे जवान जो हमारे देश के लिए सब कुछ कर जाते हैं, और उनसे बहादुर शायद ही कोई हो जो अपने प्राण मिनटों में न्यौछावर कर जाते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब किसी जवान की जान ना जाए, वो जाए बॉर्डर पर अपने देश के लिए लड़ें और अपने घर खुशहाल वापस आएं। जय हिंद साथियों। अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात

54 किलो हर्ट्स पर। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
3: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारी ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर

0: ये आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
0: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
3: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
4: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
3: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
4: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ।
3: जैसे तुम्हारे मर्जी।
2: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।

0: अरे भाई कौन हो तुम, ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
1: जी मैं दादा भाई हूँ।
2: दादा भाई?
1: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
2: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
0: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना,
3: अरे जाओ कुछ और काम करो।
1: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
4: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
1: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
4: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
1: मेरे साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
3: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
1: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
5: लेकिन वो कैसे?
1: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
5: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
2: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
5: बोलो, क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
1: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
4: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।

मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ।
6: हाँ।
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
5: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
6: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
5: ठीक है,
6: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी

0: क्लास में न जाए। लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में न जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
1: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
0: क्या?
1: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, न इधर उधर भटकेंगे न शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
0: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
1: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
0: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
2: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
3: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
2: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
4: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
5: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
4: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
5: हाँ काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
4: अच्छा सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
5: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो वो आ ही गए।
1: क्यों दिनेश भाई कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
5: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
1: नहीं भाई मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
5: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
1: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
5: जी,
1: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
5: उससे क्या होगा
1: भाई? अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं, ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
2: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई

0: तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया। लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
1: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
2: मैं आप लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
3: ठीक है, हम सब तैयार हैं। हम तैयार हैं।
2: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
3: नहीं।
2: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
3: नहीं।
2: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन

0: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
1: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
0: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12 बज रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
6: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। और हमारा फोन नंबर है
7: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
8: स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज हम गर्व से कहते हैं हम आजाद हैं। लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ आजाद देश में रहना ही आजादी है? श्रोताओं, अगर हमारे पास कोई गरीब भूखा सो रहा हो, कोई बच्चा शिक्षा की जगह मजदूरी कर रहा हो, या किसी लड़की को उसके सपनों के लिए रोका जा रहा हो और हम गलत होते हुए भी चुप रहें, तो क्या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आज एक सवाल है, मैं अपने देश की आजादी को अपनी जिम्मेदारी में कैसे बदल सकता हूँ? तो श्रोताओं, आइए आइए सुनते हैं एक छोटा सा नाटक।
9: माँ, जल्दी से सफेद कुर्ता निकालो, आज इंडिपेंडेंस डे है, मैं दोस्तों के साथ झंडा फहराने जा रहा हूँ।
10: बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जाने से पहले नाश्ता तो कर लो।
9: नहीं माँ, देर हो रही है, आज देशभक्ति दिखानी है।
10: देशभक्ति सिर्फ आज के दिन दिखाई जाती है क्या?
9: माँ, अब लेक्चर मत दो, झंडा

0: लहराना है, राष्ट्रगान गाना है, फोटो भी डालनी है, बस
1: बस।
0: हाँ,
1: फिर एक काम करना, रास्ते में अपनी आंखें खुली रखना।
0: मतलब?
1: आज देखना कि तुम्हारे देश में कौन कौन आजादी का इंतजार कर रहा है।
2: आरव, अरे आरव इधर आ, पहले सेल्फी ले लेते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन।
0: हाँ भाई, एकदम शानदार।
1: तभी एक छोटा बच्चा पास आता है।
3: भैया भैया, कुछ सामान ले लो, सुबह से कुछ नहीं बिका।
2: अरे यार, परेशान मत करो, आज इंडिपेंडेंस डे है।
3: भैया, मेरे लिए भी तो आज इंडिपेंडेंस डे है।
0: तुम स्कूल नहीं जाते क्या?
3: पहले जाता था, अब पापा बीमार है, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है।
0: लेकिन तुम्हारी उम्र तो पढ़ने और खेलने की है।
3: पढ़ना तो मुझे भी अच्छा लगता है भैया, लेकिन मजबूरी आजादी से बड़ी लगती है।
2: चल चल आरव, हमें देर हो रही है।
0: नहीं राहुल, आज मुझे देर नहीं करनी।
2: कहाँ कहाँ जाना है?
0: पहले इसे कुछ खाने को देते हैं, फिर देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।

0: आ गए झंडा फहरा के? कैसे रही
1: माँ? आज समझ आया कि देशभक्ति क्या है।
0: बेटा क्या समझ आया?
1: देश से प्यार करना सिर्फ झंडा लगाने या सोशल मीडिया पर आई लव माई इंडिया लिखने से नहीं होता।
0: तो
1: देशभक्ति तब है जब हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें, जब हम किसी कमजोर का मजाक ना उड़ाएं, जब हम किसी लड़की को उसके अधिकारों से वंचित ना करें, जब हम बच्चे को मजदूरी की जगह शिक्षा दिलाने की कोशिश करें, और जब हम धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय इंसान को इंसान समझें।
0: बेटा अब तुमने सच में स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
2: दोस्तों हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे युवा नए सपने देख रहे हैं, भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। गरीबी, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, महिलाओं के प्रति भेदभाव, हिंसा, नशा, भ्रष्टाचार, मिस इन्फॉर्मेशन और समाज में बढ़ती दूरी। श्रोताओं, इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। जी हाँ, हम सब की भूमिका है। देश हमारा है, समाज हमारा है, और जिम्मेदारी भी हमारी है। सच्ची देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हम अपने देश की कमियों को छुपाएं। सच्ची देशभक्ति का मतलब है कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए अपना छोटा सा योगदान देना। अब समय है आज के स्वतंत्रता दिवस के चैलेंज का, जो आपको करना है। श्रोताओं, इस बार चैलेंज सिर्फ सोशल मीडिया पर झंडे की फोटो लगाने का नहीं है या फिर आई लव माय इंडिया कहने का नहीं है, परंतु इस चैलेंज का नाम है एक दिन एक जिम्मेदारी। जी हाँ, एक दिन एक जिम्मेदारी। आज से अगले 7 दिनों तक हर दिन अपने देश के लिए एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो चैलेंज है किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, अपने आसपास की गंदगी साफ करने में योगदान दें, या किसी महिला या लड़की के सम्मान और अधिकार के लिए आवाज उठाएं, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ समय बिताएं। सोशल मीडिया पर कोई झूठी या नफरत फैलाने वाली खबर आगे ना भेजें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिससे आपका मतभेद है और सम्मान के साथ उसकी बात सुने। और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज ये है

कि आज किसी एक व्यक्ति से पूछिए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। श्रोताओं, हो सकता है आपका छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। तो दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं मेरा देश महान है, लेकिन देश महान केवल उसके इतिहास से नहीं बनता, देश महान बनता है उसके नागरिकों से। जब एक युवा गलत रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनता है, तब भारत मजबूत होता है। श्रोताओं, जब एक लड़की को शिक्षा और अपने सपनों का अवसर मिलता है, तब भारत मजबूत होता है। जब एक बच्चा मजदूरी से निकलकर स्कूल जाता है, तब भारत मजबूत होता है। या फिर जब हम भ्रष्टाचार को अरे चलता है कहकर स्वीकार नहीं करते, तब भारत मजबूत होता है। श्रोताओं, जब धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जी हाँ, तब भारत मजबूत होता है। और जब हम कहते हैं ये समस्या मेरी नहीं है की जगह जब हम कहते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तब असली बदलाव शुरू होता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक कविता सुनेंगे जिसका शीर्षक है मेरा भारत। और श्रोताओं, ये कविता हमारे साथ साझा करेंगी हमारी सहयोगी प्रियंका। तो प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद एना। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक कविता मेरा भारत। मेरा भारत सिर्फ नक्शे पे बनी एक तस्वीर नहीं, यह करोड़ों दिलों की धड़कन है कहीं। यह खेतों में मेहनत करता किसान है, सीमा पे खड़ा वीर जवान है। यह माँ की आंखों का सपना है, बच्चे की मुस्कान का अपना है। यह मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे की सेवा, चर्च की प्रार्थना का सम्मान। यह अलग अलग भाषा, अलग अलग पहचान, फिर भी दिल से एक यही है हिंदुस्तान। पर मेरे भारतवासियों से एक सवाल है आज, क्या हम सच में समझते हैं आजादी का राज? अगर कोई भूखा है तो क्या मैं आजाद हूँ? अगर कोई डर में जीता है तो क्या मैं आजाद हूँ? अगर बेटी को सपने देखने से रोका जाए, अगर बच्चे के हाथ में किताब की जगह काम थमाया जाए, अगर नफरत हमारे दिलों में घर कर जाए, तो तिरंगा ऊंचा होकर भी क्या कह पाए? आओ आज एक वादा करें, अपने हिस्से का उजाला करें। जहां अन्याय दिखे वहां आवाज बनेंगे, जहां नफरत मिले वहां प्यार चुनेंगे। किसी गिरते को हाथ देंगे, किसी रोते को साथ देंगे। भारत को केवल महान कहेंगे नहीं, भारत को महान बनाने में अपना योगदान भी देंगे। क्योंकि देश सिर्फ मिट्टी का नाम नहीं, देश हम हैं, देश आप हैं और देश मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की कविता, जी हाँ, जिसका शीर्षक था मेरा भारत। श्रोताओं, आज आइए एक छोटी सी प्रतिज्ञा लें। मैं अपने देश से प्यार करूंगा, मैं अपने आसपास के लोगों का सम्मान करूंगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगी, मैं बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को महत्व दूंगा, मैं महिलाओं की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करूंगा, मैं नफरत और झूठी जानकारी फैलाने से बचूंगा, और सबसे बढ़कर मैं केवल अच्छे भारत का सपना नहीं देखूंगा बल्कि उसे बनाने में अपना योगदान भी दूंगा। जी हाँ श्रोताओं, आजादी हमें विरासत में मिलती है, लेकिन इस आजादी को जिम्मेदारी में बदलना हमारी पीढ़ी का काम है। आइए इस इंडिपेंडेंस डे, इस स्वतंत्रता दिवस के दिन पर झंडा जरूर फहराइए, लेकिन अपने दिल में भी एक झंडा फहराइए, जी हाँ, ईमानदारी का, एकता का, सम्मान का, न्याय का और इंसानियत का। श्रोताओं, क्योंकि देश हमसे है और भारत का भविष्य हमारे आज के फैसलों से बनेगा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।

तो श्रोताओं, अब समय है आपका। जी हाँ, आपका, इसलिए क्योंकि हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें अपने नाम भेजे हैं ताकि हम कार्यक्रम में उन्हें सुनाएं। ये ऐसे श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों के साथ हमारे कार्यक्रम को साझा करते हैं। तो श्रोताओं, हमारे श्रोता है राम नरेश सिंह यूपी सीतापुर से, नीता मिश्रा यूपी सीतापुर से, आशा, दिव्या और कृष्णा गोरखपुर से, जगदीश प्रसाद जी बाराबंकी से, अंकित उन्नाव से, फरजाना बिहार मुजफ्फरपुर से, योगेश कुमार सीतामढ़ी से, राधिका नवादा से, रामदेव महतो खगड़िया से और नासिर अली मधुबनी से। आप सब श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जो लगातार हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और दूसरों के साथ भी इसे साझा करते हैं और समाज में बदलाव के लिए, समाज के सुधार के लिए हमारे कार्यक्रम को दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं योगराज नायक का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित है अदा चौताल और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुने योगराज नायक का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित गत अदा चौताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध था। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है मिड डे मेलोडी। मिड डे मेलोडी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बरसात का मौसम है और सावन चल रहा है। ऐसे में सावन के झूले, घेवर की मिठाई, हल्की हल्की बूंदों की फुहार मौसम को और भी सुहाना बना देती है। और कल हरियाली तीज है, तो हमारी बहनें तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होंगी, है ना? तो आप सभी को हरियाली तीज की अग्रिम शुभकामनाएं। और सावन का महीना अभी ऐसे ही चलेगा, तो आप आनंद लेते रहिएगा और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। रिमझिम सावन आया है, तन मन में अजब तरंगे लाया है। हर तरफ दिखती हरियाली है, हर उपवन का तू ही माली है। सबका मन ही अति हुलसाया है, रिमझिम सावन आया है। तो चलिए श्रोताओं, सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गुरु से। इसे आवाजें दी हैं श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार ने। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। बारिश, ऐसे कितने पहलू हैं इस बारिश के और सावन के, हमेशा एक नया अंदाज। अगर गौर से देखो तो पता चले कि ये सावन ही है जो सबको बहुत ललचाता है, बहुत तड़पाता है और राह देखने को मजबूर करता है, और जब आता है तो दिल खोल के बरसता है। तन मन जब भीग जाते हैं तो सावन के आने की मुबारकबाद तो बनती है ना, है ना श्रोताओं? तो मत तड़पा ऐसे, हमें मेघा बरस घनघोर, ताल सभी सूखे यहाँ पंछी करे ना शोर। जी हाँ श्रोताओं, लेकिन जब ये मेघा आती है और ताल मिल जाते हैं तो वो खुशी ही अलग होती है और हमारा नाचने का गुनगुनाने का मन खुद ब खुद करने लगता है, है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ताल से। इसे आवाजें दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, संगीतकार है ए.आर. रहमान और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। तो लीजिए आप इस प्यारे से गीत का आनंद।

श्रोताओं, सावन का ये मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है। जी हाँ श्रोताओं, जब ये सावन गिरता है तो बहुत कुछ लेकर आता है, और उसी के साथ आती हैं किसी अपने की वो यादें जो हमें अंदर तक तड़पा देती हैं।

दिल में बेचैनी होने लगती है और लगता है कि काश वो हमारे पास होते तो इस सावन का आनंद दोगुना हो जाता है ना। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, वो जहाँ भी हैं खुश रहें, आप भी खुश रहिए और साथ ही सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है योगेश ने, संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने और ये फिल्म है मंजिल

मेघा बरसे रे, जन सब हरसे रे, धरा पर बरसे बेघा रसदार, चले ठंडी बूंदों की फुहार, वसुधा पहने हरियाली का हार, बहारे गा रही गीत मल्हार, फिर तू क्यों तरसे रे, मेघा बरसे रे, जन सब हरसे रे। जी हाँ श्रोताओं, ये जो मेघा है ना, ये कुछ अलग ही आनंद दे जाती है, और खुशी हमें अजग अजीब ही होने लगती है। वो खुशी ना अंदर से निकल कर आती है कभी कभी ना, कब जब हम खुश होते हैं तो बटरफ्लाइज हमारे पेट में घूमने लगती हैं, और वही खुशी हमें इस बारिश को देखकर, इस सावन को देखकर होती है, और हम हंसने गुनगुनाने लगते हैं, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत में पिरोया है उत्तम सिंह और नदीम श्रवण ने, आवाज है लता मंगेशकर की और उदित नारायण की, और श्रोताओं फिल्म है दिल तो पागल है।

श्रोताओं, सावन का ये महीना चारों तरफ खुशहाली और हरियाली तो लेकर आता ही है, साथ में मिठाइयों का भी दौर शुरू हो जाता है ना। घेवर जो साल में एक ही बार मिलता है, सावन के महीने में सबसे ज्यादा खाया जाता है ना। तो आप ऐसे ही मीठा मीठा घेवर खाते रहिए, सावन की खुशियां मनाते रहिए और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। घनघोर बादल भागे घुमड़ घुमड़ कर नाचने को, लख लख करती मोर नहीं आई साथ में नाच का साथ देने को। जी हाँ श्रोताओं, सारी चीजें हमने याद कर ली, लेकिन हम मोर को भूल गए कि मोर भी सावन के महीने में कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और इस महीने का आनंद लेने लगते हैं। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए इस गीत का, जिसे हम सुनवाने वाले हैं आपको फिल्म हम साथ साथ हैं से। इसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और साथियों ने। गीत लिखा है राजकिरण ने और संगीतकार है राम लक्ष्मण।

0: अभी आप सुन रहे थे मिड डे मेलोडी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने

0: कि ये खुसूसी मुहिम बड़े पैमाने पर शहरियों की शिरकत को यकीनी बनाएगी।
1: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के यूपी T20 लीग का चौथा एडिशन आज से शुरू हो रहा है, जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ सीजन का इफ्तिताह करेंगे। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन काशी रुद्रास का मुकाबला गुजश्ता साल के रनर अप मेरठ मार्ग से होगा। इस बार मौसीकी, तफरी और फूड कार्निवाल के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मानसून रियासत भर में सरगर्म। महकमे मौसमियात के लखनऊ मरकज ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 44 अजला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है
3: हम
2: बहनों के लिए
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को मारी प्यार भरी राम राम। मैं थारी बहन कुंवर थारा कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ बहुत बहुत। कैसी हो बहना तुम सब? हाँ बहना, आपके तो घने ही दिन हो गए थे थारे से मिले हो। आज मिले हैं तो सबसे पहले थारा हालचाल तो जान ही लें। थारे घर परिवार में सब चोखे तो हैं? थारी खेती बाड़ी भी ठीक चल रही है ना? ढोर ढंगर भी ठीक हैंगे? बिना चमासा चलिया, इस समय अपनी भी अपने ढोर ढंगरों की भी देखभाल थोड़ी सी ज़्यादा होनी पड़े। और जब उनकी देखभाल रखेंगे तो वे भी ठीक ठाक रहेंगे, थारे घर परिवार वाले भी ठीक ठाक रहेंगे, और तुम भी ठीक रहोगी, तुम्हारा कार्यक्रम भी तो सुनती रहोगी। बिना आज हम अपनी बातों का पिटारा खोल लें, उससे पहले सुन लें थोड़े से जरूरी संदेश।

0: सैंडल, हर पल चंदन का एहसास।
1: घर संसार कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों का कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं थारी बहना कुमुद। बहनों आज सबसे पहले तुम सुनो एक छोटी सी कविता, फिर आगे थारी गल बतिया मंगे। सुनो, हाँ मैं बोल रही, सुनियो। जब विदेशियों का भारत में धीरे धीरे अधिकार हुआ, बन गया प्रजा के लिए नरक, सूना सुख का संसार हुआ। जनता का रक्त चूसने को व्यवसाय हुआ, व्यापार हुआ। थे दुखद दास्ता के बंधन, उस पर यह अत्याचार हुआ। तब धूं-धूं करके धधक उठी जनता की अंतर ज्वालाएं। वीरों की कहें कहानी क्या, आगे बढ़ आई बालाएं। आंखों में खून

0: उतर आया, तलवारें म्यानों से निकली, टोलियां जवानों की बाहर खेतों खलिहानों से निकली। आसन परदेशी सत्ता का पीपल पत्ता सा डोल उठा, उत्साहित होकर भारतीय भारत माँ की जय बोल उठा। हाँ, कैसी लगी कविता? अब बोलो बहना, अब तो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा लगी गया होगा आज हम क्या बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। हाँ बहनों, कल यानी 15 अगस्त 2026 को हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए पूरे 79 साल हो जाएंगे। पूरा देश देखो खुशी खुशी से एक त्यौहार की ढाल मनाएगा। अच्छी बात है, देखो खुशी खुशी, खुशी का दिन है, मनाना भी चाहिए। अगेल उगेल बहना, हमें यो भी ना भूलना चाहिए कि इस आज़ादी को हासिल करने के वास्ते हमारे देशवासियों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में देखो कुछ एक के नाम तो तुमने हमने किताबों में पढ़े, थोड़ा अपने बड़ों से भी जाना, वैसे भी जानकारी थोड़ी बहुत है ही है उनके बारे में। पर बहना, बतेरे सारे बेचारे ऐसे भी थे जो लड़े भी, उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया भी दिया, पर उनके नाम ना तो हमने आज तक सुने, ना किसी से पढ़ा के कहीं सी इनके बारे में। तो बहना, आओ हम सब मिलके नामचीन सूरवीरों की गैल गैल, इन अनाम जो आज़ादी के सिपाही थे, इन्हें भी श्रद्धा से नमन करें। बहना, उनके बलिदानों की खातिर ही हमारा जो देश है वो आज़ाद हो पाया, और आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं ना, तो उनका बहुत बड़ा कर्जा है हमारे पैरों। आज हम जो खुश हैं अपने मन की कर रहे हैं अपने देश में, तो ये सब उन्हीं की बदौलत हैगा जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। बस इसी वास्ते आने वाली पीढ़ी आज़ाद हवा में सांस ले सके, अपने देश को अपने बनाए कानून से चला सके, अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी के जंजीरों में उन्होंने जकड़ने से बचाया। पर बहना, इतनी मुश्किलों से इतनी कुर्बानियों के बाद हमें यह आज़ादी मिल तो गई, लेकिन इसे सहेज कर रखना भी तो हमारा ही काम है। अब हमारा ये फर्ज बने हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का नाम दुनिया में खराब हो। हमारी दिन ब दिन यही कोशिश होनी चाहिए कि एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे देश में एकता बनी रहनी चाहिए, हमारा हर कदम हमारी तरक्की की गैल देश की तरक्की के लिए उठे। हम जो भी काम करें ये सोच के कि हमारा तो फायदा है ही है, हमारे देश का भी इससे फायदा हो, देश में आपसी प्रेम भाव बना रहे, बुराइयों का खात्मा हो, और आने वाली पीढ़ी में शिक्षा का प्रसार हो, सबको रोजगार मिले, नई पीढ़ी ज्ञान विज्ञान को अपना के देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचावे, और साथ ही अपनी जड़ों को भी ना भूले, अपने इतिहास को भी याद रखे। हमने आयो आज़ादी बहुत बड़ी कीमत दे कर चुकाई। आगे वे लक्ष्य पुकार रहा, हांकते हवा पर यान चलो, सुरधनु पर धरते हुए चरण, मेघों पर गाते गान चलो, बदली थी पीछे जो छूटी, सामने रहा वह तारा है, बदली थी पीछे जो छूटी, सामने रहा वह तारा है, आकाश चीरते चलो अभी, आगे आदर्श तुम्हारा है। तो बिना आने वाले स्वतंत्रता दिवस की तुम सभी को खूब खूब शुभकामना। महाराज देश हम सब मिलकर चला में, इसे मिलकर तरक्की के रास्ते पर ले जा में, हमारा देश दिन धुनी रात चौगनी उन्नति करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हें सबको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामना। तो बिना अब आगे क्या, आप तो तुम्हें पता ही है आज है माँ का दूसरा शुक्रवार, और आज हमारा एक खास कर्म रह वह है, कौन सा याद आया? हाँ देखे ना रीना जी को याद आ गया, पर बताए ना रही, कोई बात ना, चलो हम ही बताए दे रहे, तुम्हें भी याद आ जाएगा जिनको ना याद आया। तो फिर ना आज है माँ का दूसरा शुक्रवार, और आज हमारा क्रम रह वह है ज्ञान और मनोरंजन से भरे क्रम माटी हमारे देश की का।
1: माटी मारे देश की।

तो बहना स्वागत है एक बार सभी बहनों का आज के खास कार्यक्रम माटी मारे देश की में फिर से, जिसमें आज हम बात करेंगे सावन माह में शुक्ल की तृतीया को मनाए जाने वाले खास त्योहार हरियाली तीज की, जो बहना कल यानी 15 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। वो भी पता तो होगा, हाँ चोरी चोरी तैयारी तो करने लग रही है, बताना नहीं सब चूड़ी चाड़ी सब खरीद लाई तू। तो बाहरी संस्कृति में यह त्यौहार धरोहर के जैसे हैं बहना, जिसमें हर रिश्ते की अपनी अहमियत है। तीज का यह त्यौहार भी बोबो हम महिलाओं के लिए यू है। सावन में जब कुदरत भी हरी ओढ़नी ओढ़ के हरियाली से अपना श्रृंगार करे है, तो समय पर सुहागिन महिलाओं का मन भी साज श्रृंगार को करने लगे है और मन में हिलोर उठे है माँ के आंगन की। साथ ही उन झूलों की भी याद आने लगे बहना, जो उन्होंने उन पेड़ों पर डाले और उन पर अपनी सखियों के साथ गीत गाती हुई झूला झूला करें थी। बहनों हरियाली तीज के त्योहार के गैल एक पुरानी कथा भी जुड़ी हुई हैगी, सुनी तुमने ना? सुनी सुनो, ऐसा बतावे एक माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता भगवान जी को पति के रूप में शिव जी ना मिल सके। 108वीं बार जब माता ने जन्म लिया तब बिना वो तो घोर तपस्या करने लगी, और उस टाइम पे 108वें जन्म में उनके सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही महादेव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में पाया। उन्होंने उनका उनकी तपस्या स्वीकार करी और इस तरह से माँ पार्वती का और महादेव का पुनर्मिलन हुआ। तो बिना कुछ यो जो पुरानी कथा है, इसीलिए शिव जी की और पार्वती जी की इस महीने में बहुत पूजा कर रहे हैं सुहागिन महिलाएं, और कुछ जगह तो सुहागिन औरतें जो हैं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत भी रखे हैं बहना, और गौरी शंकर की पूजा कर रहे हैं। तो बहना हमारे देश के कुछ राज्यों में ये त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जावे है, उसकी बात भी करेंगे। पर अभी हो जाए प्यारा सा सावन गीत।

इस प्यारे से गीत के बाद सबसे पहले बात करेंगे अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की। यहाँ खासकर पूरब के क्षेत्रों में इस पावन अवसर को कजली तीज के रूप में उल्लास के साथ मनाया जाए बहनों, और कजली गीत गाए जामे। ब्रज और पश्चिमी हिस्सों में तो मंदिरों को हरे रंग के पर्दों और फूलों से सजा दिए हैं, और कान्हा जी और राधा रानी के साथ झूला उत्सव का आनंद ले मैं सभी सब खो जाएं तीज की उसमें खुशियों में। अब बात करें राजस्थान राज्य की, बहना यहाँ तीज माता की भव्य सवारी निकाली जावे। वहाँ की महिलाएं खास तौर पर लहरिया और बंधेज की रंग बिरंगी साड़ी पहने हैं, हाथों में मेहंदी रचा के सोले श्रृंगार करके लोग गीत गाती हुई झूला झूले हैं। महिलाओं को मायके से सुहाग का सामान और मिठाई भेजने की खास परंपरा है, और इस मिठाई में सबसे ज़्यादा खास रवे है घेवर। तुम्हें भी शौक है ना खाने का? हाँ, तीजों पर तो आवे सबसे ज़्यादा, मुझे भी अच्छा लगे भे ना, मारे तो पूजा भी है और खाया भी जा भाई है, सभी का होता होगा यो काम। हाँ, घेवर की याद आवे, तीज के जब बात हो ना सबसे पहले घेवर के वास्ते सुन के मुँह में पानी आ जा। चल घेवर की बात करेंगे फिर कभी। अच्छा, आगे और राज्यों में भी तीज कैसे मनाई जाए।

बहनों, आज घर संसार कार्यक्रम के अंतर्गत क्रम माटी मारे देश की मैं थारे से बात हो रही। हमारी देश के अलग अलग राज्यों में हरियाली तीज का त्यौहार कैसे मनाया जाए इस बारे में। तो बहना, अब हम बात करेंगे पंजाब राज्य की। यहाँ पे इस त्यौहार को तियां कहते हैं। महिलाएं और लड़कियाँ पारंपरिक फुलकारी कपड़े, फुलकारी क्या है, एक तरह की कढ़ाई कढ़े हुए कपड़े, वो पहन के एक बड़ी खुली जगह पे इकट्ठी हूँ मैं और वहाँ का लोक नृत्य गिद्दा करे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। अब बहनों, हरियाणा राज्य में तो तीज का यह त्यौहार पारिवारिक जुड़ाव और मायके के संबंधों को दिखावा है। शादीशुदा बेटियों को उनके मायके से कपड़े, श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ भेजी जावे हैं, जिसे सिंधारा कहा जा। महिलाएं मिलकर व्रत रखें और लोकगीत गावे हैं। और बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे मधुश्रावणी या तीज के रूप में मनावे हैं। नई शादीशुदा महिलाएं 13 दिन तक कठिन व्रत और सात्विक खान पान के साथ अखंड सौभाग्य की कामना करें हैं और बहना अपने सुहाग के लिए भगवान से प्रार्थना करें हैं। तो बहनों, इसी के साथ अब बारी एक और प्यारे से सावन लोकगीत की।

0: बहनों, हरियाली तीज का यह त्योहार अपने अंदर एक प्यारा सा उद्देश्य भी समाये हुए। देखो, कहीं कहीं ऐसा भी रिवाज है, नई नवेली बहू को उसके मायके से तो देवे ही है ये सिंगार उंगार का सामान, मिठाई उठाई, और घर में सास भी देवे है, या घर के जो बड़े हों, सास ना हो तो घर की जो बड़े हों वे देवे हैं कपड़े सिंगार का सामान मिठाइयाँ। तो बिना उसके पीछे एक प्यारा सा आशीर्वाद छिपा हुआ है, अक दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग सदा बना रहे और उनकी वंश बेल बढ़े। तो आज आप सबको भी हमारी तरफ से आने वाले इस त्यौहार की खूब खूब शुभकामनाएं। हाँ, साड़ी सूड़ी नई वाली तैयार कर ली तुमने, हमें पता है चोरी चोरी से कल कोई पहनोगी। हाँ, चूड़ी उड़ी सब खरीद लाएं तुम, हम भी जाएंगे, हम क्यों पीछे रहेंगे भला। देखियो, हम भी नई साड़ी तैयार हो रही हमारी भी। हाँ, इसी के साथ हमारा आज का माटी मारे देश की क्रम समाप्त हुआ है।
1: माटी मारे देश की,
2: माटी मारे देश की।
0: बहनों, हमारे देश को आजादी तो मिल गई 79 साल पहले, पर समय ने हमें बांध रखा, और बांधना भी चाहिए बहना, सारे काम समय से होंगे जब भी ठीक होंगे। और आज भी यो घड़ी हमें आजादी ना दे रही कि थारे से और बातें करें। हाँ, आज का कार्यक्रम तुम्हें कैसा लगा इस बारे में हमें चिट्ठी जरूर लिखियो, कभी तीजो मनाने के चक्कर में चिट्ठी लिखना ही भूल जाओ। हाँ, पता लिख लो हमारा,

कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246763। अब है ना, अब तुम अपनी चिट्ठी या राय हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी लिखे भेज सको हो। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, 9457078288। इसी के साथ अपनी बहना कुमुद कुदो कार्यक्रम का समापन करने की अनुमति। बहनों राम राम।

अभी आप सुन रहे थे घर संसार, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बीना तिवारी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वीना तिवारी के गाए कुमाऊनी लोकगीत, कार्यक्रम है लोकधारा। तो लीजिए पेश है ये अगला लोकगीत।

0: Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के

0: साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई 100 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। Green

0: मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
1: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं, सरकार राज्य की सीआई से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय

0: ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी कव्वालियां। फिल्मी कव्वालियां सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और यूं ही हम आपकी तारीफ नहीं करते, यकीन कीजिए आप वाकई काबिले तारीफ हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपने जो होते हैं वो हमें वैसे भी काबिले तारीफ ही लगते हैं और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहली कव्वाली, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। वर्मा मलिक ने ये कव्वाली लिखी है और इस कव्वाली को संगीत से सजाया है सोनिक ओमी ने। और श्रोताओं, ये फिल्म है धर्मा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी फिल्म धर्मा की ये कव्वाली, जिसे आवाज़ निधि, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गीत कव्वाली लिखी थी वर्मा मलिक ने, और संगीत में पिरोया था सोनिक सोमी ने, और अब आपको सुनवाते हैं ये ज़रूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियों में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाए और आपको महसूस

महसूस कराए कि आप उनके लिए बेहद कीमती हैं, और साथ ही आपके जो अपने हैं आप कोशिश कीजिए कि उन्हें भी यही एहसास दिलाइए कि आपके लिए वो कितने कीमती हैं, और कर दीजिए उनकी तारीफ। ये जो तारीफ शब्द है ना, ये बड़ा अच्छा है और इसको सुनकर हर कोई खुश हो ही जाता है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगली कव्वाली, जिसे हमने लिया है फिल्म ये दिल आशिकाना से। इसे आवाज़ें दी हैं साबरी ब्रदर्स, सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों ने। इस कव्वाली को लिखा है समीर ने और संगीत में पिरोया है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी फिल्म ये दिल आशिकाना की ये कव्वाली। इसे आवाजें दी थी सावरी ब्रदर्स, सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों ने। इस कव्वाली को लिखा था समीर ने और संगीत में पिरोया था नदीम श्रवण ने। और अब आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: एक बार फिर से हाजिर है लेकर आपका मन पसंद कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। भला कहां जाएंगे आपको छोड़कर, इसमें कसम कैसी और वादा कैसा, हमारा इश्क तो इश्क है, इसमें कम कैसा और ज़्यादा कैसा। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपने के लिए जो हमारा प्यार होता है ना, वो कम ज़्यादा नहीं होता है, वो हमेशा ही ऐसा होता है जिसको तोला नहीं जा सकता है, जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता है, वो इन्फिनिटी में होता है और अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत भी नहीं होती है। और अगर आपके पास आपके अपने ऐसे हैं जिनसे आप इतना प्यार करते हैं और वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। और अगर आप उनसे मिलकर खुश हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगली कव्वाली, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने। इसके संगीतकार हैं अनु मलिक, आवाजें हैं सोनू निगम, आफताब सावरी और हाशिम सावरी की। और श्रोताओं, ये फिल्म है मैं हूं ना।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी फिल्म मैं हूं ना की कव्वाली, जिसे आवाजें दी थी सोनू निगम, आफताब साबरी और हाशिम साबरी ने। कव्वाली लिखी थी जावेद अख्तर ने और संगीत में पिरोया था अनु मलिक ने। अब जो तुम साथ नहीं हो मेरे, दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, बस ये गलियां हम भूल जाएं, ये रास्ते अब किसी काम के नहीं। जी हाँ श्रोताओं, जब हमारे अपने हमसे जुदा हो जाते हैं या जुदा होने लगते हैं, तो बस लगता है कि ये अब गलियां, ये नज़ारे अब हमारे किसी काम के नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने क्या अच्छा हमारे लिए सोच कर रखा है ये हमें नहीं पता होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और सोचिए जो हुआ है अच्छा हुआ है।

आगे जो होगा उससे भी अच्छा होगा, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप रहेंगे हमेशा खुश और स्वस्थ, साथ ही सुनते रहेंगे आकाशवाणी नजीबाबाद। छोड़ जाते हैं आपको इस अंतिम कव्वाली के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़कन से। इसे आवाज़ें दी हैं नुसरत फतेह अली खां और साथियों ने। कव्वाली लिखी है समीर ने और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: अशकों को छुपाना लगता है, मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है।
1: फिल्म धड़कन की इसी कव्वाली के साथ कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां अब यहीं पर संपन्न होता है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम

जाती है। विकेंद्रीकृत पावरलूम इकाइयों या बुनकरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्राप्त ऋण सुविधा के बदले मार्जिन मनी सब्सिडी और ब्याज प्रतिपूर्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना और विकेंद्रीकृत पावरलूम इकाइयों और बुनकरों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत प्राप्त ऋण सुविधा के बदले मार्जिन मनी सब्सिडी, उनके ऋण आवश्यकताओं जैसे निवेश की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी आदि को बढ़ाने के लिए इस पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। राज्य में पावरलूम इकाइयों के सभी पात्र व्यक्तियों को 1,00,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि उनकी परियोजना लागत पर 20% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के लिए 10,00,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष होगी, जो बाजार लागत से बहुत कम है। ये ऋण अधिकतम 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अनुसार बिजली संयंत्रों के पात्र लाभार्थी अपनी जमीन पर सौर पैनल लगाकर सरकार से अधिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सोलर पैनल लगाने से छोटे संयंत्रों के लिए कम समय में अधिक बिजली उत्पादन करना आसान हो जाएगा। यदि किसी इकाई में 8 या उससे अधिक हथकरघे हैं, तो इस योजना के तहत सोलर पैनलों की स्थापना 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से देश भर में लगभग 25,00,000 पावरलूम इकाइयों को लाभ मिलता है। लघु उद्योगों की सहायता के लिए कुशल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने की सतत प्रक्रिया को भी वस्त्र उद्योगों में तकनीकी उन्नयन के लिए अपनाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार बुनाई गतिविधि में शामिल सभी मौजूदा व्यक्ति या व्यक्तिगत पावरलूम इकाइयां, नया व्यक्ति और समूह उद्यम शामिल हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार परियोजना लागत के 20% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें 1,00,000 रुपए तक का कवर शामिल होगा। साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,00,000 रुपए तक की सावधि ऋण भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो पहचान का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मालिक, साझेदार या निदेशक के वर्तमान बैंकर से हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र, व्यावसायिक पते के प्रमाण पत्र के लिए व्यावसायिक पते का प्रमाण, योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मशीनरी कीमत, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, मशीनों की क्षमता, उत्पादन बिक्री, गणना किए गए लाभ और हानि और ऋण की अवधि के लिए बैलेंस शीट जैसी वित्तीय जानकारी सहित परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी, तभी यह ऋण आसानी से आपको मिल पाएगा। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। गुमशुदा श्री ईश्वर दयाल पुत्र श्री हेतराम सिंह दिनांक 19 मई 2026 से अपने निवास स्थान से लापता हैं। इनकी आयु 32 वर्ष है। इनका रंग सांवला, शरीर इकहरा यानी दुबला पतला, आंख नाक कान औसत, कद करीब 5 फीट है। इन्होंने नीली शर्ट, काली पैंट और पैरों में चप्पल पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर दूरभाष संख्या 8077379768, 8630949498 और 9454403126 पर सूचित करने का कष्ट करें।

एक और गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। गुमशुदा विधि गिरी दिनांक 30 जुलाई सन 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 24 वर्ष है। इनका रंग गोरा, लंबाई 5 फीट और शरीर औसत है। इन्होंने सलवार सूट और पैरों में चप्पल पहनी है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर दूरभाष संख्या 7900960638 9456888681 और 9454403128 पर सूचित करने का कष्ट करें। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी आज के सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश आज शाम 7 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आज शाम 5:15 पर। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:05 पर किसान भाइयों की खेती और पशुपालन संबंधित समस्याओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री सुनवाया जाएगा। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा से आलोक कुमार की बातचीत का विषय होगा मानव अधिकार अधिनियम। हरियाली तीज के पावन पर्व के अवसर पर आज रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कवि गोष्ठी। इसमें प्रतिभाग करेंगी श्रीमती सुनीता सोलंकी, श्रीमती पूजा गोयल और श्रीमती सुमन प्रभा। गोष्ठी का संचालन करेंगी श्रीमती मंजू जौहरी। हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 9:30 पर। आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात के हमसफर। तो ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और अब एक नज़र कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण कल सवेरे 7 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश की जनता के नाम संदेश कल रात्रि 8 बजे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम की राज्य स्तरीय रेडियो रिपोर्ट कल रात्रि 10 बजे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:15 होने को हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू द मस्त मजेदार एंड अमेजिंग रेडियो शो जो है युववाणी, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी शैली।
1: तो दोस्तों, शैली के साथ आज इस खूबसूरत सी शाम में मैं हूँ शामिल, आपकी दोस्त और होस्ट अलीना।
0: दोस्तों आज है फ्राइडे और आज आपके लिए स्पेशल सेगमेंट है ये शाम गजलों के नाम,
1: जिसमें आप सुनेंगे खूबसूरत गजलें जो आपकी शाम में चार चांद लगा देंगी।
0: क्योंकि शाम हो रही है, हवाओं में ठहराव है और दिल एक खूबसूरत धुन का इंतजार कर रहा है।
1: तो क्यों ना आज की शाम उन अल्फाजों के नाम कर दी जाए जो सीधा दिल तक उतरती है।
0: उन धुनों के नाम कर दिया जाए जिनमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी।

0: यादें भी और कुछ अनकहे एहसास भी।
1: लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपना डेली सेगमेंट बुझो तो जाने।
0: जिसमें हमारा आज का सवाल है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है?
1: और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आपको इसका सवाल देना कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: तो चलो अब शुरू करते हैं गजलों का सिलसिला।
1: रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब सजेगी सुरों की महफिल, अल्फाज होंगे खास, और हर नगमा कहेगा दिल की एक कहानी।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे आज सच कर लोट कोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
5: डॉक्टर साहब, आ जाऊं क्या?
6: हाँ हाँ, अंदर आओ।
5: नमस्कार डॉक्टर साहब।
6: नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, क्या दिक्कत है बताओ।
5: वो खांसी हो रही है डॉक्टर साहब, और बस आपने जो काढ़ा दिया था वो।
6: तो काढ़ा मैंने तुम्हें कल दिया था, कि बताना मुझे कि उससे क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क हुआ, काढ़ा चखा तुमने?
5: हाँ मैंने काढ़ा चखा।
6: तो फिर खांसी सही हुई कि नहीं?
5: डॉक्टर साहब मैंने काढ़ा चखा तो था थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा कि काढ़े से अच्छी तो मेरी खांसी ही है।
3: जी हाँ, मज़ा आ गया।
7: दोस्तों, कभी सोचा है एक दिन आप अपने घर से निकलें ये सोचकर कि बस कुछ देर के लिए जा रहे हैं और फिर कभी वापस ही ना आ पाए?
5: दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए, जिस गली में आपने अपना बचपन बिताया, जिस घर की दीवारों में आपकी हजारों मेमोरीज हैं, एक दिन अचानक वो सब पीछे छूट जाए।
7: एक माँ के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग हो, बच्चा उसका हाथ पकड़े हुए हो और सामने सिर्फ एक लंबा अनजाना सफर,
5: ना पता मंजिल का, ना पता कल क्या होगा, बस एक उम्मीद कि कहीं तो एक नई जिंदगी शुरू होगी।
7: कुछ लोग अपना घर छोड़ रहे थे, कुछ अपना शहर और कुछ अपने वो लोग जिनसे शायद फिर कभी मुलाकात नहीं होनी थी।
5: और अलीना, सबसे अजीब बात पता है क्या है?
7: क्या?
5: ये किसी एक फैमिली की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी लाखों लोगों की, लाखों सपनों की, लाखों बिछड़ते रिश्तों की।
7: और दोस्तों, एक ऐसे ही दर्द की जिसकी याद आज भी हिस्ट्री के पन्नों में जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज किस कहानी की बात कर रहे हैं?
5: तो दोस्तों, आज कुछ खास है। आज में हम बात कर रहे हैं 1947 के उस वक्त की, जब देश का विभाजन हुआ था।
7: और इस पेनफुल हिस्ट्री और उस वक्त लोगों के द्वारा झेली गई कई तकलीफों को याद करने के लिए हम मनाते हैं विभाजन विभिषिका दिवस।
5: सबसे पहला सवाल ये है कि ये दिन हम आखिर क्यों मनाते हैं?
7: 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसी समय देश का पार्टीशन भी हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज बन गई।
5: इस पार्टीशन का सबसे बड़ा असर आम

0: लोगों पर पड़ा। लाखों लोगों को अपने घर, अपने शहर और अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा।
1: बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और वहीं बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था।
0: इस दर्द और ट्रेजेडी को याद करने के लिए ही आज के दिन यानी 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो दोस्तों, ये तो बात की कुछ खास है आज के बारे में, जिसमें आज खास था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो आइए अब सुनते हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल सीरीज में मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सेगमेंट। कि आपको पता है कि 80वें इंडिपेंडेंस डे पर हमने शुरू की है एक स्पेशल सीरीज जिसका नाम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया।
1: आज़ादी दोस्तों, आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जिसे महसूस करने के लिए कभी किसी सरहद पर खड़े जवान को देखिए, कभी किसी किसान के चेहरे की उम्मीद देखिए और कभी किसी बच्चे के हाथ में लहराता तिरंगा देखिए।
0: 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ में कहता है हाँ हम आज़ाद हैं। और इस आज़ादी की कीमत जानते हैं?
1: किसी ने अपनी जवानी दी, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने हंसते हुए अपना सर्वस्व देश के नाम कर दिया ताकि आज हम खुली हवा में सांस ले सकें और अपने सपनों को अपनी पहचान दें और अपने तिरंगे को पूरी शान से सलाम कर सकें।
0: तो आइए आज इस इंडिपेंडेंस डे पर सिर्फ देशभक्ति के गीत ना सुने बल्कि उस जज्बे को महसूस करें जिसने भारत को भारत बनाया।
1: आज बात होगी उन वीरों की जिनके साहस ने इतिहास लिखा, उन सपनों की जिन्होंने आज़ाद भारत की नींव रखी और उस जिम्मेदारी की जो आज़ादी के साथ हम सब के कंधों पर आई है।
0: दोस्तों, हम इस सीरीज में जिसका नाम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जान रहे हैं अपने उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो कहीं धुंधले से पड़ गए और जिन्हें सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग ज़रूर जानते हैं। तो हम अपने साथियों से बात करेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो उन्हें जानते हैं, कौन ऐसे हैं जो उन्हें नहीं जानते।
1: तो चलिए दोस्तों, अपने पहले साथी से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हमारे फ्रीडम फाइटर को कितना जानते हैं और सबसे पहले जानते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
2: जुबैर अहमद।
1: तो जुबैर, आप संग्राम सिंह रुद्रप्रयाग को जानते हैं?
2: जी हाँ लीना, मैं इन्हें जानता हूँ, मैंने अपनी बुकों में इनके बारे में बहुत पढ़ा है। उन्होंने इंडियन आर्मी में रहकर देश की बहुत सेवा की है। युद्ध के समय बहादुरी से लड़ना, देश के लिए लड़ाई लड़नी और अपने कर्तव्य निभाना, उनकी बहादुरी देश के लिए बहुत गर्वपूर्वक है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने अपने देश के लिए, अपनी देश की इतनी सेवा की है कि आज तक लोग इन सब चीज़ों को याद रखते हैं।
2: जी, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत मेडल्स प्राप्त किए हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने देश के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बहुत सारे मेडल्स हम लोगों को लाकर दिए हैं। और जुबैर, उनकी देशभक्ति और बहादुरी आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। तो जुबैर, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। थैंक यू सो मच जुबैर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले साथी की ओर और इनसे जानते हैं कि आखिर ये हमारे फ्रीडम फाइटर को जानती हैं या नहीं। तो पहले जानते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
3: मेरा नाम अनम है।
1: तो अनम, आप ये फोटो देखिए और आप बताइए, आप इनको जानती हैं?
3: इन्हें मैंने सिर्फ इनका नाम ही सुना है, मतलब मैं वैसे नहीं जानती।
1: तो अनम, आप अगर इनके बारे में, चलिए नहीं जानती, आपने इनकी फोटो देखी है तो आप मुझे इनका नाम ही बता दीजिए।
3: इनका नाम है संग्राम सिंह रुद्रप्रयाग।
1: ठीक है, आपने बहुत पॉज ले लेके नाम बताया, संग्राम सिंह रुद्रप्रयाग, लेकिन अच्छा लगा। और इनके बारे में आप जाके रिसर्च करिएगा, जानिएगा कि इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है हमारे देश के लिए। और ये बहुत ही हमारे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो अनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी थैंक यू।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
0: तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है हमारे अगले सेगमेंट

का, जिसका नाम है कहानी के उस पार, जिसमें आपको पता है कि मंडे से शुरू होती है एक कहानी और आप 5 एपिसोड्स में सुनते हैं उसी कहानी को। तो आज कहानी का है एपिसोड 5, जिसका टाइटल है जहां आसमान खत्म नहीं होता। तो आइए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं ये कहानी।

दोस्तों लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन मीरा ने जाना कि समय घाव नहीं भरता, वो बस उनके साथ जीना सिखा देता है। घर लौटे हुए कई महीने बीत चुके थे। मीरा पहले जैसी नहीं रही थी। वो सुबह जल्दी उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, माँ के साथ चाय पीती, तुलसी में पानी डालती और हर शाम छत पर जाकर कुछ देर आसमान को देखती रहती। पहले वो वहाँ जवाब खोजती थी, अब उसे सिर्फ देखती है, जैसे किसी पुराने दोस्त से बिना कुछ कहे मिलकर आ रही हूँ। उसने कई जगह फिर से अप्लाई किया, कहीं से जवाब नहीं आया, कहीं से मना कर दिया गया, लेकिन इस बार हर हार के बाद उसने खुद को दोष देना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि हर बंद दरवाजा इस बात का प्रमाण नहीं होता कि तुम लायक नहीं हो, कभी कभी वो रास्ता ही तुम्हारे लिए बना नहीं होता। इन्हीं दिनों मोहल्ले की एक छोटी बच्ची गौरी अपनी फटी कॉपी लेकर उसके पास आई और बोली, दीदी आप मुझे पढ़ा दोगी? मीरा ने मुस्कुरा कर उसे पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे दो बच्चे आए, फिर पांच, फिर पूरा बरामदा हर शाम एक छोटे से स्कूल में बदल गया। किताबों के साथ साथ वो उन्हें हिम्मत, धैर्य और उम्मीद भी सिखाने लगे। एक बरसाती शाम बच्चे कागज की नाव बना रहे थे, तभी गौरी ने धूप की ओर अपनी हथेली फैलाकर मुट्ठी बंद कर ली। हीरा ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या कर रही हो? गौरी हंसते हुए बोली, धूप रख रही हूँ, शाम को अंधेरा होगा ना। ये सुनते ही मीरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसे अपना बचपन याद आ गया, वही मासूम बात, वही धूप, वही सपना। कुछ दिन बाद एक स्कूल से मीरा को इंटरव्यू के लिए बुलाया। माँ की आंखों में खुशी थी, लेकिन इस बार मीरा की खुशी उस लेटर से नहीं थी, उसकी खुशी इस बात में थी कि वो फिर से कोशिश करने से नहीं डर रही थी। इंटरव्यू कैसा हुआ, उसे नौकरी मिली या नहीं, ये उसकी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कभी नहीं, क्योंकि जिंदगी की हर जीत किसी एक लेटर में नहीं लिखी होती। कुछ कहानियां किसी मंजिल तक पहुंच कर पूरी नहीं होती, बल्कि तब पूरी होती है जब एक टूटा हुआ इंसान फिर से जीना सीख लेता है। मीरा ने भी आखिरकार यही समझ लिया था कि जिंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती। कुछ लोग बीच रास्ते छोड़ जाते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ दरवाजे पूरी उम्र बंद रहते हैं और कुछ रातें उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी होती हैं। फिर भी हर सुबह सूरज उगता है, इसीलिए नहीं कि दुनिया से दुख खत्म हो गया है, बल्कि इसीलिए कि उम्मीद ने आज तक हार मानना नहीं सीखा। शायद इसी वजह से कुछ कहानियां हमेशा याद रह जाती हैं, इसलिए नहीं कि उनका नायक हर लड़ाई जीत गया, बल्कि इसलिए कि उसने हार के बाद भी चलना नहीं छोड़ा, उसने अपने अंदर बची हुई आखिरी रोशनी को बुझने नहीं दिया। दोस्तों आसमान कभी खत्म नहीं होता, हम ही किसी मोड़ पर सिर झुका लेते हैं और जिस दिन फिर से ऊपर देखते उसी दिन एक नई कहानी शुरू हो जाती है।

तो दोस्तों अब टाइम है हमारे एक और स्पेशल सेगमेंट का जिसका नाम है यंग अचीवर्स, जिसमें हम स्टूडियो में आमंत्रित अपने प्रतिभाशाली युवा से करते हैं उनकी उपलब्धि पर कुछ खास बातचीत। तो आज का जो यंग अचीवर्स है उसमें बात सलोनी ने की है विवेक से बातचीत उनकी उपलब्धि के बारे में। तो आइए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं ये सेगमेंट यंग अचीवर्स।

0: उड़ान भरना सिर्फ सपनों में नहीं होता, हौसलों में जान हो तो आसमान भी झुक जाता है। जो सपनों को रोज मेहनत से सींचते हैं, उनकी किस्मत खुद रास्ता बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी और लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट सेगमेंट यंग अचीवर्स, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको ऐसे उभरते सितारों से जो बहुत ही कम उम्र में अपने सपनों को साकार कर चुके होते हैं, उन युवाओं से जिन्होंने अपने जुनून और मेहनत से कुछ अलग कर दिखाया है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा जिन्होंने 12th के बाद ही भारतीय वायुसेना में अपना सिलेक्शन कराकर सबको चौंका दिया है। ये सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, बिना देर किए स्वागत करते हैं हमारे आज के यंग अचीवर्स का। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
1: विवेक कुमार।
0: विवेक, आप ही बताइए आप कहाँ से आए हैं। मेरा मतलब है कि आप हमारे लिसनर्स को एक छोटा सा इंट्रो दे ताकि वो आपसे और अच्छे से कनेक्टेड हो पाए।
1: मेरा नाम विवेक कुमार, मैं झनावाद खोबड़ा गांव से और तहसील नगीना में रहता हूँ।
0: तो विवेक, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई हो।
1: थैंक यू।
0: तो विवेक, आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है।
1: मेरे घर में मम्मी पापा भाई, एक बहन है और एक भाई है, बाकी मेरा पूरे परिवार है, चाचा चाची।
0: तो विवेक, आप ये बताइए कि आपके मन में ये एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना कहाँ से आया। मतलब जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि 12th हो गई है, अब सोचते हैं कि मुझे करियर में कहाँ जाना है, उस उम्र में मतलब आपने अपना करियर बना लिया, तो बताइए।
1: मैं जब 9th क्लास में था तो तब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक और एयरफोर्स डिफेंस नाम की चीज़ भी होती है। मैंने ऐसा मतलब सोचा, देखा, फिर मुझे पता चला कि इसमें एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप भी होता है। फिर तभी से मैंने सोचा कि 12th के बाद होती है, क्यों ना 12th से ही मेहनत कर लिया है। तो मैंने 12th से फिर मेहनत की और फिर उसके बाद इसके फॉर्म निकल गए। एक पुलिस वाले मामा जी हैं मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने प्रिपरेशन की लगभग 6 महीने, फिर उसके बाद मैं सिलेक्शन हो गया।
0: तो आपने आफ्टर 12th इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की?
1: हाँ, आफ्टर 12th।
0: तो विवेक, आप ही बताइए आपका 12th कौन से ईयर में हुआ?
1: मेरा 2025 में।
0: विवेक, आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और स्कूल टाइम में आप क्या एक ब्राइट स्टूडेंट थे, एवरेज या बैक बेंचर?
1: मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने नजीवाद राजकीय इंटर कॉलेज से ही 12th किया है,
0: जिसे GIC के नाम से
1: GIC, हाँ, जिसे GIC के नाम से जानते हैं।
0: तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आपसे पूछेंगे कि ये एयरफोर्स में जाने का मतलब बेसिक प्रोसेस क्या होता है, ताकि हमारे लिसनर्स भी जान सकें अगर कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उनका भी प्रोसेस पता हो।
1: हाँ जी, एयरफोर्स में जाने के लिए आपका 12th जो है PCM ग्रुप से होना चाहिए और इसमें मैथ और फिजिक्स, इंग्लिश नॉर्मल, मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए।
0: तो विवेक, हमें बताइए, जब आपको ये खुशखबरी मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपने सबसे पहले ये खुशखबरी किसके साथ शेयर की? मतलब आपका इतना क्लोज कौन था कि आपको लगा कि सबसे पहले ये खुशखबरी उसके साथ ही शेयर करनी चाहिए?
1: हाँ, एक मेरे मामा जी का लड़का है, उसने ही मेरे साथ हर जब भी मेरा पेपर हुआ वो मेरे साथ गया, तो उससे ही मैंने सबसे पहले, वो क्लोज पर्सन वही था, उससे ही मैंने सब चीज़ शेयर करी अपनी कि मेरा चीज़ आज ये क्लियर हुआ है, आज फेज 1 है, आज फेज 2 है, और इंटरव्यू वगैरह भी मैंने उससे शेयर किया। तब सबसे पहले भी जब मेरे इनरोलमेंट में नाम आया तो मैंने उससे शेयर किया था।
0: इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके जो बचपन के बड़ी हैं, हाँ, आपके मामा के बेटे हैं।
1: हाँ
0: बिल्कुल। तो घर में उस दिन माहौल कैसा था जिस दिन सबको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया?
1: सबको पता चला उस दिन तो बहुत खुश थे, बाकी सब मतलब एक अलग ही गांव में भी, क्योंकि मैं पहला ही पर्सन हूँ जो, तो सब बहुत खुश थे, सब बूझ रहे, बधाइयां दे रहे थे अलग अलग।
0: जैसे विवेक, आपने सुना होगा कि सबके लिए एक रियल हीरो होता है जिसे देखकर हम मोटिवेट होते हैं या अपना आइडल मान चुके होते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसे देखकर आपको लगता था कि मुझे इसके जैसा ही बनना है?
1: मैं देखता था कि खेती, हमारे पास खेती थी, कि इस खेती में तो हमारा कुछ होना ही नहीं, मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो एक अलग ही अपना, क्यों ना अलग ही सर्कल बना लिया जाए, मतलब अलग ही टारगेट्स करा।
0: तो मतलब आपने अपनी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए ये तैयारी की कि मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ
1: देनी है।
0: आप हमें बताइए कि आपके मतलब जैसे घर में आपने बोला कि आप 3 भाई-बहन हैं, तो आपकी बड़ी बहन और छोटे भाई कौन कौन सी क्लास में हैं?
1: मेरी बड़ी बहन, उसका भी 12th लगभग 2023 में कंप्लीट हुआ था, बट उसने जेई एडवांस मेंस होते हैं उस चीज़ की तैयारी करी थी, बट अब वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। और मेरा छोटा ब्रदर है, वो इस बार 12th क्लास में है, वो भी GIC में ही है।
0: क्या आपके सामने कभी ऐसा समय आया कि जब आप

0: लगा हो कि शायद अब नहीं हो पाएगा, मुझे गिव अप कर देना चाहिए?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं आया था, क्योंकि मेरा शुरू से ही टारगेट वही था और मैं अपने टारगेट में एक तरह लीन जैसे रहते हैं ना, मैं वैसा ही था। मेरा कोई और दूसरा वो नहीं आया, मतलब गिव अप करने का वो टाइम समय था।
0: विवेक, जैसा आपने देखा होगा कि ये जो आजकल का टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो पढ़ाई से थोड़ा दूरी बना लेते हैं। तो आप ये बताइए कि पढ़ाई और मतलब अपने पैशन में कैसे बैलेंस बनाएं सोशल मीडिया और पढ़ाई में?
1: सोशल मीडिया के जरिए भी हम अपना मतलब पढ़ाई, सोशल मीडिया ही एक अच्छा है प्लेटफॉर्म है जहाँ अपनी पढ़ाई इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने भी वहाँ से ही किया, बट ये है कि कुछ ज़्यादा रील्स वगैरह में आजकल ज़्यादा ही अपना टाइम दे रहे हैं।
0: मीन्स आपका मतलब ये है कि सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में ना लें, कि हम उसको एक अच्छा यूज़ करके अपनी सक्सेस को हासिल करें।
1: हाँ, यही है।
0: तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल चीज़ क्या रही आपके लिए?
1: तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल चीज़ मेरे लिए
0: सॉरी,
1: कंटिन्यूटी। हाँ, मैंने कंटिन्यूटी बढ़ाई और फिर मतलब मुझे रात भर भी जागना पड़ जाता था। कभी कभी मैं 5 घंटे की नींद भी, 6 घंटे की नींद, लगभग 7 घंटे तो डेली लेता था, लेकिन कभी कभी मैं 5 घंटे की नींद भी लेता था।
0: मतलब कि अगर
1: हाँ
0: हम
1: कम।
0: कंसिस्टेंसी बनाकर रखें तो सक्सेस पाना और भी ज़्यादा आसान है।
1: हाँ, ये है।
0: एक बात जो हर युवा जानना चाहता है, सफलता के लिए टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या मेहनत?
1: मेहनत ज़्यादा जरूरी है। टैलेंट तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है जब आप मेहनत करोगे।
0: जब मेहनत करेंगे तो
1: हाँ,
0: टैलेंट उस
1: तो अपने
0: अपने
1: आप
0: आप आ
1: ही आ
0: जाएगा।
1: जाता है।
0: तो अब आपसे एक हम इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अब आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो देश के लिए क्या महसूस करते हैं? आपका मतलब क्या गोल है कि मैं देश के लिए ये करना चाहता हूँ?
1: मेरा गोल है मतलब मैं देश के लिए अपना मतलब एक अच्छे सोल्जर की तरह अपना कार्य करता रहूँ।
0: मतलब आप अपना पूरा 100%
1: हंड्रेड
0: एयरफोर्स को देना
1: परसेंट
0: चाहते हैं। आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है और आपकी ज्वाइनिंग भी शायद होने वाली
1: मेरी
0: है,
1: ज्वाइनिंग, हाँ, 29 जून को है बेंगलोर।
0: तो 29 जून को बेंगलोर आपकी ज्वाइनिंग है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हम आशा करते हैं कि आप एयरफोर्स में जाकर अपने देश को बहुत अच्छी सेवा प्रदान करें। तो आप ये बताइए कि आपका मतलब इसके आगे भी कुछ और सपना है, या यहीं पर रहकर देश की सेवा करनी है, या इससे भी कुछ आगे आपने सोच रखा है कि
1: नहीं,
0: इससे बड़ी पोस्ट पर जाकर मैं
1: मैंने
0: कुछ
1: सोच
0: करूं?
1: रखा है मैं फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहता हूँ एफकैट एग्जाम द्वारा।
0: तो इसका मतलब आप ये जो जॉब है उसके बाद पढ़ाई भी कंटिन्यू
1: हाँ, पढ़ाई
0: रखेंगे।
1: कंटिन्यू करना चाहता हूँ।
0: तो आप ये बताइए कि आप हमारे यहाँ जो युवा श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या चीज़ करें और क्या चीज़ अवॉइड करें?
1: मतलब जो अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वे अभी से ही अवगत हो जाएं, मतलब 11th क्लास से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी कर लें, एक टाइम टेबल बना लें। तो उसके साथ साथ ही वह अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स 12th बाद ही निकल जाता है, वही सिलेबस रहता है सेम्स। अगर आप इन्हीं 2 साल में मेहनत कर लोगे।
0: मतलब आपका कहना यह है कि जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं, हमें 10th या 11th में उसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि
1: हाँ,
0: मुझे इस फील्ड में जाना है,
1: जाना
0: फिर
1: है।
0: उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
1: हाँ,
0: तो आप ये बताइए, अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आपको यहाँ आकर कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर अपने विचार बताने के, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इस टाइम उनको अवगत करने के लिए।
0: तो आप यहाँ से कुछ हमारे युवाओं को एक संदेश देना चाहेंगे कुछ?
1: हाँ, एक मोटिवेशन वगैरह की चीज़ होती है अपने माँ बाप को देखना ही, उनकी अपनी कंडीशन देखना, और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है।
0: बिल्कुल सही कहा विवेक ने कि हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो हमारे काम आती है वो हमारी फैमिली होती है और हमारे मम्मी पापा होते हैं। तो विवेक, बहुत बहुत थैंक यू आपका अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं जो आपकी 29 तारीख में ज्वाइनिंग है उसके बाद आपकी लाइफ ब्राइट रहे और आप देश को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाएं और एयरफोर्स में अपनी जमकर सेवा दें। जिसके हौसलों में उड़ान होती है उसके रास्ते में भी पहचान होती है। मेहनत से जो लिखते हैं अपनी कहानी, उनकी हर सुबह एक नई उड़ान होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं सलोनी आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं यंग अचीवर्स के अगले एपिसोड में। बहुत बहुत थैंक यू विवेक आपका अपनी जर्नी हमसे शेयर करने के लिए।
1: आपका भी थैंक यू।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे आज सच कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: क्या हुआ भाई, क्यों दुखी है इतना, क्यों इतना परेशान बैठा है तू?
5: अरे यार, 3 महीने की जिम की मेंबरशिप ली थी लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा।
4: अरे मेंबरशिप ली थी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तू तो

0: ख्याल रख रहा है अपनी सेहत का, बढ़िया है तो।
1: अरे यार क्या फायदा जिम की मेंबरशिप का, ना बॉडी बन रही ना वेट कम हो रहा।
0: अरे धीरे धीरे हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है एकदम से हो जाएगा सब कुछ। टाइम दे अपनी बॉडी को, बन जाएगी बॉडी और वेट भी कम हो जाएगा तेरा। दुखी क्यों है तू?
1: सही कह रहा है, कुछ नहीं होगा दुखी होने से। कल खुद ही जिम जाकर देखता हूँ कि आखिर दिक्कत आ कहाँ रही है।
2: जी हाँ, मजा आ गया।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने पूछा था आपसे सवाल अपने सेगमेंट बूझो तो जाने के अंतर्गत। जो सवाल था, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग द्वारा होता है, जिसका सही जवाब है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि हैं मनोहर मगर, दूल्हापुर मुरादाबाद महबूब दुकानदार, संजय मरकांडे, भाई रफत साहब, बसंत लाल साहब, अनुराग राजपूत, जेके परमार, बलराम वर्मा, राहुल पाल, आसिफ चौधरी, विष्णु टेलर, सुरेश राठौर, पुनाजी नावकर और हैं जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद सईद अब्बासी, जगदीश धाकर, हीरामणि वर्मा, नजमुल होड़ा, हर्ष भारद्वाज, रविंद्र दास, सुदर्शन शाह, प्रवीण चौहान, भागवत चौबे, दिनेश वर्मा, विठल सुरोशे, नंदन कुमार सिंह, राघव बघेल, मसरूर हसन, रतनदीप आर्या, बी आई धाकर, संजय ढिंगिया और हैं धर्मेंद्र छीपा, फागुराम यादव, बबलेश पंवार, शाहजी भोड़के, राजकुमार डूडी, राजेश वर्मा, इरशाद अहमद, दिगर्शन गौड़, फनेश कुमार चंदन, महाराज कीर्तनपुरी, सदाशिव थौरात, हिमकेश्वर साहू हिम, सुरेश गगनेजा, आर्यन राज, खिलाश फूलमाली, गजानन गेले, धीरज भाई रबाड़ी, दुर्गाराम साहू, विजय सुरलकर, शकील अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हुकुम करमारकर, जाकिर मंसूरी, प्रवीण सोनी, सत्येंद्र चंसौलिया, शाहरुन नूर अंसारी, मुकेश कश्यप, गुरमीत सिंह मीता, अनिल विनोचा, मोहम्मद फरमान, अनुराग राजपूत।
0: और आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अपने कार्यक्रम की अगली गजल।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड है 246763।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साथी शैली और अलीना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त।
0: नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MiG-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयं सेवक

इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रवर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया जितेंद्र कुमार की
0: राम राम।
1: और भैया सुवेंद्र जी, कैसे हाल चाल है भाई थारे?
0: भाई देखो, हमारे हाल चाल तो बिल्कुल ठीक ठाक है। भाई तुम बताओ, आज तो बड़े उत्साहित से लग रहे हो भैया।
1: भाई उत्साहित क्या, देखो कल को 15 अगस्त है, है ना
0: बिल्कुल।
1: भैया? आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हम बैठे हैं, तो भाई सबसे पहले तो अपने सभी किसान बहन भाइयों को और अपने सभी देशवासियों को पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: भाई देखो, कल हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भाई मतलब ये हो कि भैया हम आजाद हो,
1: बिल्कुल
0: हमारे देश को आजादी मिले हो भैया 80 साल हो।

0: है ना भैया। और भैया हम यो देखना है कि भैया इन 80 सालों की यात्रा में भैया हमने कितना विकास करा है,
1: बिल्कुल
0: कहाँ तक हम पहुंचे हैं और हम कहाँ तक पहुंचना था।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो भैया यो बात सोचने समझने की है, इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता भैया।
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमने कितना विकास किया है और कहाँ हम विकसित हुए हैं अन्य देशों की अपेक्षा, है ना भैया। देखो ये तो बात हो गई कुछ स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की। अब भाई देखो हमारा कार्यक्रम खेती किसानी से जुड़ा हुआ है,
0: बहुत बढ़िया भैया,
1: है ना भैया। और हमारे किसान भाइयों ने धान की फसल अपने खेतों में लगा रखी, साथ ही साथ भैया गन्ने की फसल खड़ी है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो इस समय भाई हमारे किसान भाई अपनी फसलों की निगरानी कर रहे हैं।
0: भाई देखो जहां तक बात है फसलों की निगरानी का, तो भाई चाहे धान की फसल हो या गन्ने की फसल हो या भैया हमारी चारे वाली फसल हो, भैया जो भी फसल हमारे खेत में खड़ी है तो भैया उनकी हम निगरानी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भाई इससे पहले कि हम बातों में जो मुख्य बात है वो भूल जाओ भाई, तुम कहो तो बता दूं।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: भाई देखो आज है शुक्रवार और यह महीने का दूसरा शुक्रवार।
1: बिल्कुल भाई।
0: और देखो भैया हर माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को जो किसान भाइयों की चिट्ठी होती है ना भैया, तो बहन भाइयों की चिट्ठियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम होता है चिट्ठी पत्री।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया आज भी हम बहन भाइयों की चिट्ठी लेकर आए हैं, लेकिन एक बात यह हो कि जो हमारे बहन भाई चिट्ठी नहीं लिख सके
1: बिल्कुल,
0: या भैया उन्हें लिखने का टाइम नहीं मिला, भाई तो खेती बाड़ी काम ऐसे ही है।
1: बिल्कुल भैया,
0: इसमें भैया टाइम नहीं भी मिलता है, बजो भागते दौड़ते भाइयों ने प्रोग्राम सुन लिया और फिर अपने काम में लग गए।
1: बिल्कुल।
0: और अब ये सोच रहे होंगे भाई हमने तो चिट्ठी लिखी ही ना, तो भैया अब भी एक आखिरी मौका है।
1: बिल्कुल भाई, मौका है हमारे किसान भाइयों का मोबाइल, है ना भैया।
0: बिल्कुल।
1: और मोबाइल नंबर हम किसान भाइयों को बता देते हैं, उस पर भैया किसान भाई हमारे व्हाट्सएप SMS हमें कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना
0: जी।
1: नंबर हमारा है 94-57-07-82-88।
0: बिल्कुल। तो भैया उसको आपको व्हाट्सएप मैसेज में भेजना है। और भैया आप ये ध्यान रखो कि भैया व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो भैया अपना नाम अपना पूरा पता उसमें लिखो।
1: बिल्कुल।
0: और क्या बात हमसे आप कहना चाह रहे हो, यानी कि जो भी आप उसमें चिट्ठी में लिखना चाह रहे हो भैया वो आप लिखो। और हम जो हो 6:40 तक भैया अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, क्योंकि अगर 6:40 के बाद वो व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास में आवेगा तो हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल भाई, तो समय रहते आप अपना मैसेज लिखना स्टार्ट करें, इतना भैया हम थोड़ी सी खेती किसानी की बात करें।
0: भाई देखो बात चल रही है आजादी की, भाई कल हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: आजादी का पर्व मना रहे हैं और भैया हमें यो सोचने समझने की जरूरत है कि भैया हमारी जो खेती बाड़ी है भाई इसने कितना विकास करा।
1: बिल्कुल भाई,
0: है ना भैया,
1: बात एकदम सही है। क्योंकि भाई हमारे किसान भाई पहले जो खेती करना थे ना कि भैया खेत में अपना धान बखेरी आए, है ना भैया, और जो होए होए और भैया बाकी तो भैया खेत पट रह गया।
0: भाई देखो उस टाइम पर ऐसी स्थिति थी और भैया हमारे देश में हालत ये थी जब देश आजाद हुआ था कि भैया जितने खाद्यान्न की हम आवश्यकता थी उतना खाद्यान्न हमारे पास में रहा नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया उसके बाद जो भैया फिर वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी, हमारे बहन भाइयों ने यानी किसान भाइयों ने बहुत मेहनत करी।
1: बिल्कुल।
0: और हरित क्रांति आई।
1: बिल्कुल।
0: और हरित क्रांति के बाद भाई देखो ये समझ लो कि हमारे जो खेत खलियान वो फसलों से लहलाने लगे और अन्न के भंडार भर गए भैया।
1: बिल्कुल भैया, जैसे हम पहले देश के लिए अनाज मंगाते थे, आज भैया हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं।
0: अरे भाई उस टाइम पर तो कुछ देश ऐसे थे कि भैया अनाज दे तो भी अड़ंगा लगा होते।
1: बिल्कुल भैया, अड़ंगा लगा होते
0: भाई, नुकाम थे कि यू अनाज अगर लो तो ले लो, अन्य भैया अपना काम करो।
1: अरे यो भी भैया इस रेट को,
0: हाँ
1: अपनी मनमानी कर रहे थे, लेकिन भाई आज हमारा देश दूसरे देशों को अपना चाहे गेहूं हो चाहे भैया बासमती धान हो भैया हम निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और आज हमारा देश खेती के क्षेत्र हो या भैया विकास का क्षेत्र हो काफी तरक्की कर रहा है।
0: मैं देखो तरक्की की बात तो ऐसी है कि भैया आज हमारी खेती बाड़ी में
1: बिल्कुल
0: भैया मशीनीकरण हो गया, नई नई मशीनरी आ गई है। भाई अब तो आप यू समझ लो कि AI का उपयोग भी हो रहा है खेती बाड़ी में।
1: बिल्कुल भाई,
0: AI
1: के माध्यम से किसान भाई लिख दे हैं।
0: हाँ।
1: और भाई उसका पूरा चिट्ठा निकल का आ जा है या इसे कि भाई क्या रोग है, क्या लक्षण है, किस तरह का हमें उपचार करना है इसका, है ना भैया।
0: और भैया खेतों में खेती बाड़ी में भाई यो बड़े ही खुशी की बात है भैया हमारे लिए।
1: बिल्कुल भैया,
0: देखो ड्रोन का उपयोग हो रहा है, ड्रोन के माध्यम से भैया उर्वरक का छिड़काव हो रहा है, रसायनों का छिड़काव हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो बताओ इससे बड़ी क्या बात है भैया।
1: बिल्कुल भैया, खेत में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा गन्ना जो है बड़ा हो गया और भैया बड़ा होने के बाद जो है जब हमारे किसान भाई बढ़ते हुए खेत में डरा ना भैया, उससे ड्रोन से हम जो है खेत का एक मानचित्र खींच कर उससे स्प्रे कर ले हैं खेत।
0: बिल्कुल। अब देखो भैया उस टाइम पर तो हमारे पास में गेहूं भी नहीं थे पूरे, है ना भैया।
1: बिल्कुल।
0: अनाज भी हमारे पास पूरा नहीं था और आज हमारे किसान भाई जो औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं।
1: बिल्कुल थारी बात एकदम सही है, क्योंकि भाई हम खेती के साथ साथ आज यदि हम देखें बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को, है ना भैया, तो हम जो है कई फसलों पर आना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। एक फसल के साथ यदि हम मान लो हमने खाद्यान्न वाली फसल लगा रखी, तो भैया आप जो है औषधीय पौधों की भी खेती कर सके।
0: मैं देखो इस समय तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, शतावरी, आंवला, लेमन ग्रास,
1: बिल्कुल
0: भाई इन हमारे किसान भी लगा रहे हैं और भैया इनसे बढ़िया फायदा ले रहे हैं।
1: बिल्कुल भाई, और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें हमारे किसान भाई मेड़ों के आसपास भी लगा सकें। भाई पूरे खेत में लगाने की भी आवश्यकता नहीं है हमारे किसान भाइयों को, आप खेतों के मेड़ों पर लगा दें और भाई अच्छा लाभ कमाएं।
0: और देखो इसके साथ ही जो मसाले हैं भैया, हल्दी की खेती हमारे भाई करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और पेड़ों के नीचे जैसे भैया हमारे आम के बाग हैं उसमें हमारे किसान भाई हल्दी लगाते हैं।
1: बिल्कुल भैया, हल्दी लगाम है, लहसुन लगाम है, प्याज लगाम है, भाई काफी तरह की फसलें आज हमारे किसान भाई इस युग में करने लगे हैं।
0: तो भाई कहने का मतलब यह हो कि भैया हमारा देश भाई विकास की ओर अग्रसर है, विकास के पथ पर अग्रसर है, और इस विकास की सीढ़ी में भैया हमारे बहन भाइयों ने, हमारे किसान भाइयों ने अपना पूरा सहयोग करा भैया।
1: बिल्कुल भैया, देखो हमें एक चीज का ध्यान रखना, औषधीय पौधों की यदि हम खेती कर रहे हैं
0: भैया,
1: तो हमें जो है रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना है, क्योंकि भाई वे हमारे औषधीय पौधे हैं, हमारे शरीर को भैया स्वस्थ रखने वाले पौधे हैं। यदि हम उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो भाई वो कहीं ना कहीं उन पौधों में भी उसका अवशेष जाता है,
0: बिल्कुल,
1: तो भाई वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित करेगा। तो भाई हमारे किसान भाई जैविक खादों का, गोबर की सड़ी खाद का और भैया वर्मी कंपोस्ट का इनका प्रयोग करें इसमें।
0: और भाई एक बात का ध्यान ये भी रखना कि भैया जिन खेतों में हम ये औषधीय पौधे लगाम, तो भैया उनमें जो है जल निकास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
1: बिल्कुल भैया,
0: क्योंकि भैया अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं होने की है और बरसात के मौसम में या भैया बगैर बरसात की भी अगर बारिश होती है, तो अगर खेतों में पानी भरता है तो जो औषधीय पौधे हैं उनके मरने की संभावना रहती है, जड़ गलने की संभावना रहती है। तो इसलिए भैया हमें जो है ऐसे खेतों में, ऐसी क्यारियों में भैया ये पौधे लगाने हैं जहां पर जल निकास की पूरी व्यवस्था हो और जल भराव ना होता हो।
1: बिल्कुल भैया, देखो अपनी जलवायु के हिसाब से कैसी जलवायु होनी चाहिए, कौन सा औषधीय पौधों की आप खेती कर रहे हैं, उसके लिए भैया जलवायु की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना भैया। और आप खेती करके हम तो भाई किसान भाइयों को यही उम्मीद करेंगे कि भैया वो जो है अच्छा लाभ कमाएं।
0: और देखो भैया लाभ की बात हो रही है और आज बात इस बारे में भी हो रही है कि भैया हमने कितना विकास करा है।
1: बिल्कुल,
0: तो भाई विकास की जहां तक बात हो भैया, देखो पहले खसरा खतौनी लेने के लिए भैया तहसील के चक्कर काटते थे, है ना भैया,
1: बिल्कुल
0: लाइन में लगना पड़ा था, और आजकल तो भैया सारा डिजिटल हो गया।
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल इंडिया की जो बात है ना भैया, वो खेती किसानी में भी है, गाँव में भी है, और अब तो भैया उससे भी अगला कदम भैया ई फार्मर रजिस्ट्री हो रही है।
1: बिल्कुल भैया, देखो हमारे किसान भाई ई फार्मर रजिस्ट्री करा के भैया कृषि विभाग की हो या अन्य भैया किसानों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं भैया उनका लाभ ले सके।
0: बिल्कुल भाई, देखो इसमें एक ऐप है फार्मर रजिस्ट्री वाला,
1: बिल्कुल,
0: तो भैया उसमें पूरी जानकारी भरी जाती है और ये जानकारी हम जनसेवा केंद्र पर भर सकते हैं या भैया जो पंचायत सहायक वहां जाकर कर सकते हैं या भैया जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी है वहां जाकर भी हम ये कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इसमें भैया हमारे जो खेत का नंबर वो भी भरा जाता है,
1: बिल्कुल
0: पता, और भैया हमारा तहसील क्या है, कौन सा वो है, तो सारी जानकारी उसमें भरी जाती है, कितना हमारे पास में रकबा है, तो वो जो हमारी फार्मर रजिस्ट्री हो जाती है और उसका हमें एक नंबर भी मिलता है भैया।
1: बिल्कुल भैया, एक फार्मर रजिस्ट्री के लिए एक फार्मर का नंबर होता है जिसको आप ले जाकर भैया आप सीधे कृषि विभाग में दे दें, जिस योजना का भी आपको लाभ लेना है उसका आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसी नंबर से वो जो हमारे चाहे प्रावधिक सहायक हों या कृषि के अन्य अधिकारी हों भैया, वो उस नंबर से ये पता लगा लेंगे कि भाई इनके पास कितनी जमीन है, कितना इनके पास भैया कोई किसी तरह का कोई ये इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने लायक हैं या नहीं है, है ना भैया। तो देखो इसमें जो है एक तो हमारे पास अपनी जमीन होनी चाहिए और भैया आधार कार्ड के साथ साथ खसरा खतौनी की भैया पूरी जानकारी हमें भरनी होती है, आपने बता ही दिया, और भाई साथ ही साथ एक चीज और होनी चाहिए, देखो वो सभी के पास है कि भैया एक मोबाइल होना चाहिए जो कि वैध नंबर हो जिस पर भैया ओटीपी आ सके।
0: बिल्कुल, तो भाई ये सारी अगर आपके पास में चीजें हैं तो हम फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और भैया आने वाली योजनाओं का लाभ चाहे भैया वो ग्राम विकास के संबंध में हो या भैया खेती बाड़ी के संबंध में हो,
1: बिल्कुल
0: हम इनका लाभ उठा सकते हैं?
1: बिल्कुल भैया, देखो लाभ की जब बात होती है तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपने किसान भाइयों को बताया था कि भाई माह के दूसरे शुक्रवार को हम किसान भाइयों को खेती और पशुपालन संबंधी उनकी पत्रों के उत्तर के आधारित कार्यक्रम सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना भैया, चिट्ठी पत्री। तो भाई देखो, चिट्ठी

0: पत्र कार्यक्रम भी शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ भैया किसान भाइयों के मैसेज भी पढ़ेंगे जो हमारे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं।
1: हाँ
0: भाई उन्हें नंबर एक बार फिर बता दूं,
1: भाई, नंबर आप जल्दी से बताओ।
0: 9457-07-82-88
1: हाँ,
0: है ना भैया, इस
1: बिल्कुल
0: नंबर पर वो हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। उनकी क्या समस्या है खेती संबंधित, अपने पशुओं संबंधित, भाई मैसेज करें, इतने भैया वो मैसेज करें, इतना हम क्यों ना कुछ जरूरी संदेश सुन लें।
1: ठीक है भैया।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो भाई जितेंद्र।
1: हाँ भैया।
0: भाई देखो, संदेश तो हमने सुन लिए, और देखो भैया अब जो है बहन भाइयों के व्हाट्सएप मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। तो भैया चिट्ठी पत्री बाद में ले लेंगे, पहले मैसेज ही देख लो।
1: बिल्कुल भैया, मैसेज देखते हैं भाई। ये मैसेज हम आया है चौधरी मास्टर बलबीर सिंह का, जो कि भैया लिखते हैं हमें कि भाई चौधरी साहब, सुभेंद्र सिंह आपको कृषि जगत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, बाकी भैया आगे ये लिखते हैं कि भाई आपके कार्यक्रम में जो है एक हमारे मिलने वाले ऐसे मित्र हैं जिनका नाम बोला जाता है, तो भाई उनका नाम आप कार्यक्रम में ना बोलना है ना भाई। वो चिट्ठी पत्री हम थोड़ी कम लिख रहे हैं, तो भाई उनका नाम आप ना बोल रहे हैं। ये इन्होंने एक हमें संदेश भी दिया है, साथ ही साथ भाई इन्होंने कहा है कि आपका जो कार्यक्रम है कृषि जगत, वो बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम है भैया, जिसमें कृषि की महिलाओं के लिए, साथ ही साथ भैया उत्तम तकनीक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को दी जाती है,
0: जी
1: जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और हौसला भी हमारा बढ़ाती है, और समय समय पर हमें जानकारी मिलती रहती है। तो हम अपने जो उद्घोषक हैं, चाहे जितेंद्र कुमार हों, तो वो भी एक अच्छे उद्घोषक हैं, और वो भी एक संस्कारवान और बुद्धिमान हैं, तो वो भी जो है अपने कार्यक्रम में ऐसे पत्रों को ना लें जो कि पत्र नहीं लिखते हैं ना
0: जी।
1: और भाई साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि भैया आप जो है जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और भैया इन्होंने कोई समस्या ऐसी हमारे कार्यक्रम के माध्यम के लिए नहीं लिखी है।
0: तो भाई देखिए, मास्टर बलबीर सिंह गुर्जर जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आपके पत्र हमें बराबर मिलते रहते हैं, और आपने इसमें एक शिकायत लिखी है कि ऐसे भी लोगों का नाम कार्यक्रम में भूल जाता है जो कि चिट्ठी नहीं लिखते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि वो चिट्ठी ना लिखते हो, उनका व्हाट्सएप मैसेज आ जाता हो, या अगर उनका नाम बोला जाता है आपकी जानकारी में ऐसा है और वो चिट्ठी नहीं लिखते हैं, तो बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रोता बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चिट्ठी लिखते हैं और उनके पत्रों को स्थान बहुत ही देर से मिल पाता है, तो हम केवल उन्हीं पत्रों को शामिल करते हैं, उन्हीं व्हाट्सएप मैसेज को हम शामिल करते हैं जो हमें उपलब्ध होते हैं, जो हमारे पास में होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ है तो भाई देखिए, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और भैया, आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, जो भी जानकारी इसमें दी जाती है वो आपको पसंद आती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारी देखिए, आप प्रशंसा लिखते हैं तो देखिए, इस लायक तो हम नहीं हैं कि प्रशंसा हमारी लिखी जाए। हम तो बस देखिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि हम जो भी कार्यक्रम तैयार करें, जो भी जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम में दें, वो हमारे किसान बहन भाइयों काम में आए, खेतीबाड़ी में काम आए, और हम जो मेहनत करते हैं, जो छोटा सा हम प्रयास करते हैं, वो हमारा सफल हो जाए, बस हमारी यही इच्छा रहती है, यही हम कामना करते हैं। तो आप इसी तरीके से देखिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए, चिट्ठी लिखिए, पत्र लिखते रहिए, और अगर आप चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मास्टर साहब, आपका जो पत्र हमें मिला है, ये मैसेज मिला है हमें, हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे, और भविष्य में यदि उनका मैसेज भी आएगा तो इस बात की बिल्कुल

0: संतुष्टि की जाएगी।
1: बिल्कुल, तो ये मैसेज आपने हमें भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया ये अगला व्हाट्सएप मैसेज किसका है भैया?
0: बिल्कुल भैया, अगला व्हाट्सएप मैसेज है गांव मोहद्दीपुर जनपद बिजनौर से दलबीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, हैप्पी, तरुण प्रताप सिंह व इनके साथी। ये हमें लिखते हैं कि हमारे पास 4 गाय हैं।
1: अच्छा।
0: और गायों से अच्छा दूध उत्पादन के लिए हम क्या करें, उनको क्या खिलाएं, किस तरह से उनसे अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करें?
1: तो भाई देखिए, मोहद्दीपुर के हमारे बहन भाइयों, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने हमें ये मैसेज भेजा है और आपने गौ पालन कर रखा है, गाय पालन कर रखा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति पहले से ही गौ संस्कृति रही है और गाय का दूध एक औषधि के समान होता है।
0: बिल्कुल भैया,
1: और अब तो अगर हम गौ पालन करते हैं तो वो हमारी खेतीबाड़ी के लिए भी बहुत ही उपकारी है, बहुत ही उसका उपयोग होता है। और गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से हम देखिए अपनी खेतीबाड़ी के लिए तैयार करते हैं और जैविक खेती में वो हमारे बहुत काम आता है।
0: जी जी,
1: है ना भैया?
0: बिल्कुल।
1: तो जहां तक बात यह है कि आपकी जो 4 गाय हैं उनसे आप अच्छा दुग्ध उत्पादन ले सके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, हमें अपनी गायों को संतुलित चारा देना है।
0: बिल्कुल,
1: संतुलित चारे से हमारा मतलब यह है कि हम ऐसा चारा अपने पशु को खिलाएं, अपने गायों को दें कि उसमें हरा चारा भी हो,
0: जी जी,
1: सूखा चारा भी हो। और अगर हमारे पास में सूखा चारा बहुत ज्यादा मात्रा में है ना भैया, तो उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि 60-40 का रेशो हम रख सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया,
1: यानी कि 60% हरा चारा, 40% सूखा चारा, ये हम अपने पशु को दें खाने के लिए। और इसके अलावा देखिए, पशु से यानी कि जो हमारी गाय है उनसे बढ़िया दुग्ध उत्पादन लेने के लिए भैया हमें काम ये करना होता है कि हमें दाना मिश्रण यानी कि रातिब भी अपने पशु को देना होता है।
0: जी जी,
1: और जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं, जो पशु पोषण पर काम करते हैं, वो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि भैया अपनी गाय से अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए हमें काम ये करना होता है कि 1 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन हमें उसके शरीर के लिए देना है।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि हमारे पशु का शरीर सही तरीके से चल सके, उसे सही एनर्जी मिल सके, तो उसके लिए हमें 1 किलोग्राम प्रतिदिन रातिब दाना मिश्रण देना है। और इसके अलावा प्रति 3 लीटर दूध पर, मान लीजिए हमारी गाय 3 लीटर दूध दे रही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो 3 लीटर दूध पर हमें 1 किलोग्राम दाना मिश्रण यानी कि रातिब अलग से देना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारी गाय 6-7 लीटर दे रही है, तो 2 किलोग्राम दाना तो हो गया दूध का,
0: बिल्कुल,
1: और 1 किलोग्राम हो गया भैया किसका, उसके शरीर
0: भार का,
1: हाँ ना। तो ये दाना मिश्रण अगर हम देंगे तो दूध भी अच्छा मिलेगा हमें।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही क्योंकि पशु की जो एनर्जी है वो समाप्त नहीं होगी।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हमारा गौ पशु ऋणात्मक एनर्जी में चला जाता है, ऋणात्मक एनर्जी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए पूरी एनर्जी हमें नहीं मिल रही है और शरीर हमारा एनर्जी खर्च कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: इसे हम एक उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए बिजली चली गई है और हमारे जो घर में लाइट जल रही है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन्वर्टर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो जो इन्वर्टर से हमारी लाइट जल रही है वो हम यानी कि पशु के जो शरीर में एनर्जी है वो इस्तेमाल हो रही है, उसे एनर्जी मिल नहीं रही है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसका खामियाजा ये होता है कि हमारा पशु एक तो गाभिन नहीं होता है, अगर वो गर्मी में आता है तो गाभिन हो नहीं पाता है।
0: बिल्कुल,
1: और बार बार गाभिन होने की समस्या होती है, यानी कि बार बार वो गर्मी में आता है तो ये समस्या भी हमारे सामने आती है। तो ये सारी बातें हमारे भाइयों को ध्यान में रखनी है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई अपने पशुओं का सही तरीके से संतुलित चारा देंगे और ये दाना मिश्रण देंगे तो निश्चित तौर पर हम अच्छा दुग्ध उत्पादन भी लेंगे और हमारा पशु समय से गाभिन होगा और हमें अगला ब्यांत भी समय से मिलेगा।
0: बिल्कुल, तो देखो ये जो मोहद्दीपुर के हमारे नियमित श्रोता हैं दलवीर सिंह जी, इनकी समस्या का समाधान हो गया होगा और साथ ही समय से ही अपने पशुओं को दाना मिश्रण और हरे चारे की व्यवस्था करेंगे और अच्छा दुग्ध उत्पादन अपने पशुओं से प्राप्त करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो भैया ये अगला मैसेज देख लेते हैं किसका है, है ना भैया?
1: जी जी जी,
0: तो देखिएगा ये हमें पत्र लिखा है हमारे नियमित श्रोता श्री प्रकाश चंद जी ने और ये लिखते हैं, भैया कृषि जगत प्रस्तुत करने वाले मेरे भाइयों को यानी प्रकाश चंद जी की ओर से पूरे परिवार को नमस्कार
1: जी।
0: कृषि जगत कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, यह किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मेरी एक समस्या थी कि मेरे हल्दी के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और मुझे ये देखकर बहुत परेशानी हो रही है, और मेरी बेलों वाली सब्जियां जैसे कि तोरी हुई, लौकी हुई या अन्य फसलें हैं जैसे करेले की हुई, तो उनमें उड़ने वाले लाल रंग के छोटे छोटे पतंगे लग रहे हैं जो पत्ते खा रहे हैं, तो क्या कीट सब्जियों को नुकसान पहुंचाएंगे और कृपया मेरी समस्या का समाधान करें।
1: तो भाई प्रकाश चंद जी, आपने हमें ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया इससे पहले हमें एक मैसेज और भी मिला है राहुल नंगली से, है ना भैया, वो भी हम अभी बाद में लेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रकाश चंद जी की। तो भाई देखो, आपने हल्दी के पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही आपने जो ये बेल वाली सब्जी की बात कही है कि इस पर जो है उड़ने वाले लाल रंग के छोटे पतंगे लग रहे हैं या पत्ते खा रहे हैं या कीट इसमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो देखिए अगर हम इन सब बेलों पर किसी रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ये खाने वाली चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये कोशिश करते हैं कि रसायनों का इस्तेमाल ना ही किया जाए। और देखिए अगर हम पारंपरिकता की बात करें, जैसे गांव में हम ये बेल वाली लगाते हैं और ये समस्या अगर हमें दिखाई देती है तो राख का बुरकाव भी हम इसमें करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना भैया। और इसके अलावा नीम तेल का भी इस्तेमाल हमारे भाई कर सकते हैं, इसका बुरकाव भी हम इस पर अपनी बेलों पर कर सकते हैं, जिससे कि जो ये हानिकारक कीट है वो हमारे जो बेल है, जो बेल वाली सब्जियां हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से भाई जो ये हमारे जैविक उपाय हैं, इन्हें अपनाकर भाई हम जो ये छोटे छोटे कीट पतंगे जो नुकसान कर रहे हैं, जो पत्ते खा रहे हैं, तो इनसे हम अपनी बेलों को बचा सकते हैं, सब्जियों को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो प्रकाश चंद जी, आपने ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और इनकी समस्या का समाधान हो गया है। जो इनके कीट पतंगे होंगे वो समय के अनुसार ये नियंत्रण करेंगे, चाहे राख का बुरकाव करें या नीम के तेल का छिड़काव करें, और उससे इनकी जो बेल वाली फसलें हैं उनको काफी इन कीट पतंगों से निजात भी मिलेगी।
1: बिल्कुल भैया, अब एक मैसेज और है भैया, देखो।
0: बिल्कुल, ये राहुल नंगली से हमें मैसेज मिला है, आपने भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी थोड़ी सी दी ही दी है। तो भाई ये राहुल नंगली से हमें मैसेज लिखते हैं आचार्य
1: सत्यवीर सिंह,
0: सत्यवीर सिंह जी, और ये लिखते हैं कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वालों को राम राम
1: जी,
0: और आपका जो कृषि जगत कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जानकारी मिलती है। और इस समय जो हमारी धान की फसल हमने लगाई है खरीफ में
1: जी,
0: तो उसमें कुछ खरपतवार हो गए हैं जो कि वो कुछ चौड़े पत्तों की हैं और कुछ जो है संकरे पत्तों की हैं, तो धान पीला सा भी हमारी फसल दिखाई दे रही है और 40 दिन के लगभग हमारी फसल हो गई है। तो कुछ यूरिया डाल दिया है लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। तो सभी को जो है हरियाली तीज और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये जानकारी चाह रहे हैं कि हम अपनी धान की फसल में इस समय क्या करें, कुछ जो खरपतवार उग रहे हैं या जो हमने हमारी फसल पीली हो रही है, तो उसके बारे में ये कुछ जानकारी चाहते हैं।
1: बिल्कुल भाई, देखिए और आगे इन्होंने लिखा है कि कल पगडंडी और तिरंगा नहीं झुकने देंगे, ये कार्यक्रम हमारे यहाँ से प्रसारित हुआ था।
0: बिल्कुल,
1: तो ये भी इन्हें बहुत ही अच्छा लगा है। तो भाई देखिए, ये कार्यक्रम सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज की भी हमारे सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल।
1: अब देखिए बात करते हैं, जो इन्होंने आगे लिखा है कि इनकी जो धान की फसल है उसमें कुछ खरपतवार हो गए हैं, तो भाई देखिए उसके लिए तो सबसे पहली बात यह है कि बरसात का समय है और किसान भाइयों के पास में इतना काम नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो बात अच्छी नहीं है कि हमने घास का स्प्रे किया और छुट्टी हो गई, है ना भैया। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और घूम के जो जहां जहां पर मोटे मोटे आपको घास के पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो खुरपी के माध्यम से या दराती के माध्यम से आप उन्हें उखाड़ कर निकाल सकते हैं, निरीक्षण करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, तो ये ही सबसे अच्छा उपाय है।
0: बिल्कुल, ज्यादा खरपतवार नाशी डालने से भी हमारी जो फसल है उस पर कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी होता है, साथ ही साथ जो आपकी पीली पड़ने वाली समस्या है कि आपने यूरिया डाला था, तो आप थोड़ा अपनी फसल में जिंक का प्रयोग करें, जिंक आप अवश्य अपनी फसल में धान की लगाएं और आपको अच्छा अपनी फसल में लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल, तो भाई देखिए यूरिया के साथ में हमें जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। तो ये व्हाट्सएप मैसेज आपने सत्यवीर जी भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हमारे और भी किसान भाई जो बहन हैं वो व्हाट्सएप मैसेज हमें भेज सकें, तो भाई इसके लिए नंबर एक बार जल्दी से बताओ।
0: बिल्कुल भैया, नंबर आप हमारा नोट करें 94-57-07-82-88।
1: और भाई जब तक हमारे और बहन भाइयों के भैया हमें व्हाट्सएप मैसेज मिलते हैं, तो भैया तब तक हम सुनते हैं ये प्यारी सी रागनी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हो भारत खुशहाल हमारा कोई युक्ति ऐसी बताओ।
3: बिल्कुल।
2: तो भैया देखो, विज्ञापन से पहले भाइयों ने ये रागनी सुनी कुलदीप आर्य के साथ। और भाई देखो, भारत तुम्हारा खुशहाल रहे भैया, हम यही काम करना है।
3: बिल्कुल भैया। और देखो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी भैया यही काम कर रहे हैं कि हमारा देश भविष्य में भी खुशहाल बना रहे।
2: बिल्कुल भाई देखो, हम खेती बाड़ी हो चाहे भैया हम शिक्षक हो,
3: बिल्कुल,
2: या भैया इसके अलावा भैया हम कहीं और काम करते हो, भाई हम जो भी काम कर रहे हैं भैया हम ईमानदारी के साथ में काम करना है।
3: बिल्कुल।
2: और देश के विकास में भैया अपना योगदान देना है।
3: और बिल्कुल भैया देखो, योगदान हमारे किसान भाई भी दे रहे हैं। और आज देखो हमारा कार्यक्रम चिट्ठी चल रहा है, और भाई हमारे किसान भाई समय रहते अपने SMS हमें भेज रहे हैं। तो भाई ये मैसेज आया है, हमें इसको पढ़ लेते हैं।
2: बिल्कुल भैया, कहां से आया, जरा पढ़ो।
3: बिल्कुल भाई, श्रीमान सुवेंद्र सिंह जी नमस्कार, मैं आपके कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं और आपके कार्यक्रम ज्ञानवर्धक भरपूर ज्ञान से भरपूर होते हैं
2: जी,
3: और किसान की समस्या का भी समाधान पूरा अच्छी तरह से होता है। और हम लोग परिवार सहित आपके कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं। और इनका जो नाम इन्होंने लिखा है निश्चय भैया, वो रविपाल राजपूत, रक्सू राजपूत, वसल राजपूत, कुहू राजपूत, गांव बेड़, थाना शिवाला कला, बिजनौर से ये लिखते हैं। और भाई इन्होंने जो है हमारा हौसला अफजाई की है, साथ ही साथ भैया इन्होंने हमें धन्यवाद भी लिखा है।
2: तो भाई गांव बेर के हमारे इन भाइयों ने ये मैसेज हमें भेजा है, तो बहुत अच्छी बात है भाई जी कि आप नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: बिल्कुल।
2: और भैया आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, और जो भी जानकारी इसमें चाहे वो खेती बाड़ी की हो, बागवानी की हो, या पशुपालन की जानकारी हो, वो आपको पसंद आती है।
3: बिल्कुल।
2: और हमारे किसान भाई उस जानकारी को सुनकर उससे लाभ भी उठाते हैं, तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि नई नई वैज्ञानिक जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों तक पहुंचे और वो उस जानकारी का, उस तकनीकों का लाभ उठाएं।
3: बिल्कुल।
2: तो भैया हम इसी बारे में प्रयासरत हैं, और इसीलिए हम अपना यह कार्यक्रम प्रतिदिन हर शाम 6:05 पर भाइयों के लिए लेकर आते हैं। तो भाई मैसेज आपने भेजा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल। और आपने ऐसे ही हमें SMS लिखते रहे और अपना हौसला अफजाई हमारी करते रहे, आपका बहुत बहुत आभार।
2: बिल्कुल
3: भैया। अगला पत्र हमें मिला है गांव आलमपुर उमरी से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं फैजान अहमद, सद्दीक अहमद, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जमाल। और भाई ये लिखते हैं कि हमने गन्ने की फसल लगा रखी है, और भाई इन्होंने गन्ना प्रजाति का भी नाम हमें लिखकर भेजा है, CO 118 और CO 238 गन्ना प्रजाति इन्होंने लगा रखी है। तो भाई ये हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि भैया हमारी जो गन्ने की फसल है उसकी पत्ती पीली हो रही है, तो क्या कारण है और हम क्या करें ताकि हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें।
2: तो भाई देखिए, गांव आलमपुर उमरी के हमारे इन बहन भाइयों ने ये चिट्ठी लिखी है, और भैया आपने गन्ने की फसल लगा रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जहां तक आपने लिखा है कि आपने 0238 और 118 प्रजाति गन्ने की लगा रखी है
3: जी जी,
2: और उसमें आपकी जो है कुछ गन्ने की पत्तियां हैं वो सूख रही हैं, पीली पड़ रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि गन्ना हमारा सूख सकता है, तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि देखो जितेंद्र, ये जो इनके गांव के आसपास का जो क्षेत्र है,
3: बिल्कुल
2: भैया हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है, और इसमें जल भराव की समस्या रहती है।
3: अच्छा,
2: है ना भैया। और जहां पर भी जल भराव की समस्या रहती है तो भैया वहां पर ये समस्या हमारे पास में आती है, और चाहे तो भैया जड़ हमारी सड़ जाती है, जड़ सड़न रोग भी हो जाता है, साथ ही भैया जो लाल सड़न रोग है, रेड रॉट, वो भी भैया हमारे गन्ने की फसल में देखने को मिलता है, और खासकर भाई 0238 में ये हमें देखने को मिल रहा है। और जिन हमारे बहन भाइयों ने भैया 0238 लगा रखा है,
3: बिल्कुल,
2: तो उसमें भैया कई बार ऐसा हो जाता है कि 0238 की कुछ गन्ने आ जाते हैं, कुछ बीज हमारा आ जाता है।
3: बिल्कुल।
2: तो ऐसी भी समस्या हमें देखने को मिली है कि जो 0238 के गन्ने हैं उन्हीं में सूखने की समस्या हमें दिखाई देती है। तो भाई देखिए, अगर ऐसा हमें दिखाई दे रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि भैया जो प्रभावित पौधे हैं भैया उन्हें आप जड़ से उखाड़ दें, नष्ट कर दें। इसके अलावा भैया कुछ हमारे ऐसे रसायन हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी हम जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उन्हें रोक सकते हैं, ये हम जो बीमारी है इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, और यह है कार्बन डाइजिम का स्प्रे हम इसमें कर सकते हैं
3: बिल्कुल,
2: साथ ही इमिडाक्लोप्रिड इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्यों भैया जितेंद्र जी?
3: बिल्कुल भैया, देखो ये जो रेड रोट की समस्या होती है ये फफूंदी जनित रोग है, और वही फफूंदी से ही हमारे खेतों में ये फैलता है
2: बिल्कुल।
3: तो हम जो है ऐसे फफूंदी नाशक का उपयोग करना है जिससे भैया हमारी फसल में ये रोग ना लगे। सबसे पहले तो देखो अब बुआई का तो समय है नहीं भाई, बुआई के समय ही आप जो है भैया अपने खेतों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, साथ ही साथ जब आपके खेत में अब ये रोग दिखाई दे रहा है, पत्ते सूखने का, पीले पड़ रहे हैं, और पत्तों पर अगर रुद्राक्ष जैसी माला दिखाई दे रही है तो वो निश्चित ही रेड रोट के लक्षण हैं, और आप जो है अपनी फसल में कार्बन डाइजिम ये जो फफूंदी नाशक है ये आता है इसका प्रयोग करें, साथ ही साथ एक आता है एजोक्सिस्ट्रोविन और डेफिकोनाजोल, इसका आप अच्छी तरह से घोल बनाकर और 200 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं
2: बिल्कुल भाई। तो देखिए ये आपने हमें चिट्ठी लिखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भैया हमारे किसान बहन भाई हमें चिट्ठी लिख सके भाई, इसके लिए हम बता देते हैं अपने बहन भाइयों को अपने कार्यक्रम का पता।
3: बिल्कुल भाई, हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद,
2: और भैया पिन कोड है 246763। और भाई इसके अलावा यदि आप चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं तो जिस समय हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है यानी कि दूसरे और चौथे शुक्रवार को, तो भैया 6 बजे से और 6:40 तक आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। नंबर भैया बता दो जल्दी से।
3: बिल्कुल भैया, नंबर आप हमारा नोट करें 94-57-07-82-88। भैया नंबर एक बार फिर लिख लें 94-57-07-82-88।
2: और भाई देखो चिट्ठी हो गई भैया, मैसेज हो गए भैया
3: बिल्कुल,
2: और भैया अब यो मौसम की चिट्ठी भैया हमारे पास आई है, और भाई चिट्ठी में मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ से, और भाई यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भैया अगले 5 दिन जनपद बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भैया हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है।
3: बिल्कुल भैया, तो आप मौसम को देखते हुए अपनी खेती किसानी में अपनी फसलों में यदि कोई स्प्रे करना चाहते हैं तो भैया आप मौसम को देखते हुए स्प्रे करें और सावधानी बरतें।
2: बिल्कुल, तो भैया आप जो है कार्यक्रम का समय संपन्न होने वाला है, तो भैया 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ
3: भैया जितेंद्र कुमार
2: और सुवेंद्र सिंह झूमर को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
3: किसान भाइयों
2: राम राम, राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। कानूनी सलाह कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा से आलोक कुमार की बातचीत। विषय है मानव अधिकार अधिनियम

0: श्रोताओं, कानूनी सलाह के अंतर्गत आज हमारा विषय है मानव अधिकार और उससे संबंधित कानून। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, जो कि सिविल कोर्ट बुलंदशहर से हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले वकील साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद सर।
0: देखिए, जैसा हमारा आज का विषय है मानव अधिकार और उससे संबंधित कानून
1: जी,
0: तो वकील साहब सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि मानव अधिकार आयोग क्या है।
1: जी सर, सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि समाज में मानव के अधिकारों के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उसके साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए गए हैं
0: जी।
1: तो जब किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का हनन होता है तो केंद्रीय सरकार उनकी देखभाल के लिए जो कोई संस्था गठित करती है और वो संस्था उन अधिकारों की निगरानी जो करती है वो मानवाधिकार आयोग कहलाता है।
0: अच्छा,
1: यह देश के 18 राज्यों में कार्य कर रहा है और केंद्र में भी इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अब हम जानना ये चाहेंगे कि भारत की अगर हम बात करें
1: जी,
0: तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण का जो अधिनियम है, कानून है।

0: जी
1: ये कब से लागू हुआ?
0: जी जी ये कानून हमारे यहाँ जो देश में लागू हुआ ये संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 में स्वीकार किया गया।
1: अच्छा,
0: उसी के तहत हमारे देश में भी इस मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और देश में ये आयोग 28 सितंबर सन 1993 से लागू किया गया और इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं।
1: अच्छा,
0: जिसके तहत यह आयोग राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का संरक्षण कर रहा है।
1: अच्छा, देखिए वकील साहब, आपने बताया कि ये राज्य स्तर पर कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर
0: जी सर
1: हमारे जो कानूनी अधिकार हैं उनका संरक्षण कर रहा है। अब बात ये आती है कि ये मानव अधिकार आयोग है, इसका जो गठन होता है वो उसकी क्या प्रक्रिया है, मतलब किस प्रकार से गठित हो जाता है?
0: जी, इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है। आयोग का गठन करने के लिए एक समिति नियुक्त होती है। उस समिति की सिफारिश के आधार पर ही महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
1: अच्छा,
0: यह नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है।
1: अच्छा,
0: और या जो है अधिकतम आयु जो होती है अध्यक्ष और सदस्यों की वो 70 वर्ष होती है। जो भी पहले हो, 5 वर्ष पहले हो या 70 वर्ष पहले हो, तब तक इनकी नियुक्ति होती है। और इसमें जो कार्य करने वाले जो अध्यक्ष व सदस्य है वो उनकी नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जाती है उसका जो अध्यक्ष, समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो चयन समिति होती है उसका अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और इसके अलावा जो है लोकसभा के स्पीकर होते हैं।
1: अच्छा,
0: संसद में विपक्ष के नेता होते हैं और जो उसमें विपक्ष के नेता होते हैं और एक दो व्यक्ति वो होते हैं जो इसके जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो अनुभव रखते हों।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, कुल मिलाकर
0: और इसमें एक बात और मैं और बताऊंगा
1: जी
0: कि इसमें जो सदस्य होते हैं उसमें जो सिफारिश की जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति द्वारा, उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं और अध्यक्ष चुने जाते हैं उसमें एक तो उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश होते हैं जो या तो वर्तमान में नियुक्त हो या वो रहे हों।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा उच्च न्यायालय का वर्तमान में कोई न्यायाधीश रहे हों या पूर्व में रहे हों या वर्तमान में नियुक्त हों।
1: अच्छा,
0: और इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति भी दो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो मानवाधिकारों की पूर्व जानकारी व उन्हें अच्छा अनुभव हो।
1: अच्छा,
0: इसी में जो है जो नियुक्त होते हैं जो अल्पसंख्यक आयोग होता है हमारे यहाँ देश में, राष्ट्रीय SC ST आयोग होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्ष भी इसके आयोग के मानद सदस्य होते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी,
1: तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी समिति बनती है जिसके जरिए कार्य करती है।
0: इसमें एक महासचिव भी नियुक्त होता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो अब बात ये आती है कि चलो ये कमेटी बन गई
0: जी
1: और जो ये समिति बनी
0: जी जी,
1: इस मानव अधिकार आयोग में आम आदमी
0: जी जी
1: किस प्रकार से शिकायत दर्ज करा
0: जी जी जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आयोग में कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की शिकायत दूसरा व्यक्ति भी दर्ज करा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं ही दर्ज कराए।
1: अच्छा,
0: अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है और इसकी शिकायत आप या तो हिंदी में भी करा सकते हैं, अंग्रेजी में करा सकते हैं या संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अधिकृत भाषाएं हैं देश में हमारे में वो किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता से शिकायत दर्ज कराने का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है।
1: अच्छा,
0: शुल्क नहीं लिया जाता है और वहां पर यह बताना भी उचित है कि शिकायत आप जो है ये नहीं है कि आप कार्यालय में जाके या मुख्यालय में जाके ही दर्ज कराएं, आप जो आयोग को फैक्स से, ईमेल से, यहां तक कि आयोग के मोबाइल नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
1: जी जी जी, चलिए ये तो बात आई कि आपने बताया कि फैक्स से या मोबाइल से या किसी भी तरीके से शिकायत हमने दर्ज करा दी।
0: जी जी जी, जी।
1: अब शिकायत तो दर्ज हो गई
0: जी सर,
1: बात ये आती है कि आयोग में शिकायत पहुंच गई तो आयोग के जो इन प्रक्रियाओं का निस्तारण करता है
0: जी,
1: उसका क्या तरीका है, वो किस प्रकार से निस्तारण उसका करता
0: जी,
1: है?
0: जी जी, जब आयोग के पास शिकायत पहुंच जाती है तो उसका पंजीकरण होता है सबसे पहले, उसको एक विशेष नंबर दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: नंबर दिए जाने के बाद में वो एक सदस्य के पास भेजी जाती है जिसकी जांच की जाती है। जांच के बाद में यदि ये लगता है कि शिकायत झूठी है तो उसको खारिज कर दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: और यदि ये पाया जाता है कि शिकायत झूठी नहीं है, जो शिकायत सही है और किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो शिकायत पर पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है और यहाँ तक कि दस्तावेजी साक्ष्य जो उससे संबंधित होते हैं वो भी तलब किए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: और अगर कोई किसी न्यायालय से या किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराना हो तो आयोग मांग पत्र जारी करके वहां से भी साक्ष्य एकत्रित कर सकता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ, और शिकायतकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आयोग दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने की संतुति कर सकता है, संतुति कर सकता है। और आयोग अपने निर्णयों को लागू कराने के लिए स्वयं भी उच्च न्यायालय या देश के उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है।
1: अच्छा,
0: और जब पीड़ित पक्ष व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है तो पीड़ित व्यक्ति को आयोग जो है मुआवजा दिलाने के लिए भी संतुति सरकार या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को कर सकता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुल मिलाकर ये तो हुई बात ये कि किस प्रकार से निस्तारण होगा
0: जी।
1: अब वकील साहब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो मानव अधिकार आयोग है
0: जी,
1: ये इसके कार्य क्या क्या है?
0: जी जी जी, कार्य है मानव के साथ हो रहे उसके कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच करना आयोग का प्रारंभिक कार्य होता है।
1: अच्छा,
0: सबसे पहले जो प्रारंभिक कार्य होता है उसके जो मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उनकी जांच करना सबसे प्रारंभिक कार्य मानवाधिकार आयोग का होता है। इसके अलावा आयोग जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन तथा लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन पर भी कार्यवाही करता है। साथ ही यह भी है कि स्वप्रेरणा से भी न्यायालय मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए लंबित जो मामले उसके सामने आते हैं उनमें भी वो दखल दे सकता है।
1: अच्छा,
0: और यहाँ इसके अलावा जेल, अस्पताल, किशोर सुधार गृह में जो लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें उनकी क्या दशाएं हैं वहां पर, वहां का अध्ययन करने के लिए भी न्यायालय आयोग जो है उनका दौरा कर सकता है स्वय विवेक स्वप्रेरणा से।
1: अच्छा अच्छा,
0: और इसमें इसके अलावा यदि पुलिस पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो आयोग जो है उसकी आयोग से उसकी शिकायत की जा सकती है और FIR दर्ज कराने के आदेश कर सकता है आयोग। और पुलिस यदि पुलिस की हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शिकायत भी आयोग में की जा सकती है।
1: अच्छा
0: जी हाँ।
1: अच्छा, ये तो बात हुई कि क्या क्या मतलब किस तरह से जो आयोग है उसके कार्य हैं
0: जी।
1: अब बात आती है कि कार्य तो बहुत सारे होंगे लेकिन हाँ, अधिकार हर व्यक्ति के अलग अलग और सीमित होते हैं
0: जी।
1: तो मानव अधिकार आयोग में कौन कौन से उनके ऐसे अधिकार हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं
0: जी? मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं
1: जी,
0: वो यह आयोग व्यक्तियों के लिए सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान कराता है। जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, हमारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसके लिए अधिकार प्रदान कराता है।
1: अच्छा,
0: सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, पीने के लिए स्वच्छ जल का अधिकार है और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। बाल श्रमिक जो होते हैं, जो उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके खिलाफ भी जो है ये जो है कार्य करता है।
1: अच्छा,
0: और इसके अलावा बाल वेश्यावृत्ति है उससे मुक्ति दिलाने का अधिकार भी ये कार्य करता है। और फर्जी मुठभेड़, पुलिस में जो फर्जी मुठभेड़ होती है, मृत्यु हो जाती है, इसके खिलाफ भी जो है इस खिलाफ भी शिकायत ये आयोग सुनता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए ये तो आगे बहुत सारे इनके अधिकार हो गए। अब बात ये आई कि मानव अधिकार से संबंधित कौन कौन से ऐसे अधिनियम हैं जो बनाए गए हैं जिनके आधार पर मानव अधिकार आयोग कार्य करता है।
0: जी जी, वैसे तो मानवाधिकार आयोग खुद अपने स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को सुनता है, उनका निपटारा करता है और संतुति भी करता है सरकार के लिए कि इनमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हमारे हमारी सरकार ने मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए कुछ उचित कदम उठाए हैं और कुछ अधिनियम भी बनाए हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे जिनमें एससी

0: एसटी आयोग है, एससीएसटी अधिनियम 1989 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, महिला अधिकार अधिनियम संरक्षण 1993 आदि शामिल हैं।
1: अच्छा, तो काफी अधिकार
0: जी
1: मानव
0: जी
1: अधिकार
0: जी जी
1: आयोग के हैं। अब हम एक बात वकील साहब आपसे और करना चाहेंगे
0: जी
1: कि हमारे समाज की अगर बात करें तो अभी जागरूकता की कमी है,
0: जी जी जी
1: खासतौर से मानव अधिकारों की जागरूकता के लिए कौन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जागरूकता हो जाए।
0: हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी तो यह है कि सरकार को जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर सेमिनार की का आयोजन करना चाहिए, जिससे पब्लिक को बताया जा सके कि मानवाधिकार क्या होते हैं।
2: मानव अधिकार अधिनियम कानूनी सलाह कार्यक्रम में अभी आप एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा से आलोक कुमार की बातचीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:58 हुए हैं। कृपया हमारे अगले अति महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्र जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारी स्वाधीनता

संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से

खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस गीत

संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम

के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को यह कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्यलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए, देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's Address to the Nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है देशगान।

0: लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444 पर कॉल।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का ले संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सकें।

0: भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हम विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे।
1: स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें।

0: कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड, कमिटेड और स्किल्ड हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्रों के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित मौन पदयात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 1947 में देश के विभाजन की त्रासदी को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत भारत तभी बनेगा जब समाज एक पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान केवल एक भारतीय नागरिक की होनी चाहिए।
3: हमारी व्यक्तिगत पहचान हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में, भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। ये हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें, अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पुण्य स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का बदला हुआ अयोध्या धाम हमें फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता है। श्री योगी ने चढ़ावा मामले पर कहा कि SIT की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ

0: कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
0: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व विचारक VD सावरकर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया जाएगा पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लखनऊ में मौन पदयात्रा में हुए शामिल। कहा, विभाजन की त्रासदी से सबक लेकर मजबूत भारत के निर्माण का लें संकल्प। और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में कहा, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए संकल्पित है सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण कल सवेरे 7 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश की जनता के नाम संदेश कल रात्रि 8 बजे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम की राज्य स्तरीय रेडियो रिपोर्ट कल रात्रि 10 बजे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

कर 30 मिनट पर। इसमें भाग लेंगे श्री विनोद भ्रंग, श्री वीरेंद्र आजम और श्री नरेंद्र मस्ताना। गोष्ठी का संचालन करेंगे श्री हरिराम पतिक।

0: मातृवंदना सुनिएगा कल सवेरे 6:05 पर। श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर डॉक्टर अशोक कुमार का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनिएगा कल सवेरे 10:30 पर। कल दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। महिला जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर स्वतंत्रता दिवस और तीज पर विशेष कार्यक्रम तीज के रंग आजादी के संग सुनवाया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हरियाली तीज पर्व के अवसर पर प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। इसमें भाग ले रही हैं श्रीमती सुनीता सोलंकी, श्रीमती पूजा गोयल और श्रीमती सुमन प्रभा। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती मंजू जौहरी मधुर।
1: सावन की रिमझिम फुहारों और प्रकृति के इस पावन श्रृंगार के बीच आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम हरियाली तीज कवित्री सम्मेलन में मैं डॉक्टर मंजू जौहरी मधुर आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। कहा जाता है कि जब जब सावन बरसता है मन के तार अपने आप सुर में बन जाते हैं, और जब सावन हो, तीज का पावन अवसर हो और साथ में सुरों की मल्लिकाएं हो तो यह समय और भी सुहाना हो जाता है। आज के इस विशेष कवित्री सम्मेलन में आकाशवाणी के प्रांगण में कला और साहित्य की महक चारों तरफ बिखरी हुई है। खास बात यह है कि आज हमारे बीच पधारी हैं शिक्षा और संस्कृति की पावन नगरी मुजफ्फरनगर से चुनी हुई प्रख्यात कवित्रियां, जो अपनी ओजस्विनी और श्रृंगारिक रचनाओं से इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए तैयार हैं। तो आइए मैं आपका सर्वप्रथम परिचय कराती हूँ। हमारे बीच हैं सुमन प्रभा जी, और हमारे बीच हैं सुनीता सोलंकी जी, तथा हमारे बीच हैं पूजा गोयल जी। तो आइए मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ और आपको इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ सुमन प्रभा जी को कि वो आए और अपनी सुंदर सुंदर सावन की रचनाओं से हमें रसा स्वादन करवाएं, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी कविताओं में घेवर की खुशबू, झूले, किस तरह से वो हम सभी को रसा स्वादन करवाती हैं। तो मैं उनको इन चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि बारिश की बूंदों में कुछ ऐसी बात होती है हर एक सुबह जैसे सुहानी रात होती है, मचलती है हवा जब भी इन फुहारों के संग, प्रकृति की गोद में नई सौगात होती है।
2: धन्यवाद मंजू जी, आपने मुझे इतनी सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया
1: जी। धन्यवाद,
2: आपको समर्पित करती हूँ दो पंक्तियाँ। सावन ये तेरे होने का असर है शायद यादों के मौसम में नमी ही नमी है, यादों के मौसम में नमी ही नमी है। और अब प्रस्तुत है मेरा गीत
1: जी। स्वागत
2: आओ।

का झूला झूले, प्यार हो इतना गहरा के अंबर को भी छू ले, प्यार हो इतना गहरा के अंबर को भी छू ले, रिमझिम बूंदों की फुहार बरसाए घटा काली, रिमझिम

मन भावन साज श्रृंगार को लाए साथ। सावन इतना मन भावन साज श्रृंगार को लाए साथ। मन को मोह लेते हैं मेहंदी रचे सुंदर हाथ। मन को मोह लेते हैं मेहंदी रचे सुंदर हाथ। हर आहट पर घबराए देखो, हर आहट

0: प्याली,
1: बहुत सुंदर
0: मीठी बोली कोयल की, मोर पपीहा शोर मचाए, मीठी बोली कोयल की, मोर पपीहा शोर मचाए।

के संग ले जाए। हया के रंगों से लचक रही नाक की नथ कानों की बाली, हया के रंगों से लचक रही नाक की नथ कानों की बाली, प्रेम के संदेशे लाई सावन की हरियाली। छिपी रोदन में मुस्काने छम छम बरसे बादल, छिपी रोदन में मुस्काने छम छम बरसे बादल, कोई बंधा प्रीत की डोर में कोई प्यार को तरसे पल पल, कोई बंधा प्रीत की डोर में कोई प्यार को तरसे पल पल। क्या क्या रंग दिखलाए, क्या क्या रंग दिखलाए सावन ऋतु मत वाली, सावन के संदेशे लाई सावन की हरियाली, सावन के संदेशे लाई सावन की हरियाली। और अब प्रस्तुत है मेरा दूसरा गीत घटा।

उकसी कोयल ने छेड़ा मीठा राग, दिल में उठती हूक सी कोयल ने छेड़ा मीठा राग, भूले बिसरे प्यार की याद दिलाने, भूले बिसरे प्यार की याद दिलाने, आया है सावन आया है सावन, करके सोहला श्रृंगार गोरी प्रीतम की राह निहारे, करके सोले श्रृंगार गोरी प्रीतम की राह निहारे, तड़पते मन को प्रीत का झूला, तड़पते मन को प्रीत का झूला झुलाने आ

सावन आया है, सावन आया है, सावन सबको सबके मीत मिले, बिछड़े ना किसी के मीत, सबको सब

सावन आया है सावन, घटाओं से घिरा आसमान फैली चहुं और हरियाली, प्यासी धरती की प्यास

0: आया है
1: सावन,
0: घटाओं से घिरा आसमान, फैली चहुं और हरियाली, प्यासी धरती की प्यास आसमान, फैली चहुं और हरियाली, प्यासी धरती की प्यास
2: सावन सा धाम। और सोले श्रृंगार करके जब रूप है निखरा, फिर हरियाली तीज लाई, नए नए पैगाम, नए नए पैगाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। रिमझिम बरसात हो और मन मोरनी जैसे नाचने लगे।
2: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।
3: रिमझिम बरसात हो और मन मोरनी जैसे नाचने लगे,
2: बहुत सुंदर।
3: भीगे जज्बातों की सरगम पर दिल कुछ गुनगुनाने लगे।
2: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया।

0: सावन बूंद बूंद जल बरसे, इंतजार था कब से तेरे नाम की मेहंदी अब मिट मिट कहती हमसे। सावन बूंद बूंद जल बरसे,
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: बढ़िया। कहते हैं बारिश में हमदम मिलन की बात होती, कहते हैं बारिश में हमदम मिलन की बात होती, पर मेरे हिस्से आई है सिर्फ बरसात रोती। सावन बूंद बूंद जल बरसे, इंतजार था कब से, जाने क्या क्या हमको साजन, बस कहना था तुमसे। सावन बूंद बूंद जल बरसे, इंतजार था कब से।
1: बहुत
0: दूसरी रचना आपके सामने
1: जी, स्वागत है, स्वागत है।
0: हरी

0: बहता तट पर शीतल छाओ, गाँव गाँव में बहे गीत वन नित नूतन है गाँव।
1: बहुत
0: पेड़
1: सुंदर, बड़ा
0: लगाओ
1: सुंदर।
0: जीव बचाओ, पेड़ लगाओ जीव बचाओ, यही एक संदेश। धरा बचेगी तभी बचेगा भू पर देश विदेश।
1: बहुत
0: मन का
1: सुंदर,
0: पपीहा रट लगाए, मन का पपीहा रट लगाए, बदरा बिन मिल आन। टिप टिप वर्षा अगन बढ़ाए, तन से निकले जान। पंछी अपनी नीड़ लौटते, पंछी अपनी

0: बुझ गई है कब की, कौन बंधावे धीर, पंछी अपनी नेड़ लौटते, दिल धक से रह जाता जब मिला नहीं संदेश, बूंद बूंद बरखा तरसाए सजन भये परदेश, नदियां तट को छोड़ बहे, नदियां तट को छोड़ बहे विरहन का विश्वास, एक ना एक दिन आए पीर रखचा तक सी आस, नदियां तट को छोड़ बहे विरहन को विश्वास।
1: बहुत सुंदर का पाठ अभी हमारे बीच कर रही थी सुनीता सोलंकी जी। तो आइए मैं अगले हस्ताक्षर के रूप में पूजा गोयल जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ इन चार पंक्तियों से, कि हाथों में हरी चूड़ियां और घेवर की मिठास, कि हाथों में हरी चूड़ियां घेवर की मिठास, और रिमझिम फुहारों से महका मन का ये मधुमास,

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: गोरी झूले तो है रौनक गालों पर,
0: बहुत सुंदर।
1: और एक गीत से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ
0: जी, स्वागत है।
1: श्याम रूप में घन जब बरसे,

0: अति पावन।
1: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।
0: श्याम रूप में घन जब बरसे, और गीत का पहला बंद देखिएगा कि हरियाली के मन का उत्सव, हरियाली के मन का उत्सव तीज रूप में सभी मनाए। झूलों की लंबी पेंगों पर मिल श्रृंगारित सखियां गाएं। तब गोरी के मन में करता, तब गोरी के मन में करता मीठी सी एक हलचल सा।

0: और सावन के आने पर क्या क्या होता है प्रकृति में देखेगा
1: जी, स्वागत
0: जिसके है। आने की आहट से, जिसके आने की आहट से माटी में श्वासें फिर आई,

0: आई।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: नया नया सा लगता हर पल, नया नया सा लगता हर पल, खुशियों का लहराता दामन, नया नया सा लगता हर

0: सावन।
1: बहुत सुंदर, बढ़िया।
0: श्याम रूप मेघन जब बरसे, और जब राधा झूले पर बैठी, जब राधा झूले पर बैठी, कृष्ण झुलाने उनको दौड़े। जब राधा झूले पर बैठी, कृष्ण झुलाने

0: श्याम रूप में घन जब बरसे, श्याम रूप में घन जब बरसे, श्याम रूप में घन जब बरसे। और इसी के साथ कुछ दोहे आपके समक्ष रखती हूँ
1: जी, स्वागत है।

0: सखियों का परिहास, हाँ सखियों तोहरा ही परिहास।
1: बहुत सुंदर।
0: और आदरणीय मंजू जोहरी मधुर जी को अपनी इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ कि

0: ए सखी मन पढ़ लो बगियन के फूलों का, ए सखी मन पढ़ लो बगियन के फूलों का। बहुत बहुत स्वागत आप
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए देखिए सखिए, जब सावन के महीने में तीजों के त्योहार पर अगर पिया हमारे परदेश हों तो सभी को याद आती है और उनकी कमी थोड़ी महसूस होती है। तो आइए पहले चार पंक्तियां एक मुक्तक के माध्यम से रखती हूँ, सुनिएगा। बड़ी

तब वास्तव में कोई त्योहार हो तीजों का, क्योंकि ये तीजों का त्योहार वास्तव में अपने पियाजी के लिए ही रखा जाता है, शिव पार्वती की पूजा भी की जाती है इसमें। तो आइए एक मुक्तक पढ़ के फिर एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि चमकती है बिजुरिया तो दिल दहल सा जाता है जब प्रीतम पास नहीं होते, कि चमकती है बिजुरिया तो दिल दहल सा जाता है, पवन के झकोरों से मन मचल सा जाता है, और उमड़ कर जब गगन से गिरती हैं रिमझिम फुहारें, कि उमड़ कर जब गगन से गिरती हैं रिमझिम फुहारें, तो देखकर ये नजारा मन कुछ बहल सा जाता है, मन कुछ बहल सा जाता है। और एक गीत पढ़ती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। आप सभी का ध्यान और मन चाहती हूँ, सुनिएगा। झूला पड़ गयो अमुवा की डार, कि आया देखो तीज का त्योहार। आज हम सभी बहनें हरियाली तीज का त्योहार मना रही हैं, तो सुनिएगा कि झूला

त्योहार कि आया देखो तीज का त्योहार और झूलन आई सखियां सारी रिमझिम सावन बरसे। हाँ झूलन आई सखियां सारी रिमझिम सावन बरसे और मेहंदी रच गई हाथों में और खन खन चूड़ियां खन के। हाँ मेहंदी रच गई हाथ

और बिजुरी चमके और घन गरजे पवन चले मतवाली। हाँ बिजुरी चमके और घन गरजे पवन चले मतवाली। महक रही फूलन की बगिया झूमे डाली डाली। हाँ महक रही।

0: त्योहार। आइए साथियों, अभी आपके बीच कवित्री सम्मेलन में हरियाली तीज पर बहुत सुंदर सभी हमारी कवित्रियों ने आपके समक्ष रचनाएं प्रस्तुत की, तो मैं आपको एक बार फिर पुनः परिचय करवा देती हूँ। हमारे बीच आज थी सुमन प्रभा जी, हमारे बीच सुनीता सोलंकी जी थी और हमारे बीच पूजा गोयल जी। आप तीनों कवित्रियों ने आज हरियाली तीज पर बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं तो मंजू झौरी मधुर आप सभी से विदा लेती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
1: हरियाली तीज के पावन अवसर पर आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। इसमें प्रतिभाग कर रही थी श्रीमती सुनीता सोलंकी, श्रीमती पूजा गोयल और श्रीमती सुमन प्रभा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी श्रीमती मंजू जौहरी मधुर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण कल सवेरे 7 बजे हम अपने लखनऊ दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश की जनता के नाम संदेश कल रात्रि 8 बजे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: अब आप समाचार सुनेंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं।

0: ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह

0: 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
1: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
2: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गाँव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: to humanity. She highlighted that the Parsi community has made significant contributions to the country's development through its spirit of enterprise and philanthropy. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India remains fastest growing major economy amid global instability. Addressing the nation on the eve of Independence Day, President Murmu reiterates government's resolve to ensure development reaches every individual. Government taking comprehensive steps to curb use of unfair means in public examinations to safeguard future of students. President calls for responsible use of natural resources for future generations. Nation to celebrate 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to lead the celebrations from the iconic Red Fort. 78 gallantry awards announced for Defence Forces and Central Armed Police Forces personnel. And flood situation remains grim in Odisha due to relentless monsoon spell. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि हर की तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जामे इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आज़ादी मनाएगा। वज़ीर आज़म ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क़यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। मॉनसून की मुसलसल बारिश के बाइस उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से दो गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अमन ताउन मुजाकरात और वसुधैव कुटुम्बकम का नजरिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आजाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो इलाके जो कभी नक्सलिज्म से मुतासिर थे वहां अब जोश व जज्बा नजर आ रहा है।
2: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
1: अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेमार हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मुसाबकती इम्तिहानात तलबा के लिए मवाक़े के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तिहानात में इस्लाहात की खातिर जामे इकदामात कर रही है।
2: सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से

0: उस लगे परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं।
1: मुआशरे के महरूम तबकात की फलाह बहबूद के बारे में सर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेन देन निस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं।
0: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज संभलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गरज से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क्यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आजादी की सदसाला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानिब गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क का अज़्म है कि तरक्की के समरात हर फर्द तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नजरियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया ने यौम आजादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फिक्र अंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय की उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का पैगाम मुल्क के लोगों को विकसित भारत के लिए नए जज्बे और पुख्ता अज़्म के साथ काम करने की तरगीब देता है। मुल्क कल अपना 80वां यौम आजादी मनाने जा रहा है। वजीर आजम मोदी दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। भारतीय फजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए जाएंगे। कौमी परचम फहराने के अमल को 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया जाएगा। वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के दौरान पहली बार कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम के शानदार विरासत के 150 साल पूरा होने की अजीम तकरीब में 2047 तक विकसित भारत के सफर में युवा शक्ति की तवनाई, उमंगों और अहम ताउन को भी उजागर किया जाएगा। इस तकरीब में लड़के और लड़कियां कैडेट समेत बर्री फौज, बहरिया, फजाई फौज और माई भारत वॉलेंटियर्स के 2500 जवान शिरकत करेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को लाल किला पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। इसमें PM विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफीद फनकारों, PM मुद्रा योजना से मुस्तफीद होने वाली कारोबारी खवातीन, PM स्वानिधि के तहत खांचा फरोशों और भारत टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लाल किले पर नस्ब किए गए हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: कल यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमात सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी ताकि यौम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदऊईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। सभी लाइनों पर मामूल के मुताबिक बाकायदा सर्विस शुरू होने के वक्त तक मेट्रो ट्रेनें 30

0: 30 मिनट के वक्फे से चलेंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने यौम आजादी के मौके पर आज रेल भवन के अहाते के अंदर एक तिरंगा रैली की क्यादत की। रेलवे की वजारत ने कहा कि भारतीय रेलवे मुल्कगीर हर घर तिरंगा मुहिम में फाल तौर पर शिरकत कर रही है और पूरी रेलवे तंजीम में हुब्बुल वतनी, कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे की तकरीबात मना रही है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के तीसरे मरहले के साथ यकजहती मुनाकिद की जा रही है। इस मौके पर रेल भवन में वसी पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने का भी एहतमाम किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आजादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स की मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 1 बाटू शौर्य चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बाटू सेना मेडल्स, 36 सेना मेडल्स शामिल हैं। कीर्ति चक्र के लेफ्टिनेंट कर्नल मानियो फ्रांस पीएफ मेजर जितेंद्र राठी को नामजद किया है, जबकि हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, एसजी कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर एसटीएफ सुनील कुमार को कीर्ति चक्र बाद अजमर्ग दिए जाएंगे। पारसियों के साले नौ नवरोज के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और बैरून मुल्क रहने वाली पारसी बिरादरी के तमाम अफराद को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नवरोज नई शुरुआत और नई उम्मीद की अलामत है। सदर जमहूरिया ने वाजे किया कि खुशी और हम आहंगी का ये त्यौहार हम सबको बकाए बाहमी और इंसानियत की अकदार की याद दहानी कराता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने IGRMS भोपाल जुनूब वस्ती जोन सकाफती मरकज और संगीत नाटक अकेडमी के कलाकारों के ग्रुप के साथ आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि इन कलाकारों के शाहकारों की कल राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा यौम आज़ादी के इस्तक़बालिये में नुमाइश की जाएगी। भारतीय रेलवे नन्हे ऑपरेशन फरिश्ते के तहत रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले 65 गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से मिलाया है। ये बच्चे फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर मिले थे। फिरोजपुर डिवीजन ने मुसाफिरों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पर कोई बच्चा अकेला, गुमशुदा या अपने खानदान से बिछड़ा हुआ मिले तो फौरी तौर पर RPF या स्टेशन के अमले को इत्तला दें। मुसाफिर बच्चों के हिफाजत के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर भी राब्ता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड VDG का एक रुकन उस वक्त हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया जब आज उधमपुर जिले में एक आपसी झगड़े के बाद उनके साथ ही VDG के एक रुकन ने मुबैना तौर से उन पर फायरिंग कर दी। ये वाकया दूर दराज के पंचेरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब VDG के मेंबरान पुलिस चौकी जा रहे थे। जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि पुलिस की एक टीम ये मालूमात हासिल करने के फौरन बाद जाय वकू के लिए रवाना हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों से एहतजाज की खबरें मिली हैं। मुजाहिरीन बुनियादी हकूक, मुबैना हलाकतों के लिए एहतसाब और शहरी आज़ादी पर मुबैना पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस मकबूजा इलाके में जारी गड़बड़ के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेज के जरिए तकरीबन 100 अफराद हलाक किए जा चुके हैं। उड़ीसा को मानसून की दिक्कतों का मुसलसल सामना है, जहां मूसलाधार बारिश शिमाली अजला में बार बार सैलाब आने का बायस बन रहा है। इसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। एक महीने में 4 मरतबा आने वाले सैलाब के बायस कई अजला बुरी तरह मुतासिर हैं, जबकि बालासोर, भद्रक, क्यूंझर और मयूरभंज शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। मजीद बारिश होने की IMD की पेशगोई के साथ ही 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 30 दिनों में बार बार शदीद सैलाब आने के बाद बेतरनी, जलाका, सुवर्णरेखा, बुधबलंगा और सालंदी नदियां एक बार फिर तुगयानी पर हैं। दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि बहुत से गांवों का राबता दूसरे इलाकों से मुनक़ते हो चुका है। मयूरभंज में बुधबलंगा दरिया के पानी की वजह से बेतनती ब्लॉक जेरे आब है। भुवनेश्वर से आकाशवाणी न्यूज के लिए प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।

भारत के महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और उड़ीसा में आइंदा दो दिनों के लिए शदीद बारिश की पेशगोई की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जामे इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आजादी मनाएगा। वजीर आजम ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क्यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज दिन है शुक्रवार, रात्रि के 9:30 हुए हैं और हम हाजिर हैं आपका मन पसंद कार्यक्रम यानी कि हेलो नजीबाबाद लेकर। तो इस कार्यक्रम में आप हमारे सभी सुधी श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आपको चाहिए होगा हमारा मोबाइल नंबर। तो हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 01341230105। तो आप इन दोनों नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। तो आप वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो नजीबाबाद
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: जी। प्रेम सिंह भाई, क्या हाल है आपके?
1: बहुत अच्छा हूँ। ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: अरे वाह, मध्य प्रदेश से प्रेम सिंह भाई हमसे बात कर रहे हैं। तो प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा मौसम है अभी। हाँ। अच्छा मौसम होगा कभी अभी हमारे यहाँ पर।
0: अरे वाह, तो बारिश वारिश हो रही है क्या?
1: हाँ जी, बारिश पिछले हफ्ते काफी हुई थी और आज दिन में भी अच्छी बारिश हुई यहाँ पर।
0: अच्छा
1: जी। और आपको बताएं, उज्जैन महाकालेश्वर के लिए दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर।
0: हाँ बिल्कुल, श्रावण का ये पवित्र महीना इस समय चल रहा है और महादेव के भक्त बहुत दूर दूर से उज्जैन के महाकाल मंदिर में उनके दिव्य दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये बात तो हम भी विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए हम तक भी पहुंच रही है। और श्रावण मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेम सिंह भाई, आप मध्य प्रदेश से हमसे बात कर रहे हैं तो
1: जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए,
0: हाँ,
1: तो उनके लिए यहाँ पे शासन प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। काफी तो मतलब सड़कें चौड़ी कर दी गई है यहाँ पर।
0: अरे वाह।
1: जी हाँ, और आने जाने के लिए रास्ता तो साफ सुथरा मिलेगा उन्हें, साथ में ही खाने पीने की और रहने की निःशुल्क व्यवस्था भी मिल रही है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ जी, जगह जगह पे भंडारे लगाए हुए हैं और रहने के लिए खाने के लिए और कोई भी असुविधा ना हो, इस बात का पूरा सभी मतलब लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर हम कुछ नेकी का काम करते हैं ना, तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है और वो जो सुकून होता है ना, समझिए ईश्वर का वही अंश हमारे अंदर है फिर, है ना?
1: जी बिल्कुल। जैसे कि आपको बताऊं, यहाँ से जो लोकल हमारे हम लोग जो होते हैं ना दर्शन के लिए, बहुत इस सावन महीने में कम जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना, अगर हम ज्यादा जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ ज्यादा हो जाएगी।
0: हाँ।
1: तो उन लोगों के लिए मतलब हमने थोड़ी जगह खाली छोड़ रखी है ताकि उन्हें जल्दी से दर्शन हो जाए और वो

0: दर्शन कर ले।
1: हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ऐसा है कि जो श्रद्धा होती है वो हमारे मन में होती है ना। कर तो कभी
0: बिल्कुल
1: कभी ऐसा होता है कि कुछ समय ऐसा होता है कि हम अपने आप को अगर रोक लें तो कोई
0: जी
1: बात नहीं, कोई दूसरा इतनी दूर से आ रहे हैं और उन्हें अगर दर्शन हो जाएं और उनका ये काम सफल हो जाए तो उसका जो पुण्य है वो उन लोगों को भी मिलता है जिनकी वजह से वो आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना। तो उससे
0: हम भी
1: हाँ
0: पहुंच जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ में, आस पड़ोस के साथ में, तो
1: हाँ
0: वहां पे कितनी भीड़ ज्यादा हो जाएगी,
1: हाँ
0: तो उन
1: बिल्कुल,
0: लोगों को मतलब
1: आप
0: थोड़ी
1: बहुत भीड़
0: समस्या
1: हो
0: हो
1: जाएगी,
0: जाएगी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात हमें प्रेम सिंह भाई लगी। और प्रेम सिंह भाई आप करते क्या हैं?
0: जी सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
1: अरे वाह, आप भजन भी गाते हैं?
0: हाँ जी, हमारे 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है,
1: अच्छा
0: उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, एक ढोलक और एक तबला बजाते
1: अरे
0: हैं।
1: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भजन भी गाते हैं, तो मतलब जो भजन गाते हैं तो क्या वो उसमें आप कुछ शुल्क मतलब लेते हैं जहाँ पर भी भजन गाते हैं, या आप निशुल्क गाते हैं?
0: जी जैसे कि आपको बताऊं, यूं तो मंदिर वगैरह कोई फंक्शन होता है ना,
1: हाँ
0: तो हम अपने ग्रुप के साथ में फ्री में जाते हैं, बट वहीं किसी किसी के घर पे मकान का उद्घाटन हुआ,
1: हाँ
0: किसी के बच्चे का बर्थडे हुआ, किसी की पुण्यतिथि हुई, अगर इसमें हमें बुलाया जाता है ना, तो
1: हाँ
0: उसकी फिर हमें हमारी फीस
1: कुछ
0: लगती है। हाँ
1: चार्जेस, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जा रहे हैं, है ना, तो
0: जी,
1: अपने
0: जैसे
1: भी।
0: अपने स्तर पे
1: हाँ
0: जाते हैं ना, तो उसका तो कोई चार्ज नहीं होता, अगर
1: हाँ
0: किसी के घर पे इनवाइट होता है तो फिर उसका चार्ज
1: हाँ
0: लेते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो
0: जी
1: थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो प्रेम सिंह भाई आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
0: जी जैसे कि आपको बताओ, सुबह हम 15 अगस्त मनाएंगे और सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और आपको भी शुभकामनाएं रहेगी, और इसके
1: हाँ
0: साथ में आप सुनवा दीजिएगा इंडियन फिल्म का वतन वालों वतन मत बेच देना।
1: तो ठीक है प्रेम सिंह भाई, आप अपनी पसंद का सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत, हम आपको सुनवाते हैं।

0: सुहाना हो रहा
1: अरे वाह, मजा आ रहा है फिर तो।
0: है जी सर। और
1: लेकिन
0: सर
1: पिछले दो
0: जी
1: दिन
0: सर,
1: की गर्मी तो बहुत ज्यादा
0: हाँ
1: तड़पा देने
0: सर,
1: वाली थी।
0: कल कल और परसों तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी सर, आज
1: जी
0: मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
1: हाँ,
0: और साथ ही साथ सर कल हरियाली तीज है और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस भी है,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल।
0: दोनों ही त्योहारों की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
1: हाँ, ये तो आपको भी शुभकामनाएं और हमारे सभी श्रोताओं को, सभी देशवासियों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की और हरियाली तीज, इन दोनों उत्सवों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो वकार भाई, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
0: सर फिल्म का नाम है अंश
1: अंश
0: और कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है।
1: जी,
0: इसका गीत है सर, हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं।
1: अरे वाह,
0: और सर कुछ दोस्त भी हैं मेरे साथ,
1: हाँ बिल्कुल।
0: जैसे रऊफ अहमद, निजामुद्दीन, नदीम बाकी, मुकेश कश्यप, मोहम्मद फरमान, महबूब दुकानदार, विष्णु अग्रवाल, मांगेलाल चंदेल, दिव्यांशु यादव और आसिफ चौधरी।
1: तो ठीक है वकार भाई, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद सर जी, नमस्कार
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: सर। मैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप बात कर रहा हूँ सर।
0: हाँ मुकेश भाई, कैसे हैं आप?
1: सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए सर, आप कैसे और समस्त आकाशवाणी नजीबाबाद परिवार में सभी लोग कैसे हैं सर।
0: आकाशवाणी नजीबाबाद परिवार में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं और कामना करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे।
1: जी सर बहुत अच्छे हैं।
0: तो मुकेश भाई, आजकल क्या चल रहा है?
1: सर आजकल ये चल रहा है कि हम तो अपनी रिक्शा चला रहे हैं और खेतों में हमारे धान की फसल लगी हुई है, उसकी
0: हाँ
1: देख रेख चल रही है।
0: अच्छा, तो अभी आपने धान बो दिया, तो अभी तो इससे पहले आपने, जहाँ तक हमें याद है, आपसे पहले भी हमारी बातें हुई हैं, तो आप खरबूजा वगैरह उसकी पलेज लगाते हैं।
1: जी सर वो तो अब खत्म हो गई सर।
0: हाँ वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आपने अब धान बो दिया है।
1: जी सर
0: भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बारिश का क्या मिजाज है आपके लिए?
1: सर आज सुबह से ही रिम निम बारिश हो रही है और अब
0: हाँ
1: आकर रुकी है।
0: हाँ अब अच्छा, तो अब आके रुकी हुई है,
1: जी सर ठंडा मौसम हो गया एकदम।
0: मौसम ठंडा हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। तो मतलब अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।
1: जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है।
1: और कॉल लगा रहे थे, कॉल भी लग गई।
0: भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आज आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और कॉल लगा रहे हैं और कॉल लग गई, ये कितनी अच्छी बात है।
1: जी सर
0: तो मुकेश
1: जी,
0: भाई, आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है कर्मा,
0: हाँ
1: गाने के बोले दिल दिया है जान भी देंगे, कुछ नाम है सर।
0: हाँ बिल्कुल, बोलिए।
1: जयपाल भाई हैं, मकसूद हुसैन जी हैं, राशिद अंसारी हैं, आसिफ चौधरी हैं, बक्कार भाई हैं, निजामुद्दीन है, रऊब भाई हैं, और ये महबूब दुकानदार, मोहम्मद फरमान, विष्णु अग्रवाल और नदीम बागी सर।
0: हाँ, तो अपने सभी दोस्तों के साथ लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: जी सर, हेलो नजीबाबाद।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जी सर, मैं बिल्कुल ग्राम परसेंठा जिला फतेहपुर यूपी से सर मैं रोहित यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी रोहित भाई, कैसे हैं आप?
1: जी सर, मैं बिल्कुल मस्त हूँ आपके जैसे। सर आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, उम्दा।
1: जी सर बिल्कुल। सर जी, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठी लग रही
0: अरे
1: है।
0: क्या बात है, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है साहब कि आपको हमारी आवाज़ अच्छी लग रही है, और आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है, कितनी मीठी और मधुर है।
1: जी सर, और आपकी आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद तो सुनते रहते हैं, लेकिन सर जी आज काफी अंतराल के बाद आज मुझे आपसे मुलाकात हो रही है और बात भी कर रहा
0: हाँ,
1: हूँ।
0: ये तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं ये कार्यक्रम है ही ऐसा, और इस कार्यक्रम में हमारे सारे श्रोता चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ जाएं, तो इसी
1: सर
0: जुगत
1: जी,
0: में
1: और हम
0: हाँ
1: आपकी स्पीड को पकड़ पाए बहुत ही 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप सर जी आप कॉल रिसीव कर रहे हैं। बहुत रफ्तार हमें करनी पड़ती है कॉल
0: बिल्कुल
1: लगाने
0: हाँ, बहुत सारे श्रोता होते हैं एक ही समय में कॉल करते हैं, तो हमारे लिए भी ये सोच पाना मुश्किल होता है क्योंकि हमें तो केवल कॉल जो हमारे मॉनिटर पे दिखाई देती कि कॉल आ रही है, किस नंबर से आ रही है ये हमें मालूम नहीं होता, और हम कभी भी इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं और ना ही करते हैं कि जो भी कॉल हमारे पास पहले आती है हम उसी कॉल को ले लेते हैं। तो आपका
1: सर जी, मैं
0: नाम?
1: आप
0: हाँ
1: सर जी मैं सबसे पहले आपके आकाशवाणी पूरी नजीबाबाद केंद्र को और सुनने वाले जितने भी मेरे मित्र रेडियो मित्र हैं सभी सुनने वालों को सर जी 15 अगस्त की सर जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूँ। जी
0: हाँ
1: सर, की रेडियो के माध्यम से सभी लोगों के तक पहुंच जाए, और कल हमारा 80वां वर्षगांठ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस के। जी
0: हाँ कल हमारा स्वतंत्रता दिवस का 80वां वर्षगांठ है,
1: सर,
0: और 80वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा, तो
1: जी सर,
0: मतलब हमें कितना मतलब गर्व की अनुभूति हो रही है, और हमारा देश दिनों दिन कितनी तरक्की कर रहा है, और जिसका प्रमाण हम सबके सामने है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में कितना आगे निकल चुके हैं, आप भी
1: जी जी
0: महसूस
1: सर
0: करते ही
1: बिल्कुल,
0: होंगे, है ना।
1: जी
0: एक
1: सर
0: छोटी सी
1: बिल्कुल सर,
0: दुकान पे भी जाते हैं, एक छोटे से ठेले पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी यूपीआई का बारकोड स्कैनर लगा हुआ होता है और हम उसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से,
1: जी
0: है ना।
1: सर बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: ये तरक्की का ही निशान है, और ये सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिनों दिन देश तरक्की के नए आयाम छू रहा है, तो इस पर हमें
1: जी
0: गर्व होना चाहिए, और अपने सभी देशवासियों को हमें ये बधाई के साथ थोड़ा सा गौरवान्वित भी होना चाहिए। ठीक है,
1: जी जी सर बिल्कुल सर जी, लेकिन सर जी प्रोग्राम भी आज बहुत ही लाजवाब जा रहा है आपका,
0: अरे
1: और मुझे
0: वाह
1: बहुत खुशी हो रही है सर जी कि आप बहुत दिनों के बाद आज मुझसे आपकी बातें हो रही हैं मेरी।
0: हाँ, वो तो आपकी आवाज से, आपके शब्दों से, और जो
1: जी सर जी,
0: उनका जो
1: सर जी मैं
0: तरीका
1: घर
0: है।
1: में हूँ भी नहीं, मैं यहाँ प्रयागराज में कोचिंग करता हूँ सर जी, तो आज हमारा जो प्रयागराज ना सर जी
0: हाँ
1: बिल्कुल सर जी तिरंगे से भी कुछ जगमगा रहा सर जी, पूरा
0: अरे वाह,
1: प्रयागराज
0: अरे
1: सर जी
0: वाह।
1: बल्ले बल्ले
0: तो आप
1: मची पड़ी
0: कोचिंग
1: सर जी आज से ही।
0: तो आप कोचिंग करते हैं या कोचिंग करवाते हैं?
1: नहीं सर जी, कोचिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ।
0: अच्छा, किस विषय की कोचिंग
1: जी
0: कर
1: सर जी,
0: रहे हैं?
1: SSC कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सर जी।
0: SSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की कर रहे हैं या?
1: जी सर जी, कंबाइन सर जी कर रहे हैं,
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: कोई भी मिल जाए, रेलवे है, आर्मी की हो गई, सभी
0: अच्छा
1: सभी
0: अच्छा
1: सर
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा
1: दरवाजे खुले हैं इसमें।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अरे वाह, ये
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत
1: सर
0: अच्छी बात है। तो
1: जी सर
0: आप
1: जी, और मेरे सर जी इतना खुशी हो रही है सर जी, और मुझे लगता है कि मैं भी एक आर्मी या फौजी के अब बन जाऊं, तो मैं भी सर जी देश की सुरक्षा और करूंगा सर जी मजबूत से। जी सर
0: अच्छा, तो आपने पढ़ाई क्या की है?
1: जी सर जी, इंटर हो गया है, और ये मेरा ITI भी सर जी हो चुका है, और सर जी BSc भी कंप्लीट हो चुकी है सर जी, इसीलिए अब तैयारी कर रहा हूँ, कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी सर जी हो रही है यहाँ
0: हाँ,
1: प्रयागराज
0: तो
1: में।

0: इस समय आपसे रूबरू हो रखी है और आपके पास ही आ गई है। ठीक है, तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे भाई साहब?
1: सर जी मूवी का नाम है फना, और सर जी इसी में एक गीत है, देश रंगीला रंगीला मेरा देश रंगीला, सर जी यही गाना सुना दीजिए। और सर जी अगर आपकी इजाजत हो तो दो चार मित्र जो मेरे गांव के हैं वो रेडियो सुन ही रहे होंगे और आपकी आवाज भी सुन रहे होंगे, तो अगर सर जी अगर आपकी इजाजत हो या अनुमति आप दे दें मुझे, तो दो चार मित्रों के नाम ले लूँ सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए
1: जी। सर जी तो हमारे पहले तो ये हमारे जितेंद्र पाल जी हो गए जो हमारे फतेहपुर के ही, लेकिन सर जी वो प्रोग्राम सुन भी रहे होंगे, और हमारे बेटा भैया जी हो गए और मिंटू तिवारी जी हो गए और जयपाल यादव जी हो गए।
0: अरे वाह क्या बात है
1: जी सर जी, तो इन सभी दोस्तों के लिए सर जी, और सर जी खास करके आपके लिए गाना बिल्कुल डेडिकेट रहेगा सर जी, बिल्कुल रेडी तैयार।
0: क्या बात है, आपसे बात करके तो हमारी तबीयत खुश हो गई और बड़ा ही आनंद रहा आपसे बात करके, और सीधे तीर्थ नगरी प्रयागराज से आपसे हमारी बात हो रही है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: है ना। तो बिल्कुल आपकी जो आवाज़ है बिल्कुल ऐसी लगी जैसे कमेंट्री हो रही हो, बहुत शानदार आवाज़ है वसीम भाई।
1: जी सर, इसी तरीके से हमने आकाशवाणी नजीम आवाज से लगभग 2004 से आकाशवाणी नजीम आवाज के प्रोग्राम सुन रहे हैं और काफी पुराना नाता है आकाशवाणी नजीम आवाज से। आज आपसे लगभग 8 साल के बाद में हेलो नजीम आवाज कार्यक्रम में बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है। एक बार फिर से दोबारा कनेक्शन जुड़ा है आपसे नजीम आवाज से।
0: अच्छा तो एक बात बताइए, 8 साल क्यों लग गए इस दूरी को तय करने में?
1: देखिए सर, अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाँ। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है, लेकिन जो गीत रेडियो के माध्यम से सुनने को मिलते हैं और तमाम दूर से प्रदेश से देश से आकाशवाणी नजीम आवाज पर कॉल आती है, वो अपने शहर के बारे में बतलाते हैं और अपने बारे में बतलाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते और उनकी पसंद का गाना सुनाते हैं, तो सर बहुत मजा आता है, दिल को चार चांद छू जाते हैं सर।
0: हाँ, ये बात तो आपकी वसीम भाई बिल्कुल सही है। गीत संगीत और ज्ञान अर्जन का जो खजाना आकाशवाणी के संग्रह में है ना, वो शायद ही कहीं होगा, है ना।
1: देखिए सर, गाने तो आज के टाइम में मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, जो हाँ। आकाशवाणी के जरिए गाने सुनते हैं तो हाँ। वो बहुत अच्छा लगता है,
0: उसका आनंद ही कुछ और होता है और उसमें एक भावनाएं जुड़ी रहती हैं, है ना।
1: क्योंकि सर एक मरतबा 2009 में हमने आपको पहली मरतबा हमने कॉल की थी, तो उस समय सर फोन का दौर बहुत कम था 2009 में।
0: हाँ, पहले लाइव फोन इन कार्यक्रम नहीं होते थे तो रिकॉर्डेड कार्यक्रम होते थे, तो एक समय निर्धारित था और मुझे जहाँ तक याद है तो समय होता था बृहस्पतिवार की शाम 4 बजे से 5 बजे तक के बीच हमारे सभी श्रोताओं के जो फ़ोन कॉल्स होते थे वो रिकॉर्ड किए जाते थे और फिर अगले दिन शुक्रवार के दिन उन सारे फ़ोन कॉल्स को, या रविवार के दिन कार्यक्रम का समय जब बदलता था तो रविवार के दिन प्रसारित किया जाता था वो कार्यक्रम, है ना।
1: जी सर, वो उस समय सर लोगों को पास फोन भी बहुत कम थे, तो हाँ। क्योंकि मेरे घर पे मेरे पिताजी का रिसीवर था सर, मैंने रिसीवर के माध्यम से मैंने आकाशवाणी नजीम आवाज पर 2009 में मैंने कॉल लगाई थी हाँ। तो मुझे बहुत दिन आज भी मुझे याद है, आकाशवाणी नजीम आवाज की बुलंदी के जरिए मैंने ये सब कुछ सिलसिला है आपके जरिए सब बोलने का सिलसिला सीखा है सर, तो काफी अच्छा लगता है सर।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हमसे बोलने की कला आती है तो हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं वसीम भाई
1: जी। इसी बीच पे मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं सर।
0: हाँ बिल्कुल, सुनाइए इरशाद।
1: के दिल जीत ले वो नजर हम भी रखते हैं, दिल जीत ले वो नजर हम भी रखते हैं, अगर भीड़ में नजर आओगे तो वो असर हम भी रखते हैं, और यूं तो क्या है आप सभी से मुस्कुराने का वादा, वरना आंखों में समंदर तो हम भी रखते हैं।
0: क्या बात है, आपकी आंखों में तो समंदर है ही और आपकी वाणी में एक बहुत गहरा समंदर है वसीम भाई।
1: जी जी,
0: तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं वसीम भाई?
1: देखिए सर, जब जिला रामपुर से कॉल शामिल हो रही है तो मूवी रहेगी साजन का घर।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और उसमें एक सॉन्ग रहेगा, दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे प्यार में तेरे सनम, और मैं आपके लिए दो लाइन ऐड करना चाहूंगा।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए।
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और आपने तो बहुत प्यारी हमारे जो लाइनें हैं ये कही हैं, और बस आपके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, ये पल ये यादें सदा यूं ही आबाद रखना, और वसीम भाई कभी वक्त मिले तो हमें भी याद रखना। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का।
1: हाँ, मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं सर।
0: हाँ बिल्कुल बोलिए।
1: ग्राम खेत अंडर रामपुर से मोहम्मद कामिल हैं, मोहम्मद तालिब हैं, और मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, गुलशन बाकी रहे तो गुल खिलेंगे, और जिंदगी बाकी रही तो हेलो नजीम आवाज में आप।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो लीजिए वसीम भाई, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद,
0: कौन साहब बात कर रहे हैं
1: जी? मैं साबिर अली, जिला मुरादाबाद, ग्राम ध्यानपुरा।
0: जी साबिर भाई, कैसे हैं आप?
1: अरे साहब बढ़िया हैं, आप कैसे हैं सर जी?
0: बहुत मज़े में हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बहुत मज़े में होंगे।
1: हाँ हम भी साहब मजे में हैं।
0: तो साबिर भाई, आप करते क्या हैं?
1: मैं हमारे कई काम है वैसे तो, हम
0: हाँ
1: किसान भी हैं, हमारे किराने की दुकान भी है, हमारे दूध का मावा बनता है।
0: अच्छा, मावा भी बनाते हैं आप?
1: जी जी
0: भाई
1: हाँ,
0: वाह।
1: ये
0: तो
1: इसका भी
0: आज
1: काम है मेरा।
0: अच्छा बहुत मतलब काफ़ी सारा काम फैला हुआ है आपका, तो बहुत सारे लोग लगते होंगे काम करने के लिए।
1: हाँ बहुत सारे लोग लगते हैं।
0: अरे वाह, तो साबिर भाई फिर तो आप बहुत एक ऐसा उद्यम चला रहे हैं और खुद भी काम कर रहे हैं और औरों को भी रोज़गार दे रखा है आपने,
1: हाँ
0: है ना? तो लगभग
1: जी
0: कितने
1: जी
0: आदमियों को रोज़गार आपने?

0: दे रखा होगा।
1: मान लो हमारा दूध का काम है, तो उसमें दूध में भी लगे हुए हैं, डेयरी है, कांटम है
0: हाँ
1: हमारी,
0: अच्छा
1: और मावा भी जाता है दुकानों पर, लगा हुआ है मावा,
0: जी
1: स्टैंड सलून आ रही है, मावे की कुछ मांग ज्यादा चल रही है।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आपने रक्षाबंधन का जिक्र करा, हरियाली तीज का जिक्र करा, तो मावे का जिक्र और इन मिठाइयों का जिक्र हो रहा है और मुंह में पानी आ रहा है आपके भी हमारे भी है ना। मावे की डिमांड बढ़ रही है, तो आजकल आप खूब मावा बना रहे हैं, दूध से खोया बना रहे
1: हाँ
0: हैं, है ना।
1: हाँ जी, खोया खूब बन रहा है इस टाइम, खूब बन रहा
0: हाँ तो घेवर भी खा रहे हैं आजकल सारे लोग और बड़ा मजा ले रहे हैं
1: है। हाँ जी, बड़ा मजा ले रहे
0: तो साविर
1: हैं
0: भाई
1: सब।
0: एक बात बताइए, आप मावा बनाते हैं तो जैसे आपने डेयरी भी है, आप कह रहे हैं
1: हाँ
0: कि आप मावा बनाते हैं, तो आपने जो डेयरी में पशु पाल रखे हैं उनसे भी दूध पैदा होता है, तो उस
1: नहीं,
0: दूध से भी
1: पशु तो
0: आप
1: हमारे एक दो ही है, पशु तो हमारे, हम मावा दूध हम खरीदते हैं।
0: अच्छा खरीदते हैं,
1: हाँ
0: तो उसके लिए तो फिर आपको डेली सुबह और शाम दो समय जब पशु को हम दूते हैं दूध के लिए,
1: हाँ
0: तो वहाँ दूर दूर से जाकर के इकट्ठा करना होता होगा।
1: हाँ दूर दूर से इकट्ठा होता है वो,
0: हाँ
1: कई लोग लगते हैं उनको दुआने में, लाने में और
0: हाँ
1: बनाने में।
0: हाँ वो बहुत मेहनत का काम है मतलब।
1: हाँ वो काम है।
0: और दूध के काम में हमने ये भी सुना है कि पाबंदी बहुत होती है, कि
1: हाँ
0: वो
1: दूध
0: मतलब
1: पाबंदी,
0: हाँ दूध
1: मिसाल है कि मुर्दा घाट पे जाना ही जाना है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ऐसा ही है कि वहाँ पर हमें करना ही, ये काम करना ही, इसको नहीं रोक सकते क्योंकि दूध की पैदावार भी नहीं रोक सकती और दूध को हम ज़्यादा देर तक बचा करके भी नहीं रख सकते,
1: हाँ बाजार में
0: है
1: रखते
0: ना।
1: हैं, जो हमारे ग्राहक लगे होते हैं वो देखते हैं दुकानदार के दूध क्यों नहीं आया अभी तक।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो ये बहुत पाबंदी का काम है, और इतनी पाबंदी के काम को भी आप बड़ी सहजता के साथ, और उसके साथ साथ आप बताएं कि आप खेती किसानी का भी काम है और साथ
1: हाँ
0: ही आपका जो है वो एक किराने की दुकान भी है,
1: किराने की दुकान है। हाँ
0: तो इन सब कामों को एक साथ लेकर के चलना मतलब एक बहुत ही बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए होती है ना।
1: हाँ
0: लेकिन
1: बेहतर ये भी आता है कि जब काम नहीं होगा तो बेकार भी तो रहेगा ना आदमी।
0: हाँ खाली रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: हाँ
0: अगर
1: स्वस्थ
0: हम काम करते रहते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है।
1: तो रहता है सर, ये नौकरी सबको लगती नहीं, मगर खुद अपना व्यवसाय कर लेते हैं तो।
0: हाँ वो जो अपना उद्यम है वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: होता है, और उस उद्यम से हम स्वयं तो कमाते हैं और साथ में औरों के लिए भी रोजगार के अवसर जो हैं वो हम खोल देते
1: हाँ
0: हैं।
1: मजे होते हैं।
0: हैं तो साबिर भाई आज आप क्या सुनेंगे आज?
1: हाँ ये एक गाना सुना दीजिएगा, ये प्यार झुकता नहीं का दिलवर जानिया। और सर एक बात कहनी थी सर, थोड़ी
0: हाँ
1: सी,
0: बोलिए।
1: नहीं कहना था, ये हमारे लोकल वालों की कॉल नहीं लग पाती है, दूसरे कॉल लगती है, दो
0: नहीं
1: कार्यक्रम क्यों ना कर शुरू कर दिया आप।
0: नहीं हम आपको एक बात बताते हैं, अब ये
1: जी हाँ
0: अभी इस कार्यक्रम में अगर आपने कार्यक्रम सुन रहे होंगे,
1: हाँ मैं सुन लिया हूँ
0: हाँ
1: सुन लिया।
0: तो एक हमारे श्रोता ने बोला था कि अभी हमारे पास ना बहुत दिनों बाद कॉल लगी है सर, तो उसका
1: हाँ 8
0: सीधा
1: साल
0: सीधा
1: बाद बता रहे
0: हाँ
1: थे।
0: 8 साल बाद बता रहे थे, वो भी आपके रामपुर उधर साइड से थे शायद, है ना, वसीम
1: हाँ
0: अकरम,
1: हाँ
0: वसीम अकरम। तो
1: हाँ
0: वहाँ पर भी हमारा एक ही जवाब था कि एक ही समय में बहुत सारे श्रोता कॉल करते हैं, हमें पता नहीं होता कौन सा श्रोता कॉल कर रहा है,
1: हाँ
0: हमें
1: लाखों
0: केवल
1: कॉल करते हैं।
0: हाँ हमें केवल मॉनिटर पे कॉल दिखाई देती है और हम कॉल पिक करते हैं, ठीक है ना। तो साबिर भाई हमारे तो सारे श्रोता सम्मानित श्रोता हैं और हमारे लिए सारे ही ज़रूरी हैं, है ना।
1: जी
0: तो जिस भी श्रोता का
1: हाँ
0: कॉल पिक हो जाता है उसकी हमारी बात हो जाती है, और जिनका हमारे से संपर्क नहीं हो पाता, जिनकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी और हमारी कोई नाराजगी है, ऐसा
1: नहीं नहीं
0: बिल्कुल भी
1: नाराजगी
0: नहीं।
1: नहीं है, मतलब चार चांद लग जाएंगे कार्यक्रम में, जब दो कार्यक्रम हो जाएंगे
0: हाँ
1: तो।
0: बिल्कुल, तो उसके लिए फिर हमने और कार्यक्रम बना रखे हैं, जिंदगी लाइव कल दोपहर 12:05 पर होगा, और आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके भेजिए तो आपके मैसेज पढ़े जाएंगे, जो भी विषय होगा उस कार्यक्रम से संबंधित, और उसमें आपका नाम भी बोलेगा और आपकी क्या भावनाएं हैं वो सब आपके मैसेजेस के माध्यम से पढ़ी जाएंगी, है ना। तो इस
1: हाँ
0: साबिर भाई एक ही तरह के कार्यक्रम को कई अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करने से हमारे श्रोताओं का भी थोड़ा सा मनोरंजन बढ़ जाता है और
1: चलो तुमने
0: उनकी भी।
1: पंजाबी
0: हाँ
1: अच्छी कर गई है।
0: तो साबिर
1: जी
0: भाई कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने वाला है, ये आपकी कॉल आखिरी कॉल थी, तो जल्दी से लीजिए,
1: जी
0: सुन लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, वक्त की दुश्वारियां हैं कि इस कार्यक्रम को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने चला है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले शुक्रवार को आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, बात होगी और हम सब सुनेंगे मिलके आपकी पसंद के प्यारे से गीत। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रात के हम सफर।

रात के हमसफर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रात का हमसफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और आज का विषय है फुर्सत के वो पल न जाने कहाँ खो गए। जी हाँ, बिल्कुल, फुर्सत एक ऐसी चीज़ है जो आज के समय में किसी के पास नहीं। अगर बात करें पुराने समय में, जब हम अपने दादी से, अपने बाबा से या अपने बड़े बुज़ुर्गों से आज सुनते हैं उनके बीते हुए दिनों के बारे में, तो वो किस तरह से बताते हैं कि एक समय वो था कि जब शाम के समय घर के सभी लोग आराम से बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे, और खाना खाने के बाद ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाते थे, और बस यूं ही जब एक डेढ़ घंटा बातें करते करते हो जाता था, फिर उसके बाद माँ गर्म गर्म दूध सबको ला करके देती थी, और गर्म दूध पीने के साथ ही सबको नींद आनी शुरू हो जाती थी और सब

गहरी नींद में सो जाते थे। कितना सुकून था, सुबह जल्दी उठते थे, नहाते थे, एक्सरसाइज करते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और स्कूल से जल्दी ही लौट आते थे, क्योंकि उस समय में स्कूल जो थे वो घर के पास ही हुआ करते थे। आज के समय जैसे नहीं, आज के समय में तो स्कूल घर से 10-10 20-20 किलोमीटर दूर है और बसों से बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। एक दौर था कि उस समय में तो बसों से हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, लेकिन अब तो हम बसों से बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जो युवा हैं वो नौकरी करने के लिए बसों से और रेलगाड़ियों से जाते हैं। लेकिन एक समय वो था कि जब स्कूल जाना होता था तो पैदल पैदल चले जाते थे, कॉलेज जाना होता था या नौकरी पर जाना होता था या ऑफिस जाना होता था, कहीं पर भी साइकिल से चले जाते थे, और अगर साइकिल से भी नहीं जाना चाहते तो पैदल पैदल ही चले जाते थे। कितना प्यारा वो दौर था। और उस समय में ना हमारे पास मोबाइल फोन्स थे और सारा काम मैनुअल था, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटराइज्ड नहीं था, सब काम हाथ से होता था, पेन से होता था, मशीनें बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उस दौर में भी हर व्यक्ति के पास इतनी फुर्सत होती थी कि वो अपने घर परिवार को भी पूरा पूरा समय देता था, अपने दोस्तों को भी पूरा समय देता था, और जहां वो काम कर रहा है वहां भी पूरे समय बड़ी तल्लीनता से काम करता था। क्या दौर था वो! क्या ऐसा दौर अब लौट कर आ सकता है? क्योंकि आज के इस दौर में जब भी हम किसी से बात करते हैं या आज के इस दौर में हम किसी से थोड़ा समय चाहते हैं तो वो कहता है कि उसके पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, ना? तो समय क्यों नहीं है? अभी तुम दिल पे बस लिख लो जरा ये दास्तां मेरी, मिले फुर्सत तो पढ़कर देखना मेरी खता क्या थी। जो लोग हमसे हमारी फुर्सत मांगते हैं ना, वो लोग हमसे यही कहते हैं, अभी तुम दिल पे लिख लो जरा ये दास्तां मेरी, मिले फुर्सत तो पढ़कर देखना मेरी खता क्या थी। क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है और कल वो लोग नहीं होंगे जो हमसे हमारी फुर्सत मांगते हैं, है ना। और शायद अब तो हमारे पास हर चीज हमारी फिंगर टिप्स पे है, मतलब अगर हम अपने किसी दोस्त से बात करना चाहें तो मोबाइल हमारे पास है, मैसेज करना चाहें, कुछ संदेश भेजना चाहें तो बहुत सारे सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन आज हमें इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम किसी से संपर्क कर सकें। तो आज का ये कार्यक्रम केवल और केवल इसी विषय पर है कि हमें फुर्सत नहीं है। वो फुर्सत के दिन कहाँ खो गए, वो फुर्सत के दिन कहाँ खो गए, हमें फुर्सत कब मिलेगी? तो अपनी इन्हीं फुर्सतों को तलाशते हुए हम आज का ये कार्यक्रम अपने सभी श्रोताओं को समर्पित कर रहे हैं कि फुर्सत के वो पल कहाँ गए। और कार्यक्रम का पहला मैसेज हमें मिल गया है और लिखने वाले हैं मोहम्मद कैफ, गांव मीरमपुर बेगा, पोस्ट मंडावली, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर से। और ये लिखते हैं, फुर्सत के पल जाने कहाँ खो गए। अरे वाह! नमस्कार आकाशवाणी नजीबाबाद के रात के हमसफर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को। आज का विषय सचमुच दिल को छू लेने वाला है। फुर्सत के पल जाने कहाँ खो गए। कभी हमारी जिंदगी में भी फुर्सत हुआ करती थी, स्कूल से छुट्टी होती तो दोस्तों के साथ घंटों खेलना, गली मोहल्ले में बैठकर बातें करना, शाम होते ही घर लौटना और परिवार के साथ बैठकर खाना, यही तो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां थी। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया।

ये सब नहीं था, लेकिन लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय बहुत था। पहले रिश्तेदार का फोन आ जाए तो पूरा परिवार बैठकर बात करता था, किसी के घर मेहमान आ जाए तो काम छोड़कर उनका स्वागत किया जाता था, पड़ोसी के घर कोई परेशानी हो तो बिना बुलाए लोग मदद के लिए पहुंच जाते थे। शाम की चाय के साथ घर के बड़े बुजुर्ग अपनी बातें सुनाते और बच्चे बड़े ध्यान से सुना करते थे। लेकिन आज जिंदगी बहुत तेज हो गई, कोई कारोबार में व्यस्त है, कोई नौकरी में मस्त है, कोई अपने भविष्य की चिंता में व्यस्त है और कोई मोबाइल की दुनिया में इतना व्यस्त है कि पास बैठे इंसान से बात करने का भी समय नहीं बचा। हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही घर में बैठे अपनों से बात करने की फुर्सत हमें नहीं मिलती। हम पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतना कमा रहे हैं, उस जिंदगी को जीने का समय हमारे पास है? फुर्सत का मतलब क्या है? काम छोड़ देना नहीं, फुर्सत का मतलब है दिन भर की भाग दौड़ के बीच कुछ पल अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए और सबसे जरूरी अपने लिए निकालना है। कभी मोबाइल एक तरफ रखकर माँ बाप के पास बैठिए, कभी बच्चों के साथ खेलिए, कभी पुराने दोस्त को फोन करके पूछिए, भाई कैसे हो। यकीन मानिए, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां महंगी चीजों में नहीं बल्कि इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो पल हमारे पास है शायद सिर्फ यादें बनकर रह जाएगा, इसलिए जिंदगी को सिर्फ कमाने में मत गुजारिए, थोड़ा सा जी भी लीजिए, क्योंकि आखिर में इंसान के पास बस यादें ही तो बचती हैं और सबसे खूबसूरत यादें वही होती हैं जिनमें हमने अपनों के साथ बैठकर हंसा हो, बातें की हों और दिल से कुछ पल बिताए हों। सच ही तो है, फुर्सत के पल न जाने कहाँ खो गए और हम जिंदगी जीते जीते जिंदगी से दूर हो गए। आइए आज थोड़ा सा समय अपनों के नाम करते हैं। रात के हम सफ़र के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सलाम। मोहम्मद कैफ, ग्राम मंडावली, मीरमपुर बेगा, पोस्ट मंडावली, तहसील नजीबाबाद, ज़िला बिजनौर से इतना प्यारा पत्र और इतना लंबा पत्र इन्होंने लिखा है ना? तो ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति को आज के समय में फुर्सत की तलाश है। और कार्यक्रम का अगला पत्र भी लेंगे, तब तक आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें मिला है शाही मार्केट सोहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना चौधरी, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का। ये लिखते हैं, पहले दौर में और आज के दौर में बहुत फर्क हो गया है। पहले किस्से कहानी सुनते थे दादा दादी से, नाना नानी से। जब कभी शादी होती तो 8-8 दिन रिश्तेदारी में रहते। ये बात तो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जब पहले हम किसी शादी में जाते थे तो 8-10 दिन तो कम से कम, मतलब 8-10 दिन तो उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा बिजी है ना, और जो बिजी नहीं है, जैसे घर के और मेंबर होते हैं, बच्चे होते हैं, वो तो कम से कम 20-25 दिन अपने मामा की शादी में, अपनी बुआ की शादी में, अपने चाचा की शादी में इस तरह से रहते थे। और कितना वक्त था हमारे पास, आज के दौर में वो वक्त कहीं गुमसा हो गया। अब मोबाइल का दौर आ गया है और अब फुर्सत बिल्कुल भी नहीं बची। अगर कोई मेहमान घर पर आ जाए उससे भी बात नहीं कर पाते हैं आज के दौर में। बच्चे भी नाना मामू के यहाँ बहुत कम जाते हैं, बस मोबाइल में लगे रहते हैं और मना कर देते हैं कि हम नहीं जा रहे, हम यहीं अच्छे हैं। पुराने समय में लोग चौपाल पर बातें करते थे, लेकिन अब वो चौपाल, वो चबूतरे भी ख़त्म हो गए। बिल्कुल सही बात लिखी। और पहले का दौर कुछ इस तरह का था कि सब लोग एक साथ चौपाल पर बैठते थे, मज़े करते थे। कार्यक्रम का अगला पत्र आपसे शेयर किया है हमारे श्रोता मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। और ये लिखते हैं, अब वो टाइम बहुत याद आता है जब हम बहुत छोटे थे और बिजली बहुत कम आती थी। मोमबत्ती, लालटेन या लैंप जलाकर रात को सब उसके चारों तरफ बैठ जाते थे और मोबाइल फ़ोन ने तो सब कुछ छीन लिया। बच्चों से बचपन और बड़ों से उनकी फुर्सत, और शायद फुर्सत के वो पल, फुर्सत का वो दौर अब वापस नहीं आने वाला। कार्यक्रम के और मैसेज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार

0: फिर सुन लीजिए 8865845809
1: और हमारा ईमेल आईडी है
0: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम का अगला मैसेज हमें लिखा है नगीना से अनिल विनोचा जी ने, और ये लिखते हैं कि वही पुरानी नमस्ते जो फुर्सत के पलों में होती थी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, फुर्सत के पल ना जाने कहाँ गए। पहले परिवार जॉइंट परिवार होते थे, मतलब जॉइंट फैमिली होते थे। तब परिवार के अलग अलग मेंबर्स काम करते थे और तब जीवन बीत जाता था। विकास तो तब भी हो रहा था लेकिन धीरे धीरे हो रहा था। लिविंग कॉस्ट कम थी, आज उल्टा है, लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, एम्बिशन ज्यादा है, परिवार छोटा होना इसका मुख्य कारण है। अब बचपन फ्यूचर के साथ चल रहा है, बिल्कुल सही बात कही, क्या बात है, बचपन फ्यूचर के साथ चल रहा है। जिस तरह की हम आज देखते हैं कि ये प्रतियोगी जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमारे बच्चे अभी अपना बचपन ना जी करके अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा कोशिशें और तैयारियां कर रहे हैं, और यही कारण है कि हमारी कम उम्र में ही उम्र ऐसी लगती है जैसे बहुत पड़ गई हो, और बीमारी भी ज़्यादा हो जाती है और जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है। बस यही है, और यहीं पर हमारी फुर्सत के पल खो गए क्योंकि हमने उन फुर्सत के पलों को निकालना ही छोड़ दिया, ढूंढना ही छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, फुर्सत के जो पल है ना वो हमें ही ढूंढने पड़ेंगे। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। ये लिखते हैं आज के दौर में इंसान इतना बिजी हो गया कि उसे पूरे दिन आराम मुश्किल से मिलता है। पशुओं की सेवा, बच्चों के साथ समय बिताना, अपनी दुकान या दफ्तर को समय देना, अपने घर का काम करना, यारों दोस्तों में बैठना, कोई खेल खेलना, इन सब में से किसी भी चीज़ के लिए उसे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि इंसान बहुत बिजी है। और इस सब का कारण क्या है? एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो कोई कुछ काम कर लेता था, कोई कुछ काम कर लेता था, और इस तरह से पूरे घर का काम बहुत ही कम एफर्ट में निमट जाता था। बिल्कुल सही बात, और इस बात के लिए हम बिल्कुल इनकी सराहना करेंगे। बीजना मुरादाबाद से राजबीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान लिखते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब फुर्सत हमारी जेब में हुआ करती थी। रेडियो पर बजते गानों के बीच अपनों की बातें, शाम को चौराहे की चाय और घंटों छत से उड़ते बादलों को देखना। कोई जल्दी नहीं थी, कोई नेक्स्ट टास्क नहीं था। आज वक्त तो डिजिटल हो गया लेकिन फुर्सत कहीं एनालॉग जमाने में ही छूट गई। क्या बात लिखी है भाई वाह, शायद फुर्सत कहीं खोई नहीं, हमने ठहरना ही छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, और ये इतना प्यारा पत्र था, और इस पत्र के साथ ही आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रात के हम सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार

सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी

बाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर अपनी पहली सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।